FM 101 MHz पर हम आकाशवाणी मदरास से आपसे मुखातिब हैं। सामिन, आज इतवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ महीने की 10 तारीख व मुताबिक 31 मई 2026 ईस्वी। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के ठीक 7:56 हुए हैं। अब हमारी आज की नशरियात का आगाज़ होता है।

एफ एम 101 MHz पर हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं। सुबह के 8 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ और 8:30 पर उर्दू खबरनामा रिले करेंगे। समय रिले का इंतज़ार कीजिए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
3: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
5: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13

0: ₹6.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
1: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
3: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। आईपीएल के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defense Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya.

0: अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क और बैरूने मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात को एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को मकामी जबानों में नशर करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। लखनऊ में ओपन एयर बहरी म्यूजियम नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कल जनाब सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने में अहम रोल अदा किया। वजीर दिफा ने कहा कि बहरे अरब में भारतीय बहरिया को पूरी तैयारी और ताकत के साथ तैनात किया गया था, जिससे लगातार दबाव बना रहा। इसके नतीजे में पाकिस्तान की पूरी बहरिया अपनी बंदरगाहों तक महदूद होकर रह गई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, जिसका मकसद पहलगाम दहशतगर्द हमले का बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौजों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त हमले किए।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: बहरिया के सरबरा एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने, दूर तक कार्रवाई करने और जंग से बाज रखने की अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग एलैंग कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। इस मौके पर उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले म्यांमार के सदर अपने 5 रोजा भारत दौरे पर कल बिहार के बोधगया पहुंचे और महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कल शाम जनाब लियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने देरीना दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के तहत म्यांमार के सदर के मुस्बत रुझान की तारीफ की। म्यांमार के सदर कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और सकाफती राब्तों को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों की ईंधन की बरामदात पर आयात होने वाले महसूलात पर नजरसानी की है। इस कदम का मकसद मगरबी एशिया के बहरान की वजह से जारी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की खातिरख्वाह घरेलू दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजारत मालियात की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की बरामद पर 1.5 रुपया फी लीटर और डीजल की बरामद पर 13.5 रुपये फी लीटर की ड्यूटी आयद होगी। हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदाती ड्यूटी 9.5 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत मालियात ने वाजे किया कि खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सड़क बुनियादी ढांचा सेस पर मुश्तमिल बरामदाती लेवीज, जिन्हें इस साल 27 मार्च को मुतारिफ कराया गया था, का तेल, पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन की औसत बैन अल-अक़वामी कीमतों की बुनियाद पर हर 15 दिन बाद जायजा लिया जाता है। ताहम हुकूमत ने वाजे किया कि घरेलू खपत के पेट्रोल और डीजल की मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नजरसानीशुदा ड्यूटीज का कल से इतलाक होगा, जो अगले 15 दिन तक नाफिज रहेंगी। नई दिल्ली से विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आरजी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज खातिर रखते हुए यह फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है, तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, MSME इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को इतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबिकत को मुस्तहकम बना

0: भरी आंधी चलने की भी पेशगोई की है। केरला में शदीद बारिश के इम्कान के तहत 6 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में कहीं कहीं शदीद बारिश और 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। अलबत्ता केरला में बाजाब्ता तौर पर मानसून की आमद का ऐलान नहीं किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2026 सीजन के फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच खेला जाएगा। आरसीबी ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया है और 3 दिन के वक्फे के बाद फाइनल में दाखिल हो रही है। टूर्नामेंट की मजबूत तरीन उनकी बल्लेबाजी रही है, जिसमें विराट कोहली की कारकर्दगी नुमाया रही है, जबकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड नई गेंद के साथ टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। दूसरी जानिब शुभमन गिल की क्यादत में गुजरात टाइटंस ने लीग मरहले में टॉप 2 में जगह हासिल की और क्वालिफायर 1 में शिकस्त के बाद वापसी करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली। टीम एक बार फिर अपने अहम बल्लेबाजों गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर पर इंहसार करेगी, जबकि ऑलराउंडर जैसन होल्डर ने सीजन के दूसरे हिस्से में अहम विकेट्स लेकर गेंदबाजी को और मजबूत किया है। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। खातीन के क्रिकेट में कल रात ब्रिस्टल में T20 बैन अलावा क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 20 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज अब एक एक मैच से बराबरी पर है। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के मर्दों की डबल्स की जोड़ी सत्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी मोहम्मद शोहेब उल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन ने कल रात बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 3-4 से शिकस्त देकर यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब हासिल कर लिया है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने ज़राअत और किसानों की फलाह और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को सुर्खी के साथ पेश किया है कि मुल्क भर में खेत बचाओ मुहिम 1 जून से चलाई जाएगी, जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन के इस बयान को पहले सफे पर जगह दी है कि तरक्की याफ्ता भारत 2047 मुल्क के हर शहरी का ख्वाब होना चाहिए। मगरबी एशिया के बहरान के दरमियान भारत की मईशत मजबूत मगर एहतियात जरूरी, वजारत खजाना के इस बयान के साथ रोजनामा इनकलाब ने लिखा है कि वजारत खजाना ने मुख्तलिफ माशी इशारों की बुनियाद पर भारत की मईशत के करीबी मुस्तकबिल को मजबूत करार दिया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यूमिन ओंगलियांग अपने 5 रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और इसके साथ ही खबरनामा।
2: FM 101 MHz पर हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं। समाइन प्रोग्रामों के मुतालिक एक ज़रूरी इतला समात फरमाइए। आज दिन में ठीक 11 बजे इज़्ज़त माँ वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी रेडियो के ज़रिए मुल्क की आवाम से प्रोग्राम मन की बात में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। इसके फौरन बाद मन की बात का डोगरी तर्जमा हम आकाशवाणी जम्मू से रिले करेंगे, जबकि मन की बात का कश्मीरी तर्जमा शाम ठीक 8 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से रिले किया जाएगा। सामाइन इतला समाप्त हुई। अब सुनते हैं आलमी तंबाकू डे दिन के मौके पर एक खसूसी प्रोग्राम, पेशकश है आसिया परवीन की।
3: मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया परवीन और आज हम एक ऐसी मुहिम के बारे में बात करेंगे जो हमारी ज़िंदगी और सांसों की हिफाजत के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया भर में हर साल 31 मई को तंबाकू नोशी के खात्मे का आलमी दिन यौमे इंतसाद तंबाकू नोशी के तौर पर मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड नो टबैको डे कहते हैं। तंबाकू नोशी दौरे हाजिर का एक ऐसा खामोश कत्ल है जो हर साल लाखों इंसानों को निगल जाता है। आलमी अदारा सहर WHO के मुताबिक तंबाकू का इस्तेमाल दुनिया भर में अमवात की बड़ी वजूहात में से एक है। इसे खतरे की संगीनी को महसूस करते हुए ये दिन मनाया जाता है ताकि आलमी सतह पर शऊर बेदार किया जा सके। 1987 ईस्वी में आलमी अदारा सेहत की मजलिस आलमिया ने एक करारदार मंजूर की जिसका मकसद तंबाकू की वबाह की तरफ दुनिया की तवज्जो मबजूल कराना था। शुरू में इसे 7 अप्रैल 1988 को मनाया गया, लेकिन बाद में मुस्तकिल तौर पर 31 मई की तारीख मुकरर कर दी गई। असल में इस दिन का बुनियादी मकसद न सिर्फ तंबाकू नोशी के मौजिर असरात बताना है, बल्कि तंबाकू कंपनियों की कारोबारी हिकमत अमलियों को बेनकाब करना भी है। सामीन, आज हम जानेंगे तंबाकू के मौलिक अज्जा, सेहत पर असरात और इसके तमाम पहलू। एक सिगरेट में 4000 से ज़ायद केमिकल्स होते हैं, जिनमें निकोटीन, तार और कार्बन मोनोक्साइड सबसे ज़्यादा है। तंबाकू नोशी से फेफड़ों, मुंह, गले, मसाने और गुर्दों का कैंसर लाहक हो सकता है। ये खून की शिरानों को सख्त कर देता है, जिससे ब्लड फशारे यानी हाई BP और हार्ट अटैक के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये फेफड़ों के टिश्यू को तबाह कर देता है, जिसके नतीजे में इम्फिसिमा और दाइमी ब्रूकेट्स जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। सिगरेट पीने वालों के दांत पीले पड़ जाते हैं और जिल्द और यानी चेहरा हर पर वक्त से पहले झुर्रियां नमूदार होने लगती हैं। तंबाकू नोशी सिर्फ पीने वालों के लिए नहीं, बल्कि इसके गिर्द मौजूद लोगों के लिए भी इतनी ही खतरनाक है। इसे सेकेंड हैंड स्मोक कहा जाता है। वो बच्चे जिनके वालदेन घर में सिगरेट पीते हैं, इनमें नमूनिया, दमा और कान के इन्फेक्शन के अमराज ज़्यादा पाए जाते हैं। तंबाकू कंपनियां हर साल अरबों डॉलर इश्तहारात और मार्केटिंग पर खर्च करती है। इसका खास हदफ नौजवान नस्ल होती है। ई सिगरेट वैप्स शीशा में मुख्तलिफ फलों और मिठाइयों के जायके शामिल किए जाते हैं ताकि बच्चे और नौजवान इसकी तरफ रागिब हो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, इन्फ्लुएंसर के ज़रिए तंबाकू नोशी को एक कौल या जदीद तर्ज ज़िंदगी के तौर पर देखा जाता है, जो कि एक धोखा है। ख्वातीन की सेहत पर तंबाकू के मखसूस असरात, तंबाकू नोशी ख्वातीन की सेहत पर मर्दों के मुकाबले में बाज़ाओं का ज़्यादा संगीन असरात मरतब करती है। सिगरेट नोशी से ख्वातीन में औलाद पैदा करने की सलाहियत मुतासिर होती है। हमल के दौरान सिगरेट पीने या इसके धुएं में रहने से बच्चों का वज़न कम होना, वक्त से पैदाइश और दिगर पेचीदगियां पैदा होती हैं। तंबाकू का इस्तेमाल हड्डियों की भरभरेपन के अमल को तेज़ कर देता है। तंबाकू सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि ज़मीन को भी बीमार कर रहा है। तंबाकू की फसल उगाने और उसे खुश्क करने के लिए हर साल लाखों दरख्त काटे जाते हैं। तंबाकू की काश्त में बेपनाह पानी इस्तेमाल होता है, जो कि कहज़ादा इलाकों के लिए बड़ा मसला है। जहरीला कचरा, सिगरेट के फिल्टर यानी फिल्टर बड्स प्लास्टिक के बने होते हैं, जो ज़मीन में गलने सड़ने में दहाइयां लेते हैं और समंदरी हयात के लिए जहर साबित होते हैं। ई सिगरेट और वैपिंग की हकीकत, बहुत से लोग समझते हैं कि सिगरेट वैप का महफूज मुतबादिल है, लेकिन ये एक गलत फैमिली है। तुर्के तंबाकू नोशी के मराहिल, तंबाकू को छोड़ना मुश्किल ज़रूर है, मगर नामुमकिन नहीं। इसे छोड़ने के लिए दर्ज ज़ेल तरीके अपनाए जा सकते हैं। ताइरादा, सबसे पहले जहनी तौर पर खुद को तैयार करें। मुतबद्दिल का इस्तेमाल, निकोटीन पेच या च्युइंगम का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करें। उन महफलों से बचें जहां सिगरेट की नोशी की जाती हो। रोज़ाना वर्जिश करने से सिगरेट की तलब कम होती है। तंबाकू नोशी छोड़ने के असरात फौरी तौर पर जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि 20 मिनट बाद ब्लड प्रेशर और नब्ज की रफ्तार मामूर पर आ जाती है, 12 घंटे बाद दौराने खून बेहतर होता है। और फेफड़ों की कारदगिर्दी बढ़ जाती है। एक साल और एक साल बाद दिल के दौरे का खतरा सिगरेट पीने वालों के निसब आधा रह जाता है। हुकूमत को चाहिए कि वो तंबाकू पर टैक्स में इजाफा करें और तालीमी इदारे के करीब इसकी फराख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगाएं, और मीडिया को चाहिए कि वो तंबाकू के इश्तहारात के बजाय इनके नुकसानात पर मुबनी प्रोग्राम नश्र करें। आलमी योम इंतसाद तंबाकू नोशी हमें ये याद दिलाता है कि हमारी सेहत अजीम नियामत है। सिगरेट का धुआं ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी की शमा गुल कर रहा है, बल्कि आपके अपनों की खुशियां भी छीन रहा है। आइए अहद करें कि हम एक तंबाकू से पाक मुआशरा तश्कील देंगे, तंबाकू को ज़िंदगी से निकालेंगे इससे पहले कि वो आपको ज़िंदगी से निकाल दें। शुक्रिया। जय हिंद।
2: सामिन, आप सुन रहे थे आलमी तंबाकू दिन के मौके पर आसिया परवीन की तकरीर। हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं 101 MHz की फ्रिक्वेंसी पर। आइए अब सुनते हैं चंद फिल्मी नगमें। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको सुनाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में समीर का लिखा गीत। फिल्म है एतराज़ और मौसीकार हैं हमेश रेशमिया।

सामिन आइए आप सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म महोरा का नगमा। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी और संगीत है विजू शाह का।

FM 101 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं। समय 9:05 हो चुके हैं। अब पेश है रोजगार खबरनामा। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एक इतलाह के मुताबिक ख्वाहिशमंद मर्द व खवातीन उम्मीदवारों से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंटिस्ट बी एटमॉस्फेरिक साइंस, साइंटिस्ट बी जर्नल मेट्रोलॉजी और साइंटिस्ट बी इंस्ट्रूमेंटेशन की असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामियों की कुल तादाद 46 है, जिसमें साइंटिस्ट बी एटमॉस्फेरिक साइंस की असामियों के लिए जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 3-3 असामियाँ और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक असामी दरकार है। साइंटिस्ट बी जनरल मेट्रोलॉजी की असामियों के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 12 असामियाँ, EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 11 असामियाँ, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 5 असामियाँ, OBC कैटेगरी और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक एक असामी दरकार है। जबकि साइंटिस्ट बी इंस्ट्रूमेंटेशन की असामियों के लिए जनरल और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 3-3 असामियाँ, OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 2 असामियाँ और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक असामी मखसूस रखी गई है। तालीमी काबिलियत में साइंटिस्ट बी एटमॉस्फेरिक साइंस की असामियों के लिए उम्मीदवार के पास किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन एटमॉस्फेरिक साइंस का होना लाजमी है। साइंटिस्ट बी जनरल मेट्रोलॉजी साइंसेस की असामियों के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री इन साइंस या मैथमेटिक्स या फिजिक्स का होना ज़रूरी है, जबकि साइंटिस्ट बी इंस्ट्रूमेंटेशन की असामियों के लिए उम्मीदवार का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी या बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग विद मेट्रोलॉजी का होना ज़रूरी है। उम्र की हद में जनरल और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 35 साल, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 40 साल, OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 38 साल, PWBD कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 45 साल और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या एक्स सर्विसमैन के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जाब्ते के मुताबिक रखी गई है। उम्मीदवारों को दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करवानी होंगी। दरख्वास्त की फीस जनरल, OBC और EWS मर्द उम्मीदवारों के लिए 25 रुपये रखी गई है, जबकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWBD और खवातीन उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्त की फीस माफ़ रखी गई है। दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख 12 जून 2026 मुकर्रर है। मज़ीद जानकारी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट है http://upsconline.nic.in। सामान्य वेबसाइट एक बार फिर से दोहराते हैं, http://upsconline.nic.in। यह था रोजगार खबरनामा।

FM 101 MHz पर हम आकाशवाणी के भदुरा मरकज से आपसे मुखातिब हैं। समय अब पेश है आपसे आगे रात 10 बजे तक रिले व नशर होने वाले प्रोग्रामों का।

शाम 6 बजे हिंदी और 6:05 पर अंग्रेज़ी में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी और उसके बाद शाम 6:15 पर डोगरी में खबरें और तबसरा हम आकाशवाणी जम्मू से रिले करेंगे।

سامعین، اردو غزلیں ہم آکاش وانی بدروا سے پیش کریں گے شام 6:30 پر۔

शाम 7 बजे हालत हज़रा का प्रोग्राम शहरबीन, 7:30 पर कश्मीरी में खबरें, उर्दू में खबरें और तबसरा 7:40 पर, और ठीक 8 बजे मन की बात का कश्मीरी तर्जमा हम आकाशवाणी श्रीनगर से रिले करेंगे।

रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज़ 9 और 9:15 पर उर्दू में खबरें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: रात 9:30 पर आप हमारे स्टूडियो यानी आकाशवाणी भद्रवा से संवाद करेंगे पुराने फिल्मी नगमे। सामान्यत खुलासा अब से आगे रात 10 बजे तक ले और नशर होने वाले प्रोग्रामों का। हम आकाशवाणी भद्रवा से आपसे मुखातिब हैं 101 MHz की फ्रिक्वेंसी पर। आइए अब सुनते हैं भारतीय सेना के लिए गीत, गीतकार और आवाज़ है कैलाश खेर की।
1: जान को जो देश पर कुर्बान किए जाते हैं, मिट्टी पे अपनी जो अभिमान किए जाते हैं, माँ है ये मेरी, इसे छूने न पाए कोई भी। माँ को दे के खून माँ का मान किए जाते हैं, चीर के देखो

एफएम 101 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी भद्रवा से आपसे मुखातिब हैं। समय 9:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हम आकाशवाणी जम्मू से डोगरी में खबरें रिले करेंगे।

0: ई आकाशवाणी जम्मू ऐ। बड़े खबरें च तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्नै मैं पंकज कोहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होर अज्ज बड़े 11 बजे आकाशवाणी थमां मन की बात कार्यक्रम च अपने विचार सांझे करगन। मध्य प्रदेश दे मुक्खमंत्री डॉ मोहन यादव होरें लोकभवन श्रीनगर च उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुंदे कन्नै मलाटी लाई। जम्मू कश्मीर सरकार टेट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट च समीक्षा याचिका दर्ज करवाग, आख्या शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू होरें। ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा होरें रजौरी पुंछ सरहदी जिले च रेल राबते लई केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हुंदे कन्नै मलाटी लाई। जम्मू कश्मीर हाउस लिस्टिंग ते हाउसिंग सेंसस ताईं सेल्फ एनुमरेशन यानी आपू गणना अज्ज खत्म होई जाग। कल्ले थमां घर घर जाइयै सर्वे रंभ होग। खबरें दी तफसील कन्नै विजय बजाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज्ज दिनें 11 बजे आकाशवाणी दे अपने मन की बात कार्यक्रम राएं देश विदेश दे लोकें कन्नै विचार सांझे करङन।

0: इस माहवार रेडियो कार्यक्रमै दी 134वीं किश्त होग, जेहदा प्रसारण आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे समूलचे नेटवर्क उप्पर कीता जाग। एह्दे अलावा प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तर, सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ते आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे यूट्यूब चैनलें पर भी एह्दा प्रसारण होग। इस कार्यक्रम गी आकाशवाणी खबरें दी वैबसाइट www.newsonair.com ते न्यूज़ आन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित कीता जाग। आकाशवाणी पासेआ हिंदी प्रसारण दे तुरत मगरा एह्दा इलाकाई भाषाएं च अनुवाद भी प्रसारित कीता जाग। इलाकाई भाषाएं च एह्दा अनुवाद राती 8 बजे परतियै भी प्रसारित होग। मध्य प्रदेश दे मुक्खमंत्री डॉ मोहन यादव होरें कल लोक भवन श्रीनगर च प्रदेश दे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुंदे नै मलाटी लाइयै बक्ख बक्ख विकास मामलें पर गल्लकत्थ कीती। केंद्र शासित प्रदेश दे अपने दौरे दौरान डॉ यादव होरें हाल च गै श्री माता वैष्णो देवी श्राइन दा भी दौरा लाया, तां जे उत्थुआं दे प्रबंधन सरिस्ते ते यात्रुएं गी उपलब्ध करोआई जा'रदी स्हूलतें दा जायजा लैता जाई सके। उनें आला अफसरें दी मौजूदगी च सुरक्षा, साफ सुथराई, सीसीटीवी निगरानी ते तकनीकें कन्नै चलने आलियें सेवाएं सरबंधी प्रबंधें दी भी समीक्षा कीती। इस दौरे दा मकसद हाल च गै हाई कोर्ट दे फैसले मगरा मां वाघ देवी मंदरै दे विकास लेई मध्य प्रदेश च अपनाए जाई सकने आले श्राइन बोर्ड दे प्रशासनीय मॉडल ते भीड़ प्रबंधन दे तरीकें दी जांच करना हा। प्रदेश दे लोक भवन नै गोवा राज्य स्थापना दिवस दे मौके पर कल इक टकोह्दे कार्यक्रम दी मेजबानी कीती, जिदे च उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ते आला अफसरें सने जम्मू कश्मीर च रवा'रदे गोवा दे लोकें ते कलाकारें भी हिस्सा लैता। इस मौके अपने संबोधन च श्री सिन्हा होरें जम्मू कश्मीर ते गोवा बश्कार सदियें पराने रिश्तें पर जोर पाया। उनें गोवा दे सनहरी समुंदरी कंडे ते जम्मू कश्मीर दे शानदार प्हाड़ें बश्कार इक अनमोल सरबंध दस्सेआ। श्री सिन्हा होरें गलाया जे एह् कार्यक्रम तवी ते तेरे खोल नदियें कंडें फले फूले दे विचारें ते मुल्लें कदरें गी अज्जै दी जिंदगी गी दिशा देने आले असूलें कन्नै जोड़ने दा इक टकोह्दा मौका ऐ। प्रदेश दी सरकारै गलाया जे उन्ने मकामी शिक्षकें कन्नै जुड़े दे उंदी योग्यता परखने आले टीईटी दे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट च समीक्षा याचिका दर्ज करने दा फैसला लैता ऐ। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू होरें इक सोशल मीडिया पोस्ट च आखेआ ऐ जे सरकार ने लगातार इस मामले पर तक रखी दी ऐ ते टीचरें दे हितें दी राखी आस्तै ठोस गैईं पुट्टियां न। उनें दोहराया जे समीक्षा याचिका दर्ज करने दी मंजूरी पैहले गै दित्ती गेदी ऐ ते कानून, न्याय ते संसदीय मामलें दे विभाग ने अपनी स्टैंडिंग काउंसल गी लोड़चदी कार्रवाई रंभ करने दे निर्देश जारी कीते न। मंत्री होरें गलाया जे पटीशन तैयार होई गई ऐ ते अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट च फाइल करी दित्ती जाग। उनें दोहराया जे सरकार शिक्षकें दे हितें दी राखी आस्तै बचने बज्जी दी ऐ। 8वां केंद्री तनखाह आयोग अज्जै थमां जम्मू कश्मीर दे दौरे पर ऐ ते एह 5 जून तोड़ी प्रदेश च गै रुकग। अपने इस दौरे दे दौरान कमिशन आसेआ बक्ख बक्ख सरबंधत धड़ें जिआं सरकारी मुलाजमें, संगठनें ते एसोसिएशनें वगैरा दे कन्नै सलाह सूत्र कीता जाग। आयोग दा कल 1 जून गी श्रीनगर दे शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्री कन्वेंशन सेंटर च दिने 11 बजे शा 1 बजे तोड़ी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार कन्नै गल्लबात करने का भी कार्यक्रम ऐ। मुक्ख सचिव अटल डुल्लू हुंदी अगुवाई आली इक उच्ची सतह दी टीम इस बैठकै च हिस्सा लैग ते आयोग अग्गे अपनी पेशकारी भी करग। इस टीम च अतिरिक्त मुक्ख सचिवें ते प्रधान सचिवें हुंदे अलावा जीएडी, कानून ते खजाना मैह्कमे दे ऐह्लकार भी शामल होंगन। एह् खबरां साढ़ी वैबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। एह्दे अलावा तुस एह् खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते डीटीएच पर भी सुनी सकदे ओ। एह् खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू थमां सुना'रदे ओ। हुन बाकी दियें खबरें कन्नै पंकज कोहली।
1: ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा होरें कल केंद्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हुंदे कन्नै मलाटी लाइयै रजौरी ते पुंछ सरहदी जिलें च रेल राबते दी जोरदार वकालत कीती। उनें प्रस्तावित जम्मू अखनूर, डोरी डगेर, सुंदरबनी नौशहरा, रजौरी पुंछ रेल कारीडोर पर पहल दी बिना पर बचार करने दी अपील कीती ते इस इलाके ताई एदे रणनीतिक, माली ते समाजी महत्व पर जोर पाया। श्री शर्मा होरें परियोजना लई इक नमें मुमकन अध्ययन ते राष्ट्रीय प्राथमिकता दर्जे दी प्रार्थना कीती। उनें जम्मू कश्मीर च आईटी पार्क, इनक्यूबेशन सेंटर ते दूर दरेडे इलाकें च इंटरनेट सने बेहतर डिजिटल ढांचे दी भी मंग कीती। केंद्री मंत्री होरें भरोसा दोआया जे बैठक दौरान पुट्टी गेदियें मंगें ते होर दुईयें चिंताएं पर हमदर्दी कन्नै विचार कीता जाग। 2027 ब'रे आह्ली मरदमशुमारी दे पैह्ले गेड़ तैह्त जम्मू कश्मीर च नागरिकें आसेआ आपूं आनलाइन अपने ब्यौरे दर्ज करने सरबंधी सैल्फ एनमरेशन दी प्रक्रिया अज्ज संभारदी ऐ ते घर घर जाइयै लोकें थमां आंकड़े कठेरने सरबंधी हाउस लिस्टिंग आह्ला अभियान कल्लै थमां रंभ होई जाग। अधिकारिएं दस्सेआ ऐ जे एनमरेटर ते सुपरवाइजर कल्लै थमां लेइयै 3 जून तगर घर घर जाइयै लोकें थमां उंदे घरें ते आबादी मतलक सटीक आंकड़े दर्ज करङन। बसनीकें गी अपील कीती गेई ऐ जे ओह् सरबंधत अमले दा सैह्योग करन ते उनेंगी सटीक आंकड़े दर्ज करोआन। इस सरबंधै च होर मती जानकारी देआ'रदे न जम्मू कश्मीर दे चीफ प्रिंसिपल सेंसस अधिकारी अमित शर्मा।
2: ये आपके ऊपर रखा है, मतलब रात को 12 बजे तक ये खुला है। अभी जो हाउसिंग एंड हाउस लिस्टिंग का हमारा जो HLO का पहला मरला है उसके रिगार्डिंग ये लोग अपना डेटा खुद भर सकते हैं। 33 सवाल हैं, बड़े सिंपल से ऑप्शंस आते हैं उसमें, उनको सिर्फ उसको जवाब देना था। और अगर उनका रह गया है तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। 1 से 30 जून अगले जो सोमवार है, सोमवार से लेकर अगले 4 हफ्ते तक घर घर हमारे सुपरवाइजर और एनुमरेटर जाएंगे, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स जो है उसमें करेंगे, तो वो लोग अपना तब दे सकते हैं।
1: जम्मू कश्मीर दी शिक्षा मंत्री सकीना अत्तू होरें जम्मू संभाग दे सोए आले जोन हेठ पौंदे सब्भने सरकारी ते प्राइवेट कालेजें च 1 जून थमां 15 जुलाई तोड़ी सोए आलियें छुट्टियें दा ऐलान करी दित्ता ऐ। मंत्री होरें आखेआ ऐ जे एह् फैसला बड़ी भारी गर्मी गी दिक्खदे होई विद्यार्थियें, शैक्षणिक अमले ते कालेजें दे होर दुए अमले दी सुरक्षा ते कल्याण यकीनी बनाने दे मकसद कन्नै लैता गेआ ऐ। मंत्री होरें एह् बी जानकारी दित्ती ऐ जे सोए दियें छुट्टियें आह्ली अवधि मुक्कने दे बाद गै सब्भने कालेजें च नियमित शैक्षणिक गतिविधियां परतियै शुरू कीतियां जाङन। मौसम विभाग ने पेशनगोई कीती ऐ जे 3 जून तगर मौसम आमतौरा पर खुश्क बने दा रौह्ग। 4 ते 5 जून गी नेके थाहरें पर परतियै बरखा, गर्जोगर्जी कन्नै फुहारां ते तेज ब्हा झुल्लने दी संभावना ऐ। मैह्कमे ने 6 थमां 8 जून तगर आमतौरा पर खुश्क मौसम दा अंदाजा लाया ऐ। इस सरबंधै च होर मती जानकारी देआ'रदे न मैह्कमे दे निदेशक मुख्तार अहमद होर।
3: मौसम थोड़ा सा खुल जाएगा टिल थर्ड, और थर्ड इवनिंग से जो है थोड़ा फिर से क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है, और 4-5 जून के आसपास जो है थोड़ा फिर से ताजा बारिशें और हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग की भी पॉसिबिलिटी है। तो इस बीच थोड़ा गस्टी विंड्स भी फिर से चलने के चांसेस हैं, और फिर आगे आने वाले दिनों में फ्रॉम 6 to 9 even 10 तक जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस है। गस्टी विंड्स हैं, थोड़ा एहतियात करें, थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग से भी डेथ्स हो रहे हैं मुल्क के अलग अलग हिस्सों में। तो जब भी ऐसे थंडर स्टॉर्म या सीवियर लाइटनिंग
1: IPL क्रिकेट च अज्ज अहमदाबाद दे नरेंद्र मोदी स्टेडियम च इस सीजन दे फाइनल च मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दा मुकाबला गुजरात टाइटन्स कन्नै होग। एह् मैच संजा 7:30 बजे शा खेडिया जाग। इस प्रतियोगिता च RCB दी बल्लेबाजी बड़ी गै तगड़ी रही ऐ ते विराट कोहली इस बल्लेबाजी क्रम च बड़ी महत्वै आह्ली भूमिका नभा करदे न। तोआई गेंदबाजी च भुवनेश्वर कुमार ते जोश हैजलवुड ने नमीं गेंद दे कन्नै शानदार प्रदर्शन कीता ऐ। तोआई गुजरात टाइटन्स दे प्रदर्शन दा सारा जिम्मा उंदे महत्वपूर्ण बल्लेबाजें जियां कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन ते जोस बटलर सने हरफन मौला खडारी जैसन ओल्डर पर भी होग।
0: अखीरै च खास खबरां इक बारी परती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज्ज दिने 11 बजे आकाशवाणी थमां मन की बात कार्यक्रम च अपने विचार सांझे करङन। मध्य प्रदेश दे मुक्खमंत्री डॉ मोहन यादव होरें लोक भवन श्रीनगर च उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुंदे नै मलाटी लाई। जम्मू कश्मीर सरकार टेट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट च समीक्षा याचिका दायर करग, आखिया शिक्षा मंत्री सकीना अत्तू होरें। ते ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा होरें रजौरी पुंछ सरहदी जिले च रेल राबते लेई केंद्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हुंदे कन्नै मलाटी कीती। एह्दे कन्नै गै खबरें दा एह् बुलेटिन समाप्त होगा।
4: FM 101 MHz पर ये आकाशवाणी भद्रवाह है। 9:30 हुए हैं। सामिन अब लुत्फानंदोज होते हैं कश्मीरी मौसीकी से, तो प्रोग्राम के आगाज़ में आपको सुनाते हैं दीपाली वाडल का गाया ये कश्मीरी गीत।

फरमाइए। आज दिन में ठीक 11 बजे इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी रेडियो के ज़रिए मुल्क की आवाम से प्रोग्राम मन की बात में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। इसके फौरन बाद मन की बात का डोगरी तर्जमा हम आकाशवाणी जम्मू से रिले करेंगे, जबकि मन की बात का कश्मीरी तर्जमा शाम ठीक 8 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से रिले किया जाएगा। सामिन, ये थी इतला। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत। गलूकार हैं एजाज अहमद और शायर हैं सागर सहराई।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम भरा हमको, कोई इसकी दवा यदि है तो कहो।
1: इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन।

0: तक पूरे ना हो तेरे साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओ चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे कहा अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चूहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
2: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
2: हाँ बिल्कुल,
1: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
2: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
1: जी,
2: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
1: समझदारी,
2: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है।
1: हाँ।
2: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
1: हाँ।
2: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
1: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
2: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ घर में भी।
1: हाँ।
2: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
1: अच्छा।
2: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
1: जी,
2: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो और जो विर्ज खिलाई, अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
1: यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं और गुंजा
2: करती रहूंगी।
1: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी। और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
2: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
1: अच्छा।
2: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
1: जी,
2: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसे ही रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई, मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई।
1: अच्छा।
2: आपने तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
3: जी।
2: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
3: जी।
2: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
3: अरे वाह।
2: हाँ,
3: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी? आप अभिनेत्री, आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि हाँ, आप अभिनेत्री बनेंगी।
2: हाँ,
3: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
2: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
3: अच्छा।
2: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
3: जी,
2: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को।
3: हाँ।
2: और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
3: अच्छा।
2: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
3: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि हाँ, साधना गाओ। लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
2: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
3: है ना।
2: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उससे वक्त आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
3: उतनी बुलंद आवाज।
2: हाँ, बुलंद आवाज थी
3: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थीं, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य, अभिनय, बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए
1: हाँ, मैंने
0: होंगे।
1: नृत्य कभी नहीं किया,
0: अच्छा
1: वो मेरी बहन करती थी, तो
0: अच्छा
1: मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ,
0: अच्छा
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा
1: अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना,
0: बहुत
1: तो
0: दुखद घटना है जी।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो

0: है अंदर।
1: नहीं आप बहुत अच्छा नृत्य की हैं उस जोगीरा में, और हमने देखा
0: जोगीरा
1: बड़ा
0: में
1: मजा
0: मार
1: आया।
0: खा के क्यों?
1: अच्छा वो किस्सा भी जरा बता
0: नहीं,
1: दें।
0: वो ये था, बद्री जी थे
1: जी
0: हमारे डांस डायरेक्टर,
1: जी
0: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ,
1: हाँ
0: और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी,
1: अच्छा
0: तो मैं तो
1: हाँ
0: नहीं थी। तो उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम,
1: जी
0: और घूम के आना था।
1: जी
0: मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3 4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है, तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना। लेकिन डंडा मारा पैर में एकदम ठीक कर दिया मैंने
1: अच्छा एक
0: आपको
1: डंडे में डांस हो
0: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते
1: गया। लाठी के भूत।
0: लाठी के भूत, मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी इसे
1: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक
0: और
1: पहुंचाया।
0: क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी
1: हाँ
0: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक मटक के डांस किया उसने। फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
1: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप 1 सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो
0: हाँ,
1: किरदार किया कैसे आप?
0: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में।
1: अच्छा
0: वो बह गया, बह रहा था जैसे। तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ। तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया, कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
1: अच्छा
0: ये है, ये फ्रेम है। ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता। पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर कैमरे की, तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो
1: डीओपी
0: डीओपी,
1: रहते
0: हाँ,
1: हैं।
0: उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से। तो वो बोलते सीधे नहीं, इतना सा बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ। तो
1: अच्छा
0: 2 3 चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है अच्छा, थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है,
1: हाँ
0: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती थी।
1: जी
0: तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया। मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
1: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में। आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
0: मुझे लगता है कि पहली बात, एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती। कि आप
1: अच्छा
0: पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए। तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया कम हो गया। पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम, मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके। तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं।
1: जी तो थोड़ा सा खुद को परख के आए ऐसा आपका कहना है।
0: हाँ,
1: और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में,
0: बिल्कुल।
1: अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो
0: हाँ
1: मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
0: हाँ ऐसा
1: एक
0: तो
1: ये
0: कुछ नहीं
1: ईगो
0: है।
1: भी सामान्यतः लोगों में
0: हाँ
1: होता है कि
0: होता है।
1: हमने किया है।
0: हाँ
1: तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं कुछ तैयार
1: नेचुरली?
0: नहीं किया, मुझे पता था।

0: मीडिया है ना,
1: हाँ
0: वो भी एक्टिंग ही चाहता
1: जी
0: है ना। हमको वहां भी लाइनें याद करनी होंगी,
1: जी
0: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं, क्योंकि हमको पता है वो अपनी समझ
1: जी
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव, कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूँ।
1: जी
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है,
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं
0: नहीं
1: करना ही
0: करना है।
1: एक्टिंग है।
0: हाँ तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ। ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ
1: हाँ
0: कि
1: जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं, तो
0: हाँ
1: मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी
0: सुनाइए।
1: पसंद सुन ली जाए
0: अच्छा ऐसा।
1: जी। तो कोई गीत बता दीजिए जो।
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं।
1: जी
0: तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं,
1: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत लगा
0: खूबसूरत
1: है।
0: और
1: जी जी
0: बहुत
1: जी
0: मीठा संगीत है।
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।
2: कुछ दिल

0: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं। और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30, ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा। तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं तो।
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए,
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, तो हॉस्पिटलाइज थे। तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे
0: हाँ
1: तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी,
0: जी।
1: तो वो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा।
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना, तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी। और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं तो
0: हाँ
1: ह्यूमन टच नहीं रह गया है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
0: जी
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है,
0: जी
1: तो इसलिए मैंने कभी उन पे क्वेश्चन नहीं किया कि
0: जी
1: मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा।
0: जी
1: लेकिन हाँ, अच्छा लगा। प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
0: नाइस
1: प्रोडक्शन
0: नाइस
1: में,
0: जी जी
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है, बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
0: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे।
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था,
0: अच्छा
1: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं,
0: जी।
1: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग
0: चल
1: वैनिटी, मेरी
0: रहा
1: वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे
0: है
1: ही आदत है
0: आदत
1: बैठने।
0: अनुसार आप लड़कियों से घिरी
1: हाँ, तो
0: रहती
1: टाइम निकल जाता है, बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी।
0: थी जी।
1: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है, तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहां पे।
0: नहीं,
1: हाँ
0: वैसे आप बहुत हॉट हैं, शॉल की जरूरत
1: हाँ
0: आपने तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के
1: हाँ
0: बाद। जी
1: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने,
0: जी
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई हैं उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकरावर्णम फिल्म आई थी,
0: जी
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकरावर्णम। तो
0: ओके
1: जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में,
0: जी
1: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे, आबिद रिजवी, मुझे
0: जी
1: बिल्कुल बेटी की
0: आबिद
1: तरह,
0: रिजवी जी
1: हाँ,
0: जी
1: तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सबटाइटल।
0: नीचे का जी
1: लेकिन वो ले गए
0: जी
1: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम। मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन 2 मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं, तो
0: वही सेम
1: उसमें
0: फिल्म।
1: हाँ सेम फिल्म
0: ओह
1: लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल। मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी, जुड़ना ऐसी फिल्म से।
0: जी
1: तो विश्वनाथ जी तो बहुत, उनको पूजा जाता है वहां पे
0: जी बिल्कुल
1: साउथ में, सरगम ये सब उन्होंने बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन
0: बोलती आंखें
1: हाँ तो इनको ऑन इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए,
0: जी
1: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, 2 बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना
0: जी
1: शायद,
0: जी
1: हाँ
0: जी उसके बाद ही
1: हाँ तो मस्ती में की बस,
0: थी
1: और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
0: जी।
1: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी,
0: अच्छा
1: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
0: जी
1: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। तो वो फिल्म की उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के, दादी बन के, चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
0: हाँ
1: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी, फिर बच्चों को देखना ये सब,
0: जी जी
1: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी,
0: जी जुगनी
1: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म है,
0: बहुत
1: देखे हैं
0: अच्छी
1: हाँ।
0: फिल्म जी।
1: तो ये नए नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब,
0: हाँ
1: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे,
0: जी
1: लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण।
0: जी
1: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है, स्थल,
0: अच्छा
1: हाँ। तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके, दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है ना, सब मिलके काम कर रहे
0: मिल
1: हैं,
0: के काम कर रहे
1: हाँ
0: हैं, पारिवारिक तरीके
1: हाँ
0: से काम हो
1: हाँ
0: रहा है
1: फिर
0: जी
1: मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको ये साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
0: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर, वो जब साथ में है
1: हाँ
0: तो आपको क्या अलग लगा पहले का और
1: मुझे
0: अब का?
1: ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था,
0: अच्छा
1: हाँ, क्योंकि ये
0: फ्रीडम।
1: भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये
0: जी
1: बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे कि
0: हाँ
1: ऐसा ही करना है, और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी।
0: जी हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके
1: मेरे
0: जाएगा,
1: पति का नाम
0: आपकी
1: राजकुमार ही
0: जिंदगी में
1: है।
0: ही राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए
1: अरे
0: थे?
1: वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
0: अच्छा हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
1: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा अब नहीं करूंगी। तो ये बिहार बिहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है, तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम और मिलने आए, तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ, और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने।
0: जी
1: तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने, इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू, वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जाते, इनको इतना गुस्सा है, बोले शादी करके बताता हूँ इसको, कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
0: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली
1: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर,
0: हाँ
1: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। फिर
0: अच्छा
1: मेरी
0: वही लड़की हीरोइन चाहिए थी
1: हाँ
0: लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी। हाँ
1: होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने फिर।
0: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
1: ये रात भीगी भीगी,

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म में उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो
1: है,
0: वाली की है ना, गंगा मैया तो है
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो,
0: जी
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर
0: जी
1: थे,
0: जी
1: सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना इस एक फिल्म बनाई जाए।
0: हाँ
1: तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो
0: जी
1: जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो ही प्यारी चढ़ाई वो,
0: जी
1: जो कि ब्लॉकबस्टर,
0: जी
1: आज
0: सर
1: भी ब्लॉकबस्टर
0: जी जी
1: है।
0: जी
1: तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से,
0: जी
1: गंगा जैसन पावन पिरितिया हमार। तो
0: अच्छा
1: उसमें मैंने काम किया
0: जी
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको,
0: इतना लाइटली
1: बहुत
0: तो नहीं
1: बहुत
0: लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी
0: जी जी
1: लेकिन।
0: बहुत प्यारी है,
1: हाँ
0: बहुत
1: वो,
0: अच्छी फिल्म।
1: हाँ
0: जी एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन, लाइक जो वहाँ की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी या सीखने
1: बिल्कुल
0: में
1: भी
0: आपको?
1: नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा
1: हमें अपनी जो बाइयाँ आती थी उन सबसे तो
0: मतलब आप वो चाट और लस्सी
1: वो
0: खाते पीते
1: खाते
0: बड़ी
1: पीते,
0: हुई
1: हाँ
0: हैं। जी
1: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं, सिर्फ
0: अच्छा
1: मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने
0: अच्छा
1: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे, तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे ये,
0: सरदार
1: हाँ
0: खड़े हैं और
1: तो हमारा
0: भोजपुरी बोल रहे
1: पंजाबी
0: हैं।
1: एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी,
0: जी
1: हाँ ये काफी फर्क है।
0: जी
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए, अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या,
0: अच्छा
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे?
1: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते ही हैं,
0: जी
1: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे, चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी, और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था,
0: जी
1: चंदन चंदन ऐसा,
0: बहुत अच्छा।
1: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है गाना।
0: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इस गीत के?
1: हाँ इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं,
0: रविंद्र जैन वहां पे उसका
1: हाँ
0: डायरेक्शन कर रहे होंगे,
1: हाँ
0: गाया
1: रवि
0: जा रहा
1: जी,
0: होगा,
1: हाँ
0: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते
1: बहुत
0: समय?
1: अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा, अगर आप
0: जी बहुत
1: ये,
0: खूबसूरत गीत
1: हाँ
0: है।
1: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था, और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे,
0: जी
1: और आज तक मैं बहुत बहुत ज़्यादा इसको पसंद करती हूँ।
0: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है,
1: हाँ
0: तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई
1: हाँ
0: होंगी शायद।
1: हाँ बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी,
0: जी
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ
1: एक साथ
0: बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था,
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो
1: बट
0: में।
1: जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा, तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह
1: ओ
0: विराजमान होंगे।
1: भैया मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था,
0: हाँ,
1: उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने, 30 धुनें।
1: गाने में, और सुना रही थी ये पसंद है नहीं है अच्छा, और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो
0: जी
1: बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो,
0: जी
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, इतना गुणी, माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे
0: शब्द भी
1: और
0: लिख
1: शब्द भी लिख देते थे
0: लेते।
1: एक सेकंड में,
0: 30 गाने एक समय
1: हाँ
0: पे बना
1: बत्तीस
0: के
1: होंगे
0: सुनाना
1: 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का, दादा कह
0: लगातार।
1: रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा, ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया, तो
0: और
1: उनसे
0: कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है,
1: हाँ, उसके
0: अद्भुत।
1: बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए
0: हाँ।
1: जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए, तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता,
0: ये रविंद्र जी ने कहा
1: हाँ
0: आपसे। जी
1: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे, और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार,
0: जी और
1: दादू
0: जब टूर
1: दादू,
0: करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो
1: हाँ
0: आनंद ही अलग आता
1: हाँ
0: होगा
1: वो
0: देख
1: तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है,
0: के। अच्छा
1: तो आई थिंक वो अक्खड़पन में सब कुछ सीख गई, अल्लड़पन कहते ना कि
0: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई
1: हाँ ये
0: बचपन से।
1: बात है, मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो,
0: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना,
1: हाँ
0: लगेगी तो
1: लगे
0: संभाल लेना।
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना नहीं रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे ही घूमते
1: नहीं
0: फिरते।
1: नहीं बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अब शूटिंग भी करेगी, तो ये
0: हाँ,
1: चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था,
0: अच्छा,
1: नॉट फ्रॉम माई हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें, लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फ़ोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है मैं कर लूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो,
0: अरे वाह।
1: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी, तो इन
0: हाँ,
1: लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने
0: एक
1: बोल
0: बार में
1: दिया
0: बोल दिया
1: तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
0: यानी
1: तो
0: आपको मायका
1: हाँ
0: भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला,
1: हाँ
0: दोनों
1: मेरी
0: जगह बढ़िया।
1: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे,
0: जी
1: तो जहां भी हैं बस खुश रहे।
0: जी बिल्कुल। साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है, पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है
1: नहीं
0: या?
1: नहीं मेरे बेटा तो बहुत दूर है,
0: अच्छा
1: उसको फेमस नहीं होना है, वो बिल्कुल ही अलग सोचता है।
0: जी
1: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की हैं,
0: जी
1: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने,
0: जी
1: अनुपम जी ने,
0: बहुत बढ़िया।
1: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि
0: हाँ
1: जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए,
0: ओ
1: तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
0: हाँ, उस
1: तो
0: समय वो चल नहीं
1: फिर वो
0: पाई।
1: उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीज़ें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है, तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
0: मतलब
1: तो
0: उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता,
1: नहीं मैं करती भी नहीं, क्योंकि
0: मेहनत
1: जब
0: करो अपनी,
1: हाँ अपनी मेहनत करो।
0: ये बहुत अच्छी बात है। उनको
1: क्योंकि मैंने
0: अपने
1: अपने
0: समय
1: लिए कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी।
0: जी, लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
1: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना, ये सुपर 30,
0: जी
1: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोले 100%,
0: हाँ
1: अब देखते हैं क्या होता
0: जी, बिल्कुल
1: है।
0: होगा, आपने कह दिया, सोच लिया, और
1: हाँ
0: विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं,
1: हाँ
0: ऐसा
1: ऐसा
0: हम मान
1: है,
0: के चलते हैं।
1: चलिए
0: बिल्कुल, ये
1: ठीक
0: जगह
1: है।
0: बड़ी
1: हाँ
0: बड़े पवित्र लोग यहाँ पर
1: हाँ
0: आए हैं।
1: हाँ
0: आप जानते हैं कि यहाँ पर
1: हाँ
0: अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ
1: हाँ
0: रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है
1: अच्छी
0: यहाँ
1: लगी
0: की।
1: है।
0: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी। पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं, और बाकी हम जो महिलाएं हैं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो कि क्या, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं।
0: जी
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ हेल्थ ऐसी चीज जिसपे औरतों का बहुत कम
0: ध्यान
1: ये
0: होता
1: ख्याल
0: है।
1: होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी
1: बचता
0: नहीं
1: भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती माएं।
0: जी
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें, 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई,
0: जी
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि आप
0: हाँ
1: सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है।
0: हाँ
1: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने पहनने से मुझे याद आया मैंने ब्रांड भी शुरू किया है,
0: अच्छा
1: हाँ एक कच्चे धागे करके, और
0: अच्छा
1: साड़ियाँ वीव्स वगैरह, मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है ये,
0: जी
1: ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी ये पहेली,
0: जी
1: वो ज़रूर आप लोग देखिएगा, उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की, बहुत
0: अच्छा,
1: सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है,
0: अरे वाह,
1: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो
0: क्या बात
1: मैं
0: है।
1: चाहती हूँ कि ये सब देखें,
0: फिल्म है कैसी है पहेली,
1: कैसी है पहेली।
0: ज़रूर से हम
1: हाँ
0: सभी विविध भारती परिवार ज़रूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है।
1: हाँ
0: और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आएं, आप वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम ज़रूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी।
1: हाँ
0: सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
1: अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है, विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
0: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा
1: अच्छा
0: लगता है
1: लगा,
0: विविध भारती में जब आप
1: बिल्कुल,
0: आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है, तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉबी टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की देश की जनता से साझा अपने मन की बात का रिले हमारे दिल्ली केंद्र से।
4: FM 101 MHz पर हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं। सामिन, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे इज़्ज़त माँ वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी रेडियो के ज़रिए मुल्क की आवाम से प्रोग्राम मन की बात में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। इसके फौरन बाद मन की बात का डोगरी तर्जमा आकाशवाणी जम्मू से रिले किया जाएगा।
5: ये आकाशवाणी है।
6: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
7: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
8: कोई बोले राम राम।
7: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: का संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें, पहले बैंक फिर CMS, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
0: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई,
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
12: नमस्कार सर। नमस्कार।
13: नमस्कार सर।
1: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
7: नमस्ते सर।

0: मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ। एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था। एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया। एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है। एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ। एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था, तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कहा भी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
2: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
0: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो

0: करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे। बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं, क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है। बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूव किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
0: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे।

कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर

0: मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं, लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स सबको आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब, कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि मां भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के लोगों के अपने विचार साझा करार दिए कार्यक्रम मन की बात रही। आओ सुनचे उन्दे मन की बात कार्यक्रम दा टोकरी अनुवाद।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात च एक बारी फी तुंदे कन्ने जुड़ियै मिगी बेहद खुशी हुआ करती है। मुल्खा दे बक बक हिस्सें च साढ़े मुल्खा दे लोग मुल्खा दे हित च समाज दे हित च नईयां अद्भुत चीज़ां करा करदे न, ते जेल्लै उंदे बारे सुनने आ तां असेंगी इक नमीं प्रेरणा मिलदी ऐ।

0: रिकॉर्ड बनाए। में सभनें शा पैह्लें ते इनें सभनें गी मती मती बधाई दिंदा। साथियो, एक इवेंट जिहदी मुल्क भर च बड़ी चर्चा होआ करदी है वह है 100 मीटर रेस। 100 मीटर की दौड़ छड़े 2 दिन के अंदर मैनस 100 मीटर रेस च नैशनल रिकॉर्ड 3 बारी टुटा। जिन्हें 2 एथलीटें एक कमाल दसिया है वह न गुरिंदर वीर सिंह ते अनिमेश कुजूर। मैं सोचा इस बारी मन की बात च इन्हें दोनों खिडारियों कन्ने गल की जा। अनिमेश जी नमस्कार। गुरिंदर वीर तुसें गी भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर।
2: नमस्कार सर।
0: चंगा भाई, तुसें ते बड़ी बड़ी अचीवमेंट की है, तुंदी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। असें संगीत च ते जुगलबंदी दिखी ही, लेकिन चुनौती च हुण जुगलबंदी हुंदी है जे एक बारी एक चुनौती दे है फिर दूआ उस चुनौती की चुकी लै फिर 3 बारी करी लै। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा तुंदा। मैं चाहना जे मन की बात दे श्रोताएं की पता चलै ते तुसें लोकें दे बारे च उनेंगी जानकारी होए, तुसें जो पराक्रम कीता है उहदा पता चलै।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर। मैं 200 मीटर ते 400 मीटर दा नैशनल रिकॉर्ड होल्डर हाँ ते मैं छत्तीसगढ़ थमां बिलोंग करना सर ते अजे मैं उड़ीसा थमां खेडना। मैं लास्ट ईयर एशियन मैडल ते वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मैडल लेइयै आया ते मैं एथलैटिक्स 2021 थमां चालू कीता जेल्लै मैं स्कूल थमां पास आउट होआ। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर थमां पास आउट हाँ ते मैं पहले फुटबॉल खेडा करदा हाँ ते मेरे पेरेंट्स कोविड दे वेले मिगी थोड़ी बहुत छूट दिंदे हे जे तू जाइए बाहर दौड़ी लै जां खेडी लै। तां जेल्लै कोविड मुक्कन लगा तां मेरे फुटबॉल दे जेहड़े फ्रेंड्स हे उन्हें मिगी आखिया जे स्टेट मीट होने आला है जाइए तू पार्टिसिपेट कर। ते मैं पार्टिसिपेट कीता ते मिगी पता नहीं हाँ जे उत्थों थमां नैशनल लैवल दा सिलैक्शन है। मैं उत्थों दा नैशनल च सिलैक्ट हुआ ते अज मैं इंडिया गी रिप्रजेंट करा करना इंटरनैशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी के है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है ते मैं इंडियन नेवी च पेटी ऑफिसर हाँ ते मैं इंडिया दा सबने शा तेज स्प्रिंटर हाँ। हुणे मैं 100 मीटर च 10.09 दा इंटरनैशनल रिकॉर्ड बनाया है ते मैं पहला इंडियन हाँ सर जिहड़ा 10.1 दे बैरीयर दे खल दौड़िया है ते मैं कोशिश करना जे मैं ट्रैक ते वर्दी च भी अपने मुल्खा दी सेवा करां। मेरे फादर ते ग्रैंड फादर दमें स्पोर्ट्स करदे हे तां साढ़े इंडिया दा कल्चर है जेल्ले भी कोई त्यौहार हुंदा जियां दियाली जियां नवां साल तां अस अपने घरां दी सफाई करने आं तां मैं अपने फादर दी ट्रॉफीज ते मैडल्स दी सफाई करा करदा हाँ तां मिगी ओह बड़ा चंगा लगदा हा। मैं बड़ा खुश हुंदा हा तां जदों मैं कोई ट्रॉफी साफ करदा हाँ तां मैं पुछदा हाँ जे भाई इह ट्रॉफी कुत्थे जीती है, ये मैडल कुत्थे जित्तिया, ये फोटो कदों दी है। तां फिर मिगी ओह अपनी कहानी सुनांदे हे कि भाई मैं इत्थे खेडन गया, मैं ये नैशनल मैडल जित्तिया, मैं अपनी टीम गी एदे च जिताया। तां फिर मैं भी उनेंगी आखदा हा जे भाई मैं भी स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करन जंदे हे मॉर्निंग च तां मैं उनेंगी आखन लगा भाई मिगी भी अपने कन्नै लेई जाया करो। तां मिगी लेइयै जान लगे तां उन्हें जो अपने गेम स्पोर्ट्स च सिखिया हा वह मिगी सिखान लगे तां मेरा इंट्रस्ट बनन लगा। मैं उसैन बोल्ट दा वर्ल्ड रिकॉर्ड टुटदा दिखिया। तां एक स्टोरी है इयां फनी, मैं उन्हें टीवी दिखा करदा हाँ ते मम्मी ने मेरा टीवी बंद करी दिता जे अजय पुत्रा पढ़ने दा टाइम हो गया तुस पढ़ो। तां मैं आख्या भाई ठीक है तुस मिगी टीवी नहीं दिखन दिंदे, एक दिन नया आउग तुस मिगी टीवी च तुप गए हो, जे दिखो ओह गुरिंदर दौड़ा करता है। तां मिगी भी खुशी हुंदी है जेल्लै मेरी माँ मिगी टीवी पर दौड़दे दिखदी है।
0: वाह वाह वाह, बड़ी शानदार गल है भाई तुंदी ते।
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर, फिर मेरे फादर वह भी वॉलीबॉल खेडते हे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह कन्नै अपनी स्पोर्ट्स छोड़ी दी। उंदा जो सुखना पूरा करने वाला रही गया तां उन्हें मेरे अंदर वह सुखना दिखिया भाई मेरा पुत्र वह सुखना पूरा करग। तां मैं उंदे कन्नै गल्लां करदा हा फिर सुनदा मिल्खा सिंह इन्नी मेहनत करदे हे, मैं उनेंगी आखदा हा मैं भी एक दिन तुंदा सुखना पूरा करंग। तां बोलदे सुखना पूरा इयां नहीं हुंदा, उहदे वास्ते बड़ा हार्डवर्क करना पौंदा है, मेहनत करनी पौंदी है। मिल्खा सिंह जी खून दियां उल्टियां करदे हे, धुप्पा च दौड़ लांदे हे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करदे हे। तां वो चीज़ां मिगी इंस्पायर करदियां हियां, मेरे फादर मिगी इंस्पायर करदे हे जे मैं दौड़गा तां अपने मुल्खा वास्ते मुल्खा वास्ते मैडल लिया जित्तां। ते ए भी हाजे भाई जेल्लै मैं इवेंट चूज़ किया

0: मीटर तां सब्बे मिगी आखदे हे जे भाई 100 मीटर मत कर, 100 इंडियंस दा इवेंट नहीं ऐ, इंडियंस दी बॉडी 100 मीटर आस्तै बनी गै नहीं ऐ। तां मैं ते मेरे फादर हमेशा आखदे हे जे गुरिंदर असें एह् चूज़ कीता ऐ, अस एह्दे शा पिच्छें नहीं हटगे। जेह्ड़े असें गी आखदे न जे भाई अस नहीं करी सकदे, अस उसी करी दसगे ते तू करियै दसगा, मिगी तेरे पर भरोसा ऐ। तां ओह् भरोसा जेल्लै मेरे गी मेरे फादर ने मेरे पर कीता, तां मैं उस भरोसे गी अपनी हिम्मत बनाइए मैं चलिया। ते अज्ज हर इंडियन बोलदा ऐ जे भाई इंडियन स्प्रिंट कर।
1: दिक्खो तुसें दौनें बड़ा बड़ा कमाल कीता ऐ, ते सिर्फ 2 दिनें दे अंदर तुसें दौनें 3 बारी नैशनल रिकॉर्ड तोड़िया ऐ। 100 मीटर रेस च दौड़ना, जियां गुरिंदर वीर ने आखिया, जे लोग आखदे न जे भारत दे लोकें दा शरीर ते इस कम्म आस्तै है गै नहीं, इन्ना मुश्किल होंदे होई भी तुसें कम्म कीता, ते एह् दौनें थमां में जानना चाहंग ते मन की बात दे श्रोता भी सुनना चाहंगन जे केड़ा जज्बा हा, क्या जिद ही, केह् सोचा हा ते कियां करा करदे हे, एह् किन्ना मुश्किल होंदा ऐ।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जेल्लै स्टार्टिंग च सर बड़ा स्ट्रगल हा, बड़ी बारी डाउट भी आया जे मैं सही करा करना, मैं सही चूज कीता कि जे हर बारी तुस नहीं जितदे, कदें कदें तुस सिखदे हो। जेल्लै मैं हारदा हा, जेल्लै मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं होंदी, कोई इंजरी आई जंदी ही, तां मेरे घरे आह्ले मिगी सपोर्ट करदे हे जे भाई कोई नहीं, एक दिन भैड़ा चली गया, एक साल भैड़ा चली गया, तां इहदे कन्नै जिंदगी खराब नहीं होंदी, सुखने दिखना नहीं छोड़दे। तां मेरे कोच ने मिगी यह सिखाया जे अगर तू नहीं करगा तां कोई और नहीं करी सकग। तां इ'यां जेल्लै साड़ी कम्युनिटी, साढ़े आले दुआले लोग साड़ा हौसला बधांदे न, तां साड़ा कदे ओह मोटिवेशन नहीं टुटदा।
1: अनिमेश जी,
2: सर मिगी ते सारे लोग आखदे हे जे जेल्लै मैं 2021 च चालू कीता एथलेटिक्स, तां मिगी आखदे हे जे दिख एह नवां फील्ड ऐ, तू करी सकगा जां नहीं। तां मैं आखिया जे हून मैं इस फील्ड च आई बढ़िया तां करंगा। मेरे पापा भी हमेशा मिगी आखदे हे जे तू इस फील्ड च आई बढ़िया तां कदें पिछे मुड़िया नहीं दिखिया, कि जे सोचदे ते सारे न जे एह करना है वो करना है, बट करिए बड़े घट दसदे न। तू बस इस फील्ड च बढ़िया है तां एदे पर कायम रवेया, एदे पर अग्गे बधना है। तू सारी फैसिलिटीज सब चीज़ अस सपोर्ट करगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ अस लोग करगे, बस तू मेहनत कर ते इंडिया की दस जे इंडियंस भी दरोड़ी सकते न। कि जे ए मिगी आखते हे जे इंडियंस दे जीन्स ने नहीं न, जे ओ सब 10 या सब 10.1 दे अंदर है दौड़ी सकते न या कोई और स्प्रिंट करी सकता है, बट उन्हें असें दोनों ऐसा प्रूव कि इंडियंस भी करी सकते न, नया कोई हार्ड नहीं है साढ़े आस्ते, अस भी सब किश करी सकने हैं। तो सर ये सारी चीज़ां मिगी बड़ी मोटिवेट कर दियां न, ते जियां जियां अस ट्रेनिंग करा करने हैं अस और टाइमिंग त्रोड़ा करने हैं। असें गी ते बाकी इंडियंस गी भी ये चीज़ लब्भा करदी है जे इंडियंस भी करी सकदे न, ते अस और करगे सर अजें, ते अजें असें दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स आस्ते भी हो है, तो उत्थे अपकमिंग कंपीटिशन च अस और शैल परफॉर्म करगे।
1: अच्छा दिखो, मेरे मन च भी एक उत्सुकता है और लोकें गी भी होग। मैं सुनया है जे तुस दमें चंगे दोस्त भी हो, तुसें दौनें तैयार कीते दा हा कि जे तू मेरा रिकॉर्ड भन्नया तां मैं तेरा रिकॉर्ड भन्नी देया, कि पहले अनिमेश दसी दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 दा हा जेड़ा मेरा गया हा, ते दैन उसी गुरविंदर भाई ने सैमीफाइनल च भन्नी दिता 10.17 करियै, ते मैं फिर उसी सैमीफाइनल 2 च 10.15 करियै भन्नी दिता। तां उस वेले जेड़ा मेरा सैमीफाइनल हुआ तां अस दमें गै खुश हे जे हाँ चलो ठीक है, अज रिकॉर्ड टुटा ते चलो असें दोनों त्रोड़े आने हाँ, कि जे उस वेले कंपीटिशन च राइवलरी रोंदी है, बट तैयार कीते दा हा पहले थवां गै। उहदे कोला पहले अस लोग सऊदी अरेबिया च भी आए हे कंपीटिशन करने आस्ते, तां उत्थे भी अस दमें रूममेट्स हे, तां अस दमें उत्थे भी गल करा करदे हे जे इंडिया दी स्प्रिंटिंग गी अग्गे लेइए जाना है, ते साढ़े गै हत्थे च है ओह चीज़, अस जो करगे उ'ऐ बाकियें गी मोटिवेट करग।
1: गुरिंदर केह् आखना चाहगे?
0: असें दवें डिसाइड कीता हा अस दवें शैल दौड़गे, तां कदे भी सर एक दुए गी लोड़ हुंदी है तां एक दुए कन्नै खड़ोने आं। जियां हुण ऐ रिकॉर्ड करने कोला पहले जेल्लै मैं रिकॉर्ड कीता फ्ही अनिमेश ने कीता, तां जेल्लै अस वार्म अप करा करदे हे तां मैं अनिमेश गी दस्सा करदा हा, हुण अनिमेश ओह ब्लॉक सही है ओहदे पर जाइए बो, उत्थे स्ट्राइड करी लै, अस

0: वार्म अप इत्थै करगे, इत्थै वार्म अप सहयोग तां एक दूए दी हैल्प करने आं, एक दूए दी हैल्प करने आं तां दूआ भी इंप्रूव करदा है, अस भी इंप्रूव करने आं, तां दोस्ती भी चाहिदी। बट सर अस ग्राउंड दे बाहर आं, कंपीटीशन दे बाहर आं, तां अस दोस्त आं। जेल्लै अस ग्राउंड च चली जन्ने आं तां एक दूए दे कंपीटीटर होई जन्ने आं। तां एह हुंदा है जे मैं एदे कोला फास्ट दौड़ लागा, मैं एदे कोला फास्ट दौड़गा।
1: दिक्खो, तुसें लोकें जो स्पर्धा कीती है ना, ओह् मुल्खा दा मान बधाने आस्तै कीती है, मुल्खा गी भविक्ख च इस थाह्र पजाने आस्तै कीती है, ते इक पॉजिटिव स्पिरिट कन्नै कीती है। ते में मन्नना जे तुं'दी एह् जेह्ड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऐ, खेढना भी है, इक दूए गी चुनौती भी देना ऐ, ते फ्ही अग्गें निकलने आस्तै कोशिश भी करनी है, ते फ्ही अग्गें जाने आस्तै इक दूए दी मदद करनी है, एह् अद्भुत कम्म कीता तुसें लोकें। मेरे पासेआ तुसें गी मती मती बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामना, ते तुस मुल्खा दा नां भी रोशन करो। मिगी पूरा विश्वास है तुस इ'यां गै मेहनत करदे रहो, बड़ी प्रगति होग। मती मती शुभकामना मेरियां।
0: शुक्रिया सर।
2: शुक्रिया थुआढ़ा।
1: मता मता धन्नवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बेल्लै मुल्खा दे मते हारे इलाकें च बड़ी गर्मी पवा करदी है। त्रिक्खी धुप्प, गर्म हवा नेह मौसम च अपना ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। पानी पींदे रवो, धुप्पा च जे निकलना गै पवै तां बिंद संभलियै निकलो। इस पेठा सरकारै दे बक्ख बक्ख डिपार्टमेंटें जेहड़ियां गाइडलाइंस जारी कीतियां न, ओह् भी भुल्लेओ नहीं। साथियो, साढ़े इद्धर गर्मी कन्नै लड़ने दा तरीका केईं बारी रसोई च भी थ्होंदा ऐ। तुसें भी दिक्खेआ होग, जियां जियां गर्मी बधदी है, उ'आं उ'आं घरा दी रसोई दा सोआद बदली जंदा ऐ, रसोई दी किस्म बदली जंदी है। कुतै मटके दा पानी निकली आउंदा है, कुतै देहीं जम्मन लगी पौंदा है, ते कुतै कच्चे अंब उब्बलन लगदे न, ते फ्ही शुरू होंदा है देसी पेय दा दौर। देसी पेय कन्नै तुस भी वाकफ हो, जे तुस उत्तर भारत च जाह्गे तां काफी जगह तुसेंगी थ्होग आम पन्ना, कच्चे अंबें दा सोआद, ते गर्मी कोला राहत भी। पंजाब हरियाणा जाओ तां लस्सी मिली जाग, बड्डे गलास आह्ली लस्सी। राजस्थान ते गुजरात च छाछ जियां हर खाने दी साथी बनी जंदी है, ते बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश च सत्तू दा शरबत, ओह्दी ते गल्ल गै केह् है, ढिड्ड भी भरै, ताकत भी दे है। कोंकण ते गोवा च कोकम शरबत, सोल कड़ी। दक्षिण भारत च पानकम, नीरमोर, संबारम, ते ओडिशा च बेलपना। ओह सिर्फ पेय गै नहीं, भारत दे बक्ख बक्ख इलाकें दी परंपरा दा हिस्सा है, ते एह्दे च एक भारत श्रेष्ठ भारत दी भावना दी झलक भी मिलती है। ते एक गल जरूर ध्यान रखियो, इंदे चा मती हारियां चीजां साढ़ी अपनी रसोई थमां निकलियां न, साढ़े खेतर खलिहाने चा निकलियां न। कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियें दा अनुभव उंदे च समाए दा है। तुस भी गर्मी दे दौरान देसी पेय जलें दा खूब आनंद लाओ। साथियो, गर्मी आउंदे गै एक होर चर्चा हर घर च शुरू हो जंदी है, ते ओह है अंब। अंब आम चर्चा दा विशे होंदा है। भारत च शायद गै कोई घर होग जित्थै गर्मियें च अंबै दी गल्ल नेईं होंदी होऐ। हर इलाके दा अपना अंब, अपना सुआद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र ते कोंकण दा हापुस अल्फेंसो, गुजरात दा केसर, एह ते आम रस दी जान है। उत्तर प्रदेश दा दशहरी ते मेरी काशी दा लंगड़ा। उ'आं लंगड़े अंब दी इक खास गल्ल होंदी है, पक्कने परैंत भी उहदा रंग कई बारी सैला गै रौंह्दा है। बिहार दा जरदालू, जिहदी खुशबू दूरा थमां गै पछाण च आई जा। चौसा, मालदा, हर नां दे कन्नै लोकें दियां यादां जुड़ी दियां न। दक्खण भारत जाओ तां बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल दा हिमसागर, उड़ीसा ते आंध्र प्रदेश दा सुवर्ण रेखा। यानी जगह बदलदी है, अंब दा रूप रंग ते उहदा सुआद भी बदली जांदा है। ते साथियो, अंबा दी यात्रा हुण ग्रां थमां ग्लोबल मार्केट धोड़ी भी पुज्जा करदी है। अज्ज मन की बात राहें मैं अंबा की पैदावार कने जुड़े दे अपने करसान भरा भैन की तारीफ

करंग, तुस मुल्खा दी कृषि अर्थव्यवस्था आस्तै आम करसान नहीं बड़े खास हो, इ'यां गै छाए रवो। साथियो, गर्मी दे इ'नें दिनें उ'आं ते स्कूली दी छुट्टियां होंदियां न, लेकिन मैं इक नई क्लास दी गल्ल करंग जेह्दे च अपने दाखले दा तुं'दा मन करी होग। साथियो, इक स्थिति दी कल्पना करो, इक नया स्कूल जित्थै बच्चे भी आंदे होन, युवा भी ते बजुर्ग भी, जित्थै कोई फीस नहीं होऐ, कोई बड्डी बिल्डिंग नहीं होऐ, कोई क्लासरूम भी नहीं होऐ, ते सभनें शा दिलचस्प गल्ल उत्थै क्लास दरिया च लगदी होऐ। साथियो, एह् कोई क्हानी नहीं है, एक सच्ची कोशिश है। केरलम दे आलुआ च साजी वाला शेरिल जी नया गै इक स्विमिंग क्लब चला करदे न। अजें धोड़ी 15,000 कोला मते लोक इत्थै तारी सिक्खी चुके न। साजी जी ने दिव्यांग बच्चें गी भी स्विमिंग सिखाई है। इस कोशिश दे पिच्छें इक पीड़ भी छपी दी है। किश बरे पैह्लें इक किश्ती हादसे च केईं विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई ही। उस घटना ने साजी जी गी अंदरै धोड़ी लाई दिता। उन्हें सोचा जे बच्चें की तारी आउंदी तां खबर है कई जाना बची जांदियां। बस इत्थों तक शुरू हुआ उंदा ए अभियान। साथियो, साजी वाला शेरिल जी का जीवन असें गी एक बड़ी बड़ी सिक्ख्या दिंदा है। सेवा करने आस्तै बड़े बड़े साधन जरूरी नहीं होंदे, जरूरी होंदा है एक अच्छा इरादा ते लगातार कीती गई कोशिश। इंदे गै जोरे पर हजारें बद्दे लोकें दी जिंदगी च बदलाव आनिया जाई सकदा है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनें मिगी यूरोप ते नीदरलैंड जाने का मौका थोआ। उत्थै मैं कई मीटिंग्स शामिल हुआ। इस्सै दौरान एक नया खिण आया जिन्हें हर भारती गी गर्व कन्नै भरी दिता। नीदरलैंड्स च आयोजित एक विशेष समारोह च चोला काल की प्राचीन तांबे की पट्टिका भारत की वापस सौंपिया गई। उस कार्यक्रम च नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद हे। इन्हें तांबे पट्टिकाएं की लेइयै मिगी देश विदेश थमां लगातार स्नेह थ्होआ करदे न। लोग खुशी दस्सा करदे न, गर्व दस्सा करदे न। दुनिया भर के तमिल समुदाय च भी इसी लेइयै खासा उत्साह है। साथियो, इन्हें तांबे की पट्टिकाएं की लेइयै लोकें च काफ़ी जिज्ञासा भी है। इसै करी अज मैं इहदे कन्नै जुड़ी दी किश गल्लां तुंदे कन्नै सांझा करना चाहंग। इंदे च इक्की बड्डी ते त्रै लौकियां तांबे दियां पट्टिकां न। यह मुख रूपा कन्नै राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला दे एक वचन गी पूरा करने कन्नै जुड़ी दियां न। इंदे च अनई मंगलम ग्रां गी एक बौद्ध विहार गी दान देने दा जिक्र है। इन्हें ताम्र पट्टिकाएं च चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन थोंदा है। इंदे शा पता चलता है जे चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति किन्नी मजबूत ही। दक्षण पूर्व एशिया के मुल्खें कन्नै उंदे सरबंधे की जानकारी भी इंदे च मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास ते संस्कृति पर असें सभनें की बड़ा नाज है। साथियों, साड़ी सरकार भारत की नई अमूल्य धरोहरें के संरक्षण आस्तै लगातार कोशिश करा करती है। इसै क्रम च ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार च भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। इत्थै त्रै दुर्लभ ताम्र पट्टिका थोईयां न। यह पांडुवंशी राजवंश के महारषि बालार्जुन के शासनकाल कन्नै जुड़ी दी मन्नी जा करदियां न। विशेषज्ञ मनदे न जे यह इंस्क्रिप्शन 6वीं-7वीं सदी दे न, यानी 1400-1500 साल पुराने ये ताम्र पट्टिका प्राचीन ब्राह्मी लिपि ते पाली भाषा च लिखी गई हैं। इंदे कन्नै उस बेले की शासन व्यवस्था, धर्म ते संस्कृति बारे महत्वपूर्ण जानकारी थोंदी है। साथियों, असें भारतीयों च खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की लेइयै हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। साढ़े मुल्खा च अज भी सदियों पुरानी ऑब्जरवेटरीज मौजूद न। इत्थें अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज होईयां न। नेविगेशन होए, पंचांग होए या साढ़े पर्व त्यौहार, इन्हें सभनें का संबंध गास ते तारे कन्नै रहा है। साढ़े इधर एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी च उत्सुकता जगाई है, उसी एक्सप्लोरेशन आस्तै प्रेरित कीता है,
ते अज्ज दे युवाएं च बी।

ची लेइयै काफी उत्साह लभदा ऐ। अजकल तुस बी दिखदे होगे, सारे मुल्खा च एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी कन्नै लोकप्रिय होआ करदे न। बड्डे शहरें शा लेइयै लौह्के कस्बे तोड़ी, स्कूलें थमां लेइयै पार्कें तोड़ी इन्नियां गतिविधियां लभदियां न। मिगी बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी दे बारे जानकारी थ्होई। इत्थै ऑब्जर्वेशनल सेशन आयोजित कीते जंदे न। इस संस्था ने ग्रामीण इलाकें च एस्ट्रोनॉमी की लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नां दी एक टीम ने 30 घंटे का एक बड़ा गै इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रातीं तारें की निहारना अपने आप च अद्भुत अनुभव हुंदा है। एस्ट्रो केरला नां दी एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप्स ते वर्कशॉप्स आयोजित करती है। इत्थै युवा साथी टेलीस्कोप बनाना ते स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट दे बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर दे जंगलें थमां लेइयै कच्छ दे रण तोड़ी अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित कीते न। ज्योति विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी दे सभनें शा पुराने संस्थानें चा इक है। इत्थै ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज दे कन्नै कन्नै बुक्स लाइब्रेरी ते टेलीस्कोप लाइब्रेरी दी सुविधा भी है। मैं आईजैक दा भी जिक्र करना चाहंग। ए एक स्टूडेंट लैड नेशन वाइड नेटवर्क है जिड़ा एस्ट्रोनॉमी ते एस्ट्रोफिजिक्स क्लब्स की आपस च जोड़दा है। साथियों, अपनी हॉबी आस्तै बैल कढ़ना ते लगातार किश नमां सिखदे रौह्ना अत जरूरी है। में युवाएं गी आग्रह करंग जे ओह् कुसै एस्ट्रोनॉमी क्लब कन्नै जरूर जुड़न ते इनें छुट्टियें च कुसै प्लैनेटोरियम गी भी जरूर दिक्खन जान। साथियों, मन की बात कार्यक्रम गी जेह्ड़े लोग टीवी पर दिक्खा करदे न, में उनेंगी आखंग इक वीडियो जरूर दिक्खियो। एह् वीडियो जंदे ध्याड़े बड़ा चर्चा च रिहा। एह्दे च किश लोग बड़े सबर बड़ी सावधानी कन्नै इक गंगा डॉल्फिन गी बचाने दी कोशिश करा करदे न। तुसें गी एह् समझियै हैरानी होग, इस पूरे प्रयास च करीब 13 घंटे लग्गे ते आखिरकार ओह् डॉल्फिन बची गई। साथियों, एह्दे च बड़ी बड्डी भूमिका रही भारत दी पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस दी। एह् घटना उत्तर प्रदेश दी है। उत्थै इक गंगा डॉल्फिन नहर च फंसी गई। इस बेल्लै नमामी गंगे अभियान दे तैह्त बनी एह् एम्बुलेंस ओह्दे आस्तै मेद बनियै पुज्जी। फ्ही बड़ी एहतियात कन्नै उसी बाहर कड्ढिया गया, ओह्दी जांच पड़ताल कीती गई, ओह्दा इलाज कीता गया ते ओह्दे परैंत उसी सुरक्षित राप्ती नदी च छोड़ी दित्ता गया। एक चाली आखिया जा तां इक जीवन फ्ही अपने घर परतोई गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बड़ा खास है। इसी एक चलते फिरते अस्पताल आंगर तैयार किया गया है। एह्दे च डॉल्फिन की सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, खास स्ट्रैचर न, बचाव के उपकरण, यानी जे कोई डॉल्फिन जख्मी हो जा, नहरा च फसी जा, जा नदी थमां निकली जा तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जेल्ले अस गंगा डॉल्फिन की बचाने तां अस सिर्फ एक प्रजाति की नहीं बचाने, अस गंगा की जैव विविधता की बचाने, नदी के पूरे जीवन तंत्र की बचाने ते अपनी आने वाली पीढ़ी आस्तै प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाने। मेरे प्यारे देशवासियों, तुंदे चा बड़े हारे लोकें दी नदी तलाब या खूह दे पानी कन्नै जुड़ी दियां यादां जरूर होंगन। कुसा गी तलाब च तरना चेता होग, कुसा गी दोस्तें कन्नै तलाब दे कंढे खेडना, कुसा गी उस मिट्टी की खुशबू चेता होग। बचपन दे नेह चेते जीवन भर मना च बसे दे रौंदे न। साथियों, नेह गै चेते गी बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले थमां सामने आई है। बस्ती दे आकाश गुप्ता अपने ग्रां दी मनोरमा नदी की दिक्खियै बड़े गै दुखी हुंदे हे, की जे जिस नदी की उन्हें बचपन च साफ ते जीवंत दिखया हा, समय दे कन्नै उस नदी च प्लास्टिक जमा होण लगा हा, गंदगी बदती चलती जा करती ही। श्रीमान आकाश ने तय किया जे शिकायत नहीं करंगन, एक नवी शुरुआत करंगन। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बनी गया। उन्हें अपने दोस्तें की कन्नै लिया। सिर्फ जाल हा, बेलचा हा, टोकरी ही ते सबने शा बड़ी ताकत ही किश बदलने का संकल्प। ये युवा नदी च उतरते हे, जल कुंभी कढ़ते हैं,

लीजिए अब सुनिए खुशबू फिल्म से गीत आशा भोसले की आवाज में। गीतकार गुलजार, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत मीडियम वेव DRM और FM पर। हम आकाशवाणी के जम्मू केंद्र से बोल रहे हैं। 12:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन।
1: आकाशवाणी जम्मू से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के समाचार दर्शन की शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के जम्मू दौरे के साथ। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह गत सप्ताह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे और उन्होंने कहा कि धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है और लोगों का मानसिक बदलाव भी हुआ है। लखनपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास स्कीमों और प्रयासों को उजागर किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 सिखलाई शिविर दौरान उन्होंने सरकार के कई सारे कामों को उजागर किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा,
2: जो विकास के कार्य गत 12 वर्षों में हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आप स्वयं देख सकते हैं। कठुआ में मेडिकल कॉलेज भी अभी आया, कठुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज, उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज, उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, अब तो बायोनेस्ट इंक्यूबेटर भी लग गया। आप जिस तरफ भी नजर, पासपोर्ट का दफ्तर भी नहीं 10-12 बार, तो मुझे लगता है कि कठुआ स्वयं अपने में एक चित्र प्रस्तुत करता है।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि नशीले पदार्थों की तस्करी और इसके द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देना जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा, प्रशासन इसके साथ निपटने के लिए पूरी सरगर्मी के साथ काम कर रहा है। इस विषय पे बोलते हुए मनोज सिन्हा ने कहा,
3: जम्मू कश्मीर की धरती से नशे की बदुआ को जड़ से मिटाने का यह पुख्ता इरादा आज पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चा का विषय बन गया है। 45 दिन पहले जम्मू के मेन स्टेडियम से मैंने तस्करों और नार्को टेरर के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि आवाम से वायदा किया था, और वो जन अभियान आज एक जन आंदोलन का स्वरूप आप सबके सहयोग से बनता जा रहा है, जो हमारे समाज को जागृत करे, युवाओं को प्रेरित करे और नशे की इस भयंकर त्रासदी से प्रभावित हर परिवार की गरिमा को फिर से स्थापित करे।
1: जम्मू कश्मीर को नशे से आजाद कराने के लिए गत 11 अप्रैल को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से जम्मू में तवी नदी के किनारे मौलाना आजाद स्टेडियम से शुरू किया गया नशा मुक्त अभियान अब एक जन आंदोलन बन चुका है। समाज का हर वर्ग इस अभियान में भागीदारी दे रहा है। पुलिस व अन्य एजेंसियां भी पूरी सक्रियता के साथ इसमें भाग ले रही हैं। 100 दिवसीय अभियान के पहले कुछ दिनों में ही प्रदेश के विभिन्न भागों में पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने के अलावा कई तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। कई सारी FIR दर्ज की गई हैं और कई किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए। इसी क्रम में रामबन जिले में नशा मुक्त अभियान के तहत प्रदेश के 100 दिन का संबंधी अभियान जोरों शोरों से जारी है। इसमें मुकामी जिला प्रशासन, सेहत व समाज कल्याण महकमा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज और मुकामी समुदाय की शमूलियत भी इसमें देखी जा रही है। कई रैलियां निकाली जा रही हैं, कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक, मैराथन वगैरह का भी आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए ADC रामबन वरुणजीत सिंह चाड़क ने कहा,
4: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के 100 दिन के अभियान के तहत हमारे रामबन में हमारी 143 पंचायतें हैं और सभी पंचायतों में हमारा ये नशा मुक्त अभियान चल रहा है। हर जगह पे हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम हम करा रहे हैं। अभी तक हमारे 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में हमने एंटी ड्रग सर्मन्स जो है वो डिलीवर भी कराए और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया। हर एक रिलीजियस लीडर ने इसमें अपनी ओर से बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करके लोगों को नशे के विरुद्ध जानकारी दी है।
1: नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने और नशे के बुरे असर के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए उधमपुर प्रशासन की ओर से भी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कॉलेज ऑफ एजुकेशन में विशेष मुशायरे का आयोजन किया गया। उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। SSP उधमपुर भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने अपनी रचनाओं के साथ लोगों में नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा की। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत करते हुए उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने कहा,
5: जिला प्रशासन अलग अलग टाइप के इवेंट्स कर रहा है, पदयात्रा हो, वो स्कूल कॉलेजेस में डिबेट, सिंगिंग, क्विज कंपटीशन हो, राइटिंग हो, इसके अलावा हर पंचायत में हम फंक्शंस कर रहे हैं। उसी सिलसिले में एक मुशायरा कंपटीशन भी किया गया है। आगे आने वाले वक्त में भी हमारी कोशिश है कि स्पोर्ट्स के माध्यम से इस मैसेज को पहुंचाए कि लोग स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को हम फैलाएं सो दैट लोग उसके तरफ आए। आने वाले वक्त में हमारा एक उधमपुर गॉट टैलेंट कॉम्पिटिशन भी होने वाला है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, की जितने भी हमारे बडिंग सिंगर्स है उनको मिक्स में एंगेज करें। योगा डे में भी हम कोशिश करेंगे, जिले के कई सारे लोकेशंस में योगा कॉम्पिटिशंस कराए। हमारा ये की मकसद है कि हमारे जितने युवा हैं उनको सकारात्मक कामों की तरफ हम आगे बढ़ाएं।
1: 2027 वर्ष वाली जनगणना के पहले चरण के तहत जम्मू कश्मीर में नागरिकों द्वारा खुद अपना पंजीकरण करवा के अपना ब्यौरा दर्ज करवाने संबंधी सेल्फ इन्यूमरेशन की प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है और घर घर जाके लोगों से आंकड़े इकट्ठे करने संबंधी हाउसिंग लिस्टिंग वाला अभियान कल से शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिकारियों ने बताया है कि इन्यूमिनेटर्स और सुपरवाइजर्स कल से लेकर 30 जून तक घर घर जाके लोगों से उनके घर और आबादी के मुतल्लिक सटीक जानकारियां हासिल करेंगे। लोगों से अपील की गई है कि वे संबंधित अमले के साथ सहयोग करें और उनको सटीक आंकड़े दें और अपने आंकड़ों को दर्ज करवाएं। इस संबंध में अधिक जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर के चीफ प्रिंसिपल सेंसस अधिकारी अमित शर्मा ने कहा,
6: देखिए सेंसस 2027 है जिसको हम जनगणना के नाम से प्रचलित होता है और हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख में ये मर्दमशुमारी के नाम से भी प्रचलित है उर्दू में। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें लोगों से एक सर्वे किया जाता है सरल शब्दों में, जिससे आपके हाउसिंग कंडीशंस का पता चलता है, जिसको हम पहला मरला बोलेंगे इसका, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, और दूसरा मरला इसका होता है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जिसमें जनगणना में बाकी डिटेल्स ली जाती हैं आपकी। तो जो पहला मरला है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, इसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 1 से 30 जून के बीच ये करवाया जाएगा जम्मू कश्मीर में भी और लद्दाख में भी। और जहां तक पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का सवाल है तो उसके लिए फिक्स्ड है जो हमारे बर्फानी इलाके हैं या पहाड़ी इलाके जैसे कहा जाता है, नॉन सिंक्रोनस एरियाज, उनका सितंबर के माह में हो जाएगा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। और जो मैदानी प्लेन इलाके हैं पूरे भारत के साथ जम्मू कश्मीर के भी जो मैदानी इलाके हैं उनका फरवरी 2027 में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ मैं आपके सुनने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि इस बार की जनगणना पिछली जनगणनाओं से बिल्कुल हटकर है, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। इस बार पूरा सेंसस मोबाइल फोन पे डेटा लिया जाएगा, तो हमारे जो भी एन्यूमरेटर सुपरवाइजर हैं वो अपने मोबाइल पे ऐप पर जाकर डेटा लेंगे और पेपरलेस सेंसस होगा। जो पुराने गत वर्षों में सेंसस होते थे वो इतना बड़ा झोला लेकर, लंबा लंबा पर्चा लेकर लोग गांव गांव में जाते थे और वो भरते थे, तो अब उस चीज को पीछे छोड़ते हुए

0: आज हम डिजिटल इंडिया के एरा में काम कर रहे हैं, तो पूरा उसकी तरफ ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। और इसके चलते हम ये पूरा सेंसस के दोनों फेज, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन और पहला जो हाउस लिस्टिंग जो 31 जून हो रहा है, ये टोटली पेपरलेस होगा। अपने मोबाइल पे सब लोग डेटा लेंगे और वो डेटा बाद में हमारे सर्वर्स में एनक्रिप्टेड फॉर्म में चला जाएगा, टोटल सेफ सिक्योर तरीके से। और हमारे डेटा सेंटर्स भारत के अलग अलग विभिन्न जगहों पे, जैसे दिल्ली में, लखनऊ में, बेंगलुरु में है, तो उनमें ये सेफ तरीके से रहेगा। और वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो पूरी उनकी, जैसे आप देखते हैं CISF एयरपोर्ट पूरा वो डिक्लेयर्ड है, तो माने कि पूरी सेफ्टी के साथ डेटा लिया जाएगा।
1: ये आपके ऊपर रखा है, मतलब रात को 12 बजे तक ये खुला है। अभी जो हाउसिंग एंड हाउस लिस्टिंग का हमारा जो HLO का पहला मरला है, उसके रिगार्डिंग ये लोग अपना डेटा खुद भर सकते हैं। 33 सवाल है, बड़े सिंपल से ऑप्शंस आते हैं उसमें, उनको सिर्फ उसको जवाब देना था। और अगर उनका रह गया है तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। 1 से 30 जून, अगले जो सोमवार है, सोमवार से लेकर अगले 4 हफ्ते तक घर घर हमारे सुपरवाइजर और एनुमरेटर जाएंगे, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स जो है उसमें विजिट करेंगे, तो वो लोग अपना तब दे सकते हैं।
2: सेल्फ एन्यूमरेशन करवा चुके जम्मू कश्मीर के मुकामी बसनीक पंकज ने हमसे बातचीत करते हुए कहा,
3: हमारे प्रदेश में 17 मई से शुरू हुई सेल्फ एन्यूमरेशन आज रविवार 31 मई को रात 12 बजे समाप्त हो जाएगी। मैं खुद ऑनलाइन अपनी गणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन करके अपना कर्तव्य निभा चुका हूं। आप भी आज छुट्टी वाले दिन रविवार का पूरा लाभ उठाकर अपनी गणना करें। ये प्रक्रिया एकदम सरल और सुगम है। आपको बस se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार और अपने घर से जुड़े चंद आसान सवालों के जवाब देने हैं और अंत में जनरेट आईडी को संभाल के रखना है। जब आपके घर एन्यूमरेटर आए तो उन्हें यही आईडी दीजिए और डाटा को वैलिडेट करवाकर एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दीजिए। भाई मैं तो सेल्फ एन्यूमरेशन कर चुका हूं, आप भी कीजिए और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दीजिए।
2: खेल मंत्री सतीश शर्मा ने गत सप्ताह मेरा साहिब में BSF जम्मू क्षेत्र लॉन टेनिस सपंदन लीग 2026 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन BSF द्वारा राष्ट्र की सेवा में 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास को बढ़ावा देकर खेले नौजवानों के विकास और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। समारोह के समापन के दौरान विजेताओं में और प्रतिभागियों में इनाम बांटेंगे। और इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए एक प्रतिभागी ने कहा,
4: मेरा नाम सार्थक जैन है। मैंने इस टूर्नामेंट में जो BSF ने ऑर्गेनाइज कराई थी स्पंदना लीग, उसमें मैन सिंगल जीता ओपन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि BSF ने टूर्नामेंट कराई। ऐसी टूर्नामेंट्स और होनी चाहिए ताकि खेलों को बढ़ावा मिले, लोग और जुड़े गेम्स के साथ, क्योंकि गेम्स खेलने से हम फिट रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे।
2: जम्मू कश्मीर और पूरे देश का मान बढ़ाते हुए रियासी जिले के भेमाग तहसील की रहने वाली ज्योति देवी ने श्रीलंका में आयोजित 23वीं कराटे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि को मनाने के लिए रियासी में एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पे उनको उनके उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। श्रीलंका में आयोजित की गई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 10 देशों की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत करते हुए ज्योति ने कहा,
5: टोर पंचायत एक दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ से उठकर नेशनल खेलना बहुत मुश्किल होता है, खासकर लड़कियों के लिए। और हमने जो इंटरनेशनल खेला है श्रीलंका में, और इसमें हमारे जो कोचेस हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनको फुल सपोर्ट रहा है। लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बस उनको एक मौका मिलना चाहिए।
2: इस अवसर पर बोलते हुए ज्योति के कोच कैलाश ने कहा,
6: इन 9 बच्चियों ने एक इतिहास रच दिया है इन तीनों तहसीलों के लिए और साथ में पूरे J&K के लिए, पूरे भारत देश के लिए। इन 9 बच्चियों में से 3 गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 6 सिल्वर मेडलिस्ट हैं। ये श्रीलंका में जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुआ है कराटे का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सिद्धांत है, उसको आगे बढ़ाते हुए अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में हम सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए।
2: देश भर में फिट इंडिया मूवमेंट अभियान के तहत जारी गतिविधियों के एक हिस्से के तौर पर IRP 1 बटालियन हेडक्वार्टर रियासी की ओर से गत सप्ताह रियासी में संडे ऑन साइकिल्स के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली को बटालियन हेडक्वार्टर रियासी से झंडी दिखाकर रवाना किया।

0: गया जिसका मकसद सेहतमंद जीवन शैली, तंदुरुस्ती और खेल और शारीरिक गतिविधियों में लोगों की शमूलियत को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में नशीले पदार्थों के खिलाफ एक सख्त संदेश भी दिया गया और नौजवानों को खेलों और शारीरिक गतिविधियों के जरिए सेहतमंद और सकारात्मक आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत करते हुए इसके आयोजक ने कहा,
1: संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया के तहत हमने आज करवाया, जिसमें दो स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। तो 50 बच्चों ने भाग लिया, 50 बच्चे 50 जवान हमारे भी थे। हमने 4-5 किलोमीटर वॉक भी किया, रन किया और साइकिलिंग भी की। तो बच्चों को यही मैसेज है कि ड्रग से फ्री रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो मेंटली और फिजिकली अलर्ट रहेंगे। हमारा यही संदेश रहेगा रियासी के स्कूल के बच्चों को, नौजवानों को, कि ड्रग से अवेयर रहें, फिट रहें और इंडिया के आगे फ्यूचर में तो बच्चों का ही योगदान रहता है। तो हमारी सिक्योरिटी और हमारी एनर्जी के लिए बच्चों को ये पार्टिसिपेट करना जरूरी है।
0: आज के प्रादेशिक समाचार दर्शन में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया चक्षु कत्याल ने, वाचक एवं सह संपादक श्रुति खजूरिया, संपादक एन गुलशन रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के प्रादेशिक समाचार एकांश की।
2: तो सुनारते ही प्रादेशिक समाचार दर्शन।
3: नशा जानलेवा है, नशे का सेवन करने के बाद गाड़ी मत चलाइए, ये आपके परिवार के हित में है।
2: मीडियम वेव DRM ते FM ऊपर अस आकाशवाणी दे जम्मू केंद्र थमां बोलारने आ 12:05 आरती न लाउन सुनो डोगरी च प्रादेशिक खबरां।

ए आकाशवाणी जम्मू ऐ हुन तुस विजय बजाज कोला खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें देशवासियें गी गुजारिश कीती ऐ जे ओह् मौजूदा सोए दी रुतै दौरान अपना बड़ा मता ख्याल रक्खन, नियमित वक्फे पर पानी जां फ्ही होर तरल पदार्थ पींदे रौह्न ते सरकार पासेआ जारी दिशा निर्देशें दी पालमा बी यकीनी बनान। अज्ज आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम दे राएं देश विदेश दे लोकें कन्नै विचार सांझे करदे होई श्री मोदी होरें देशवासियें गी आम पन्ना, मट्ठा, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना ते कोकुम शरबत जनेह पारंपरिक तरल पदार्थ पींदे रौह्ने दी सलाह दित्ती ते भारत दी सांस्कृतिक बन सबन्नता उप्पर लोह भी पाई। प्रधानमंत्री होरें देसै च अंब दिएं किस्में बारै बी गल्लबात कीती ते भारत दे उत्पादें गी आलमी सतह दे बाजारें तोड़ी पजाने लेई अन्नदाता करसानें दी सराहना कीती। उनें नीदरलैंड्स दी तरफा चोल साम्राज्य दे समें दियां प्राचीन ताम्र पट्टिकां भारत गी वापस सौंपे जाने दा भी जिक्र कीता ते आखेआ जे एह् देशवासियें लेई बड़े गै गर्व आह्ला पल हा। अज्ज दे अपने मन की बात कार्यक्रमै च प्रधानमंत्री होरें 100 मीटर द्रौड़ दे रिकार्ड त्रोड़ने आह्ले गुरविंदर सिंह ते अनिमेश कुजूर हुंदे कन्नै गल्लबात कीती। एह्दे अलावा प्रधानमंत्री होरें खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी क्लबें च बधदी दिलचस्पी सनै शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण ते समाज सेवा दे खेत्तरें च कीती जा'रदियें पैह्लकदमियें पर भी लोह पाई ते बसनीकें गी गुजारिश कीती जे ओह् पूरी सक्रियता दे कन्नै राष्ट्र निर्माण च अपना योगदान देना बरोबर जारी रक्खन। प्रदेश दी सरकारै आखेआ ऐ जे उन्ने मकामी शिक्षकें कन्नै जुड़े दे उंदी योग्यता परखने आह्ले टैट दे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट च समीक्षा याचिका दायर करने दा फैसला लैता ऐ। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू होरें सोशल मीडिया दी इक पोस्ट च दस्सेआ ऐ जे सरकारै लगातार इस मामले पर तक्क रखी दी ऐ ते टीचरें दे हितें दी राखी आस्तै ठोस गैंई पुट्टियां न। उनें दस्सेआ जे समीक्षा याचिका दर्ज करने दी मंजूरी पैह्ले गै दित्ती गेदी ऐ ते कानून, न्याय ते संसदीय मामलें दे विभाग ने अपनी स्टैंडिंग काउंसल गी लोड़चदी कार्रवाई रंभ करने दे निर्देश जारी कीते न। मंत्री होरें गलाया जे पटीशन तैयार होई गेदी ऐ ते अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट च फाइल करी दित्ती जाग। उनें दोहराया जे सरकार शिक्षकें दे हितें दी राखी आस्तै वचने बज्जी दी ऐ। 8वां केंद्री तनखाह आयोग अज्जै थमां जम्मू कश्मीर दे दौरे पर ऐ ते एह 5 जून तोड़ी प्रदेश च गै रूकग। अपने इस दौरे दौरान कमिशन पासेआ बक्ख बक्ख सरबंधत धड़ें जिआं सरकारी मलाजमें, संगठनें ते एसोसिएशनें वगैरा कन्नै सलाह सूत्र कीता जाग। आयोग दा कल दपैह्री जून च श्रीनगर दे शेरे कश्मीर अंतर्राश्ट्री कन्वेंशन सेंटर च दिनें 11 बजे शा 1 बजे तोड़ी केंद्र शासित प्रदेश दी सरकार कन्नै गल्लबात करने दा भी कार्यक्रम ऐ। मुक्ख सचिव अटल डुल्लू हुंदी अगुवाई आह्ली इक उच्ची सतह दी टीम इस बैठकै च हिस्सा लैग ते आयोग अग्गे अपनी पेशकारी भी करग। इस टीम च अतिरिक्त मुक्ख सचिवें ते प्रधान सचिवें दे अलावा जीएडी, कानून

0: ते खजाना मैह्कमे दे ऐह्लकार बी शामल होंगन। ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा होरें कल केंद्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हुंदे कन्नै मलाटी लाई ते रजौरी ते पुंछ आह्ले सरहदी जिलें च रेल राबते दी जोरदार वकालत कीती। उनें प्रस्तावित जम्मू अखनूर डोरी डगेर सुंदरबनी नशैरा रजौरी पुंछ रेल लाइन च पैह्ल दी बिनाह पर विचार करने दी अपील कीती ते इस इलाके ताईं एह्दे रणनीतिक माली ते समाजी महत्वै पर जोर पाया। शर्मा होरें परियोजनाएं लेई इक नमें मुमकिन अध्ययन ते राष्ट्रीय प्राथमिकता दर्ज करने दी प्रार्थना कीती। उनें जम्मू कश्मीर च आईटी पार्क इनक्यूबेशन सेंटर ते दूर दरेडे इलाकें च इंटरनेट सने बेहतर डिजिटल ढांचे दी भी मंग पुट्टी। 2027 ब'रे आली मरदमशुमारी दे पैह्ले गेड़ तैह्त जम्मू कश्मीर च नागरिकें आसेआ आपूं आनलाइन अपने ब्यौरे दर्ज करने सरबंधी सेल्फ इनमरेशन दी प्रक्रिया अज्ज संभरदी ऐ ते घर घर जाइयै लोकें थमां आंकड़े कठेरने सरबंधी हाउस लिस्टिंग आला अभियान कल्लै थमां शुरू होग। अधिकारिएं दस्सेआ जे इनमरेटर ते सुपरवाइजर कल्लै थमां लेइयै 30 जून तोड़ी घर घर जाइयै लोकें थमां उंदे घरें ते आबादी मतलक सटीक आंकड़े दर्ज करङन। बसनीकें गी अपील कीती गेई ऐ जे ओह् सरबंधत अमले दा सहयोग करन ते उनेंगी सटीक आंकड़े गै दर्ज करोआन। जम्मू कश्मीर दिएं शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू होरें जम्मू संभाग दे सोए आह्ले जोन हेठ पौंदे सब्भनें सरकारी ते प्राइवेट कालजें च 1 जून थमां 15 जुलाई तोड़ी सोए आह्ली छुट्टिएं दा ऐलान करी दित्ता ऐ। मंत्री होरें आखेआ जे एह् फैसला बड़ी भारी गर्मी गी दिक्खदे होई विद्यार्थिएं शैक्षणिक अमले ते कालजें दे होर दुए अमले दी सुरक्षा ते कल्याण यकीनी बनाने दे मकसद कन्नै लैता गेआ ऐ। मंत्री होरें इब्बी जानकारी दित्ती जे सोए दिएं छुट्टिएं आह्ली अवधि मुक्कने दे बाद गै सब्भनें कालजें च नियमित शैक्षणिक गतिविधियां परतियै शुरू कीतियां जाङन। ते हुण मौसम। मौसम विभाग ने पेशनगोई कीती ऐ जे 3 जून तोड़ी मौसम आम तौरै पर खुश्क बने दा रौह्ग। फ्ही 4 ते 5 जून गी नेकें थाहरें पर परतियै बरखा गरज चमक कन्नै फुहारां ते तेज ब्हा चलने दी संभावना ऐ। मैह्कमे ने 6 थमां 8 जून तोड़ी आम तौरै पर मौसम फ्ही खुश्क रौह्ने दा अंदाजा जताया ऐ। एह्दे कन्नै गै खबरें दा एह् बुलेटिन समाप्त होगा।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: प्रदीप
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करें आपका बचाव।
5: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
6: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
7: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
8: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
9: यार स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 का क्या चल रहा है म्युनिसिपल काउंसिल्स कमेटी द्वारा?
10: अरे भाई ये देश का सबसे बड़ा सफाई सर्वे है और हमारे शहर की रैंकिंग भी इसी से डिसाइड होगी।
9: अच्छा पर हम क्या कर सकते हैं?
10: बहुत कुछ जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करो
9: और घर का कचरा
10: गीला और सूखा कचरा अलग रखो ताकि रिसाइकिल प्रॉपरली हो सके।
9: रिसाइकिल मतलब?
10: वही 3R मंत्र रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल।
9: और ये डोर टू डोर कलेक्शन
10: उसका यूज करो रोड या खाली जगह पर कचरा मत फेंको।
9: पब्लिक टॉयलेट्स का भी कुछ है?
10: हाँ भाई उसका सही यूज करो और क्लीन रखो।
9: और फीडबैक वाला क्या सीन है?
10: सिटीजन फीडबैक जरूर देना हमारी रेटिंग ही रैंकिंग तय करेगी।
9: मतलब प्लास्टिक मुक्त शहर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
10: स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज जम्मू की तरफ से जनहित में जारी।
11: ई आकाशवाणी ता जम्मू केंद्र श्रोताओ प्रस्तुत है कार्यक्रम अंगना।
12: अंगना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त सोनाक्षी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप लू तपती दोपहर और थका देने वाली गर्म हवाएं लेकर के आता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है हमारी दिनचर्या भी बदलने लगती है। हम यही कोशिश करते हैं कि दोपहर की तेज धूप से किसी तरह से बच जाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, हल्का भोजन

इस गर्मी से बचते होंगे। आखिर गर्मी तो इन्हें भी लगती होगी। हम इंसानों ने तो अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके आज बहुत सी ऐसी चीजें बना ली हैं कि गर्मी से हम बच सकते हैं। इतनी गर्मी में भी हम लोग अपने कमरे में बैठकर एसी लगाकर ऐसी ठंडक को महसूस कर सकते हैं कि मानो किसी पहाड़ी इलाके पर आ गए हों। श्रोताओं, अगर हम अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा भला तो इन बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपनी क्षमताओं का ज्यादा इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। कैसे? इन बेजुबानों के लिए हम पानी का इंतजाम कर सकते हैं। गर्मियों में इन बेजुबानों के लिए सबसे जरूरी है पानी। अपने घर के बाहर छत पर, बालकनी में या किसी सुरक्षित जगह पर एक मिट्टी का बर्तन पानी से भरकर हम रख सकते हैं। और वैसे भी मिट्टी के बर्तन में पानी ज्यादा देर तक ठंडा रहता है, तो बस हर रोज अगर हम इनके लिए पानी का इंतजाम कर दें तो सोचिए कितना अच्छा हो। और इसी के साथ साथ इनके खाने का भी इंतजाम हम आराम से कर सकते हैं। श्रोताओं, हमारे घर में हर रोज खाना बनता है और बहुत बार ऐसा होता है कि हर रोज हमारे घर में किसी ना किसी तरीके से खाना वेस्ट भी होता है। ऐसे में अगर हम थोड़ा खाना इन बेजुबानों के लिए बचा लें, उसे वेस्ट ना करें, तो सोचिए हम कितना भले का काम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब इस चीज का बहुत ही ध्यान रखें कि आप जो भी उन्हें खाना दे रही हैं वो ताजा और सुरक्षित हो। बहुत मसालेदार, नमकीन या खराब खाना पशुओं के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं तो इन गर्मियों में उनकी देखभाल भी जरूरी हो जाती है। अगर दोपहर के समय आप खुद गर्मी में नहीं निकल सकते तो अपने पालतू जानवरों को भी इतनी तेज धूप में बाहर न ले जाएं। श्रोताओं, गर्मियों में प्रकृति की देखभाल भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। पेड़ पौधे हमें छांव, ऑक्सीजन और ठंडक देते हैं, लेकिन तेज गर्मी में पौधों को भी पानी की जरूरत होती है। तो ध्यान रखें, आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं आप उन्हें पानी दें। तो श्रोताओं, गर्मी केवल हमारे लिए चुनौती नहीं है, ये पूरी प्रकृति, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए परीक्षा का समय है। हम अगर थोड़ा संवेदनशील बने तो कई बेजुबान जिंदगियों को राहत मिल सकती है। और वैसे भी श्रोताओं, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उनमें से हम इंसान ही केवल ऐसे जीव हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरे जीवों की जिंदगियों को भी बेहतर बना सकते हैं। तो श्रोताओं, गर्मी की इतनी बातें करते करते मुझे अपने बचपन की कुछ ऐसी बातें याद आ रही हैं जिन्हें सोचकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बचपन में गर्मियों के समय में वो दिन जब पापा शाम को कूलर में पानी भरा करते थे, उसके बाद रात को जब उस कूलर से ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ वो पानी की बूंदे पड़ती थी ना, तो इतना अच्छा लग जाता था। और गर्मियों में तो ज्यादातर बिजली जो है वो बंद ही रहती थी, तो ऐसे में हम घर से बाहर निकल कर बरामदे में छत पर मच्छरदानी लगाकर खुले आसमान के नीचे सो जाया करते थे बिना किसी डर के। समय समय की बात है, आज हम अपने घर के मेन गेट से लेकर के कमरों के दरवाजों तक को भी लॉक करके सोते हैं। समय समय की बात है, अब माहौल पहले जैसा तो नहीं है। बदलते समय के साथ साथ अब इंसान में भी बहुत बदलाव आ चुके हैं। इंसान अपनी इंसानियत शायद कहीं ना कहीं भूलता जा रहा है, अपने रिश्ते कहीं ना कहीं भूलता जा रहा है। श्रोताओं, कहते हैं जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह बांध पाना आसान नहीं होता। कुछ रिश्ते हमारे साथ जन्म से पहले जुड़ जाते हैं और जीवन भर हमारे हर सुख दुख, हर हार जीत, हर मुस्कान और हर आंसू के साथी बने रहते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता है माता पिता का रिश्ता। श्रोताओं, हम सबकी जिंदगी में माता पिता की जगह जो है बहुत खास है। बचपन में जब हमें चलना नहीं आता था तो वो हमारी उंगली पकड़ते थे, जब हम बोल नहीं पाते थे तो वो हमारी आंखों की भाषा समझ लेते थे, जब हम डर जाते थे तो वो हमारी हिम्मत बनते थे। हम लोग बड़े भी हो गए हैं, तब भी उनके लिए हम वही छोटे बच्चे हैं जिनकी चिंता उन्हें हर पल रहती है। माता पिता केवल हमें जन्म नहीं देते बल्कि हमें जीवन जीना भी सिखाते हैं। वो हमारी पहली क्लास होते हैं। घर में बोला गया हर शब्द, दिखाया गया हर व्यवहार, दिया गया हर संस्कार कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। बच्चे स्कूल में किताबों से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जीवन की सबसे गहरी सीख अक्सर घर से ही मिलती है। पर श्रोताओं, आज के समय में परिवारों का जो स्वरूप है वो

0: बदल रहा है। व्यस्त जीवन शैली, काम का दबाव, मोबाइल और डिजिटल दुनिया ने कई बार घर के भीतर की बातचीत को कम कर दिया है। हम अपने दोस्तों से, सोशल मीडिया से, दुनिया भर से जुड़े रहते हैं, लेकिन कभी कभी अपने ही घर में बैठे माता पिता से ठीक से बात भी नहीं कर पाते। कई बार वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हम उनके पास बैठे, उनसे दो बातें करें, उनका हाल पूछे और उन्हें ये महसूस कराएं कि वो हमारे लिए कितने जरूरी हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ माता पिता की जरूरतें भी बदल जाती हैं। कभी उन्हें हमारी आर्थिक मदद की जरूरत होती है, कभी स्वास्थ्य से जुड़ी देखभाल की, और कभी सिर्फ भावनात्मक सहारे की। जैसे बचपन में उन्होंने हमारी छोटी छोटी जरूरतों को समझा, वैसे ही कुछ समय बाद हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनकी जरूरतों को समझें। श्रोताओं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार आज माता पिता की इतनी बातें क्यों हो रही हैं? तो मैं आपको बता दूं कि 1 जून को हम मना रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, यानी कि वैश्विक माता पिता दिवस। ये दिवस हमें ये याद दिलाता है कि माता पिता परिवार की जड़ है। यदि जड़ मजबूत हो तो पेड़ भी मजबूत होता है। परिवार में प्रेम, संवाद, विश्वास और संस्कार बनाए रखने में माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। वो बच्चों को सिर्फ सफल बनाना नहीं चाहते, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। तो श्रोताओं, इस दिन का संदेश बहुत ही सरल है। अपने माता पिता को महत्व दीजिए, उनके त्याग को पहचानिए, उनकी बातों को समय दीजिए। अगर आपके माता पिता आपसे दूर रहते हैं तो कभी कभी एक फोन कॉल, एक प्यारा सा संदेश, अगर वो आपके साथ ही रहते हैं तो उनके साथ बैठकर चाय पीना या बस यही कहना कि वो उनके लिए कितने खास हैं, ये चीज उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। तो श्रोताओं, माता पिता हमारे जीवन का वो आशीर्वाद है जिसे कई बार हम बहुत ही सामान्य मान लेते हैं, लेकिन सच बात ये है कि उनकी दुआओं से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, उनके अनुभव से बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं होता और उनके प्रेम से सुरक्षित कोई स्थान नहीं होता। तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं एक और खास दिवस की बात, जो आ रहा है 5 जून को, और वो है पर्यावरण दिवस। श्रोताओं, समय के साथ हमारी जीवन शैली बहुत बदल गई है, हमारी सुविधाएं बढ़ी, रफ्तार बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति से हमारी दूरी भी बढ़ती चली गई। आज हम आधुनिक साधनों के बीच रहते हैं, लेकिन हमारी असली जरूरत आज भी प्रकृति से ही पूरी होती है। सांस लेने के लिए साफ हवा, पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन के लिए उपजाऊ मिट्टी और जीवन के संतुलन के लिए पेड़ पौधे। पर्यावरण कोई अलग विषय नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य, हमारे जीवन और आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य से जुड़ा हुआ है। जब हवा प्रदूषित होती है तो असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है, जब पानी दूषित होता है तो असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, और जब पेड़ कम होते हैं तो असर पूरे प्राकृतिक संतुलन पर दिखाई देता है। इसी जागरूकता और जिम्मेदारी को मजबूत करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें ये याद दिलाता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम अपने स्तर पर छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। पानी और बिजली की बचत, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, कचरे को सही जगह डालना और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना। श्रोताओं, पर्यावरण बचाना केवल एक दिन का संदेश नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की आदत है। तो श्रोताओं, इस खास दिन को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए एक वार्ता भी लेकर के आए हैं। इस वार्ता का विषय है प्रकृति के संग भविष्य के रंग, और वार्ताकार है ईशा साधु।
1: पर्यावरण हमारे आसपास का परिवेश है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। सरल शब्दों में कहें तो सभी तत्व तथा परिस्थितियां जो प्राकृतिक तौर पर हमारे चारों ओर मौजूद हैं, पर्यावरण कहलाती है। पर्यावरण को विभिन्न विषयों में प्राकृतिक वास, जनसंख्या, परिस्थिति एवं जीवमंडल जैसी शब्दावली से जाना जाता है। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का तात्पर्य हमारे चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है परिवेश, अर्थात हमारे चारों ओर पृथ्वी पर फैली प्रत्येक वस्तु हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। ये मूलतः मौलिक और जैविक तत्वों के पारस्परिक संबंध से बना है। पर्यावरण के मौलिक तत्वों में स्थान, भू, आकृतियां, जलाशय, जलवायु, जल उपवाह, शैल, मृदा, खनिज संपत्ति आदि सम्मिलित है। जबकि जैविक तत्व में मानव, पशु, पक्षी एवं वनस्पतियां सम्मिलित हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हमारे सामने आने वाली पर्यावरण चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के मद्देनज़र हर साल 5 जून को दुनिया भर के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों को कार्रवाई करने और अधिक टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जिस दिन हम पर्यावरण और इसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। इसके अलावा हरित पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण की वकालत करना आवश्यक है। ये बिल्कुल सरल है, क्योंकि जब हम आज पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ जीवन जी सकेंगी। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तभी से ही ये समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन्यजीव अपराध जैसे पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता का एक मंच रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस सार्वजनिक आउटरीच के लिए एक वैश्विक मंच है, जिसमें सालाना 143 से अधिक देशों की भागीदारी होती है। प्रत्येक वर्ष इस दिवस की एक विशेष थीम होती है, जो कि इस वर्ष भी है, हरित भविष्य की यात्रा, जो हमारे ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामूहिक प्रयास पर केंद्रित है। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया को मजबूत बनाने और ये सुनिश्चित करने की याद दिलाता है कि प्रकृति को हर कीमत पर संरक्षित रखना है। ये उन कारणों पर भी प्रकाश डालता है जो हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के लिए, उद्योग और कारखाने बड़े पैमाने पर प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं। वे उस हवा की गुणवत्ता को खराब कर रहे हैं जिसमें हम सांस लेते हैं और जो पानी हम पीते हैं। इस प्रकार ये विशेष दिन कई नागरिकों के लिए आंखें खोलने का काम करता है जो इस दिन के बारे में कम जानते हैं। दूसरे शब्दों में ये आम लोगों के लिए एक जागरूकता फैलाने वाला कार्य है। इसके अलावा ये विभिन्न समाजों और समुदायों की जनता को भी इस दिन को मनाने के सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा हम सबको पर्यावरण सुरक्षा के तरीकों को विकसित करने में सक्रिय एजेंट बनने का भी आग्रह करता है। इतना ही नहीं, ये हर किसी को अपने आसपास के परिवेश को सुरक्षित और स्वच्छ रखने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, ताकि हर किसी का भविष्य स्वच्छ, हरा भरा और अधिक समृद्ध हो सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी के लिए ये महसूस करना आवश्यक है कि जब पर्यावरण को बचाने की बात आती है तो हर छोटा कार्य मायने रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हरित जीवन शैली जीने के लिए कितना छोटा कदम उठा रहे हैं, क्योंकि यदि हर कोई एक एक करके छोटे छोटे कदम उठाएगा तो अवश्य ही पर्यावरण हरित होगा। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां अस्वच्छ रहने की स्थिति और गंदे पानी के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए हमें वहीं से शुरुआत करनी है। उदाहरण के लिए, जब पानी लंबे समय तक जमा हुआ या गंदा रहता है तो उसमें तरह तरह के कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मलेरिया, डेंगू और अन्य घातक बीमारियां होती हैं। इसीलिए हमें टैंकों, गमलों, कूलरों आदि को ढकना सुनिश्चित करना चाहिए, जो ऐसे कीड़े और बीमारियों के लिए प्रजनन का स्थल बन सकते हैं। इसी तरह कूड़ा निस्तारण के मुद्दों पर भी विचार विमर्श करना होगा। जगह जगह कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। कूड़े का सही तरीके से निपटान किया जाए और उसके अनुसार गीले और सूखे कचरे को भी अलग किया जाए। ये छोटे छोटे काम हमें एहसास दिलाएंगे कि हमारा जीवन कितना स्वस्थ हो जाएगा। ये छोटी छोटी संतुष्टिदायक चीजें और आदतों में बदलाव ही बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें

0: हर कीमत पर पर्यावरण की रक्षा करने की याद दिलाता है। जंगलों से लेकर महासागरों तक और मिट्टी से लेकर हवा तक प्रकृति के सभी संसाधनों का हमें संरक्षण करना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब अपने काम से कुछ समय निकालकर पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न अभियानों से जुड़ें। इसके अलावा बंजर भूमि पर छोटे छोटे पौधे लगाएं ताकि कुछ वर्षों के बाद वे भूमि क्षेत्र में विकसित और फल फूल सके। साथ ही इस दिन के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न जुलूसों में भी हिस्सा लें ताकि वह भी हमारे पर्यावरण की रक्षा में अपनी भागीदारी निभा सके। इसके अलावा स्कूलों में भी शिक्षक छात्रों को पेड़ लगाने के तरीके सिखाएं। स्कूल छात्रों को जंगलों तक ले जाने के लिए बसें उपलब्ध भी करवाई जाती हैं ताकि उन्हें विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में मालूम हो सके। इसके साथ ही वृक्षारोपण भी करवाया जाता है ताकि बच्चों से जो व्यवहारिक ज्ञान से अवगत हो सके तथा उसे पर्यावरण के प्रति भावनात्मक लगाव भी पैदा हो। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न निवारक उपाय भी करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे पर्यावरण की बर्बादी का मूल कारण है। मानव ने हमेशा अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का प्रयास किया है। इसके लिए विश्व के सभी देश अपनी प्रगति के लिए प्रकृति के संसाधनों का वहन कर रहे हैं, जिसका परिणाम है प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए अधिकाधिक पेट्रोलियम जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। घर को वातानुकूलित रखने के लिए एसी का उपयोग करते हैं तथा साथ ही साथ कारखानों से निकलने वाले जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। प्रदूषण को बढ़ावा देने में अपना योगदान दे रहे हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यदि इसे अभी भी कम न किया गया तो मानव सभ्यता को नष्ट होने में अधिक समय नहीं लगेगा। इस प्रदूषण का भयानक परिणाम ये हो सकता है कि इस पृथ्वी पर जीवन की परिकल्पना करना भी असंभव हो जाएगा। जबकि सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के बहुत से कदम भी उठाए हैं, जैसे सरकार ने राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में वनों के आसपास के क्षेत्र में पुनर्वास तथा वन रोपण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाएगा। हरित भारत राष्ट्रीय मिशन जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य योजना है, जिसमें जलवायु परिवर्तन को जलवायु अनुकूलन में परिवर्तित करना तथा इसकी शमन रणनीति के रूप में अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना है। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आवासों के रण तथा हानि में कमी लाने के लिए नीतियों का कार्यान्वयन करना, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, जल का संतुलित प्रयोग करना चाहिए, 3 R अर्थात रिसाइकल, रिड्यूस तथा रीयूज के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, वायुमंडल में कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक पालन करना चाहिए, जहाँ भी संभव हो सके पेड़ पौधे लगाना तथा उनका संरक्षण करना, वर्षा जल संचयन प्रणाली का उपयोग करना आदि सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसलिए अपने पर्यावरण की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है और इस सभी शोषण को रोकें जो इसे नष्ट कर रहा है, क्योंकि अंततः ये हमारे अस्तित्व और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी बुनियादी जरूरत है। हमें याद रखना है कि प्रकृति ने हमें जो उपहार और आशीर्वाद दिया है वह अमूल्य है। सभी के बेहतर भविष्य और जीवन के लिए इन सभी का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। हमेशा याद रखना है कि ये छोटे छोटे कदम हम सबको लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि ये विषय व्यक्तियों, सरकारों और व्यवसायों के लिए इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए है। ये दिवस हमारे कार्य पर विचार करने और ये सोचने का दिन है कि हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए सकारात्मक बदलाव कैसे कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विषय प्रकृति के संग भविष्य के रंग पर एक वार्ता, और वार्ताकार थी ईशा साधु। श्रोताओं, प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं है, बल्कि हमारे मन को सुकून देने वाली सबसे सुंदर अनुभूति भी है।

कभी हवा की वो हल्की सरसराहट, कभी पक्षियों की चहचहाहट, कभी बारिश की बूंदों की आवाज, जब बारिश की बूंदी मिट्टी पर पड़ती है और उनकी वो सौंधी सौंधी सी खुशबू, तो कभी पेड़ों की ठंडी छांव, प्रकृति अपने आप में एक सुंदर, एक मधुर संगीत है। और जब संगीत प्रकृति से जुड़ता है तो वो हमें केवल सुनाई नहीं देता बल्कि भीतर तक महसूस होता है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ चलिए अब आपको सुनवाती हूँ प्रकृति से जुड़ा ये प्यार।

श्रोताओं, अब इसी गीत के साथ अंगना कार्यक्रम के आज के इस अंक को समाप्त करने का समय हो चला है। तो मुझे यानी सोनाक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नशा जानलेवा है। नशे का सेवन करने के बाद गाड़ी मत चलाइए, ये आपके परिवार के हित में है।
1: अस आकाशवाणी ते जम्मू केंद्र थमां बोलारने आ श्रोताओ, एक बजनी आला है उन आकाशवाणी दिल्ली थमां हिंदी ते अंग्रेजी च समाचार रिले कीते जांगन।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
3: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
3: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
3: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
2: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया

सैनिक भाइयों, कृष्ण कुमार कुन्नाथ उर्फ के भारतीय संगीत जगत के एक दिग्गज पार्श्व गायक थे। उन्होंने अपनी जादुई आवाज से कई अमर गीत गाए। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज हम आपको उन्हीं के गाए कुछ गीत सुनवाने जा रहे हैं।

सैनिक भाइयों, केके का जन्म दिल्ली में हुआ। उनकी बॉलीवुड ब्रेक से पहले उन्होंने 3,500 विज्ञापनों के लिए गीत गाए। इसी दौरान उनकी आवाज की मधुरता और गहराई ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें फिल्मी दुनिया में कदम रखने का अवसर मिला।

बॉलीवुड में उनको पहला ब्रेक विशाल भारद्वाज की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से मिला। इस गाने ने केके को रातों रात मशहूर कर दिया। इस गीत के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई गीत गाए।

केके की आवाज बहुत ही मधुर, भावुक और ऊर्जा से भरपूर थी। उनकी आवाज में एक खास तरह की गर्माहट और ईमानदारी थी जो सीधे सुनने वालों के दिलों को छू लेती थी। उन्हें किसी तरह की शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग नहीं मिली थी, फिर भी उनका गायन बेहद सहज और जादुई था।

0: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
1: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
0: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आवर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
1: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
0: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
1: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
0: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
1: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
0: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
1: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
0: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
3: मिसेस शर्मा, आपकी बेटी की अटेंडेंस बहुत कम है।
4: मैडम, प्रिया थकावट की वजह से स्कूल नहीं जा पाती।
3: प्रिया अनीमिक हो सकती है, जो अक्सर इस उम्र की लड़कियों को आयरन की कमी के कारण होता है।
4: तो फिर मुझे करना क्या चाहिए?
3: अपने परिवार को फोर्टिफाइड खाना दीजिए। फोर्टिफाइड खाना जैसे आटा और चावल में आयरन, फॉलिक एसिड और B12, नमक में आयरन और आयोडीन जरूरी मात्रा में मिलाए जाते हैं, जिनको खाने से हमारे आयरन की कमी में सुधार आता है।
4: और स्कूल्स में आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स भी दी जाती हैं, जिससे एनीमिया का निवारण होता है।
2: अपने और अपने परिवार का जीवन स्वस्थ बनाएं और प्लस F के निशान वाला फोर्टिफाइड फूड अपनाएं। बाजार में उपलब्ध फोर्टिफाइड उत्पादों की जानकारी के लिए www.ffrc.fssai.gov.in पर जाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

सैनिक भाइयों, के असल जिंदगी में बेहद सादगी पसंद, विनम्र और पारिवारिक व्यक्ति थे। लाइमलाइट से दूर रहने वाले के अपनी निजी जिंदगी को निजी रखना पसंद करते थे और संगीत को अपनी पहचान मानते थे। वे इंडस्ट्री के सबसे शांत और विवाद मुक्त गायकों में से एक थे। अपने काम से काम रखना और हर किसी से सम्मान से पेश आना उनका स्वभाव था।

भारी सफलता के बावजूद उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया और हमेशा एक सहज और खुले दिल वाले इंसान बने रहे। केके ने लगभग अपने पूरे करियर में 700 से अधिक गाने गाए, जिनमें लगभग सारे गाने ही हिट साबित हुए। केके की सादगी और दिल को छू लेने वाली आवाज आज भी उनके लाखों प्रशंसकों के दिलों में जिंदा है।

सैनिक भाइयों, अब आज का फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम समाप्त करने की वंदना को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

अस आकाशवाणी ते जम्मू केंद्र थमां बोला ने श्रोताओ, 2:10 होई न, लाओ हुण सुनो के एस मधुकर हुंदा लिखे दा ते सुनील जोशी हुंदा गाए दा ए डोगरी गीत।

0: के एस मधुकर हुंदा लिखे दा ते सुनील जोशी हुंदा गाए दा डोगरी गीत उन्हें तो सुनारदे हे। अस आकाशवाणी दे जम्मू केंद्र थमां बोलारने आं श्रोताओ, 2:15 आरदे न हुन आकाशवाणी दिल्ली थमां दोपहर समाचार रिले कीते जांगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
2: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
2: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
3: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
2: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
2: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
4: नेवी, एयरफोर्स,
5: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
4: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हुर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकननेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएब उल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: मीडियम वेव DRM और FM पर हम आकाशवाणी के जम्मू केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवाओं का कार्यक्रम युवा तरंग।

स्वागत है श्रोताओं आपका हमारे आज के कार्यक्रम युवा तरंग में। और दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट सरसदीप कौर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम करते हैं बहुत सारी बातें और सुनते हैं बेहतरीन से नगमे। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाती हूँ अपने इस प्रोग्राम का पहला गीत।

स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आपका हमारे आज के प्रोग्राम युवा तरंग में। दोस्तों आज है 31 मई और हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी कि वर्ल्ड नो तंबाकू डे। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाली हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करना है और उन्हें तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग और बहुत सारी बीमारियों को जो है कारण बनता है और बहुत सारी समस्याएं जो है आपके शरीर में पैदा करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ में अगर हम इसके इतिहास की बात करेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1987 में तंबाकू सेवन से होने वाली मौतों और बीमारियों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत की थी। 1987 में विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक प्रस्ताव दिया जिसके अंतर्गत 7 अप्रैल 1988 को पहला विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। उसके बाद 1988 में एक नए प्रस्ताव दोबारा से दिया गया जिसके अनुसार 31 मई को हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है। उस दिन से हर वर्ष जो है 31 मई को पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस जो है मेन तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना, धूम्रपान और अनेक तंबाकू उत्पादों के सेवन को कम करने के उद्देश्य से ही मनाया जाता है। इसी तरीके की और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ साझा करनी है, आपको बहुत सारी जानकारियाँ देनी है और बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले अभी प्रोग्राम में समय हो चुका है आपको सुनवाने का अगला गीत। तो आपके लिए प्ले कर रही हूँ बादशाहो मूवी से ये अगला ट्रैक।

दोस्तों, इस साल जो है 2026 की वर्ल्ड नो टोबैको डे की जो थीम है वो है अनमास्क द अपील काउंटरिंग टोबैको एंड निकोटीन एडिक्शन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तंबाकू और निकोटीन उद्योग किस प्रकार जो है आकर्षक पैकेजिंग, फ्लेवर्स, विज्ञापन और नए नए उत्पादों से हमारे जो युवाओं हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उन वो लोग जो हैं इस लत का शिकार हो जाते हैं। इसलिए इस बार जो है ये थीम रखी गई है ताकि हमें जो है इसका पर्दाफाश करना है। दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो सिर्फ एक दिन नहीं है जिसे सेलिब्रेट किया जाए या फिर सिर्फ एक दिन के लिए इसे याद रखा जाए उसके बाद भूल जाया जाए। ये एक ऐसा दिन है, एक स्वस्थ को लेकर, हमारे स्वास्थ्य को लेकर एक ऐसी चीज़ है जो हमें, हम लोगों को एक दिमाग में एक चीज़ लाता है कि ये जैसी चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं, जबकि हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि उस पर स्पष्ट लिखा होता है कि इनसे या इनका सेवन करने से हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। और इसीलिए इस दिन को जो है मुख्य रूप से लोग मनाते हैं ताकि हम जो है एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करें। और एक यही हमारा अभियान भी है, ये दिन हमें ये दिलाता है, याद दिलाता है कि तंबाकू छोड़कर हम अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। और ये करना कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, ये बिल्कुल बहुत ही इजी है। क्योंकि कहा जाता है कि हम अगर आंखों से देख रहे हैं कि कोई हमारे कप में जहर मिला रहा है तो वो हम कप उठाकर पीते तो नहीं है ना। इसी तरीके से जब अपने आंखों से अपने आप देखते हैं, उस पर लिखी हुई चीज़ें हैं, फिर भी अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आप डिलिबरेटली अपनी सेहत को कष्ट में डालते हैं, प्रॉब्लम में डालते हैं। तो बहुत इजी है इन चीज़ों से अपने आप को छुड़ाना। आप अपने परिवार की तरफ, अपने देश की तरफ ध्यान दीजिए और जो है बेहतर समाज की निर्माण करने में हमारी भी मदद कर सकते हैं। तो चलिए, और भी बातें हैं जो आपके साथ साझा करनी है, लेकिन अभी जो है आपको सुनवा रही हूँ सुखविंदर सिंह की आवाज़ में अगला गीत।

एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका आज के कार्यक्रम यानी युवा तरंग में, और मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट सरिश्ती कौर। जी हाँ दोस्तों, तो आप बात करते हैं कैसी तकनीक की जो मशीनों और कंप्यूटरों को मनुष्यों की तरह सोचना, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हम रोजाना एआई के उपयोग कई रूपों में करते हैं, जैसे आप लोग अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें वॉइस असिस्टेंट्स हैं आपके, गूगल असिस्टेंट, सीरी एआई पर आधारित हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारी रुचियों के अनुसार सामग्री सुझाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हमारी पसंदीदा उत्पादों की सिफारिश करती हैं, नेविगेशन ऐप्स जैसे गूगल मैप्स ट्रैफिक की जानकारी देकर सबसे अच्छा रास्ता बताते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो एआई छात्रों को व्यक्तिगत सीखने का अनुभव प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी ये रोगियों की पहचान और उपचार में सहायता करते हैं। बैंकिंग, सुरक्षा और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में भी एआई का जो है व्यापक उपयोग रहा है। ये हमारी लाइफ को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इजी कर देता है। हालांकि इसके जिम्मेदार और सुरक्षित उपयोग पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन इसके जो लाभ हैं वो बहुत सारे हैं, और इसीलिए इसके लाभों का ही हम लाभ उठा सकें तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। तो और भी क्या है आज एआई के बारे में आपके लिए ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल टाइम है आपको सुनवाने एक छोटा सा म्यूजिकल ट्रैक। मिलती हूँ आपको इस म्यूजिकल ट्रैक के बाद।

तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एआई की। तो जैसे कि आपको बताया कि एआई का अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे बहुत अच्छे काम भी आ सकता है। अगर उसका इस्तेमाल जो है सही ढंग से ना हो तो हमें नुकसान हो सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कुछ अच्छे प्रभावों की। एआई जो है बहुत सारे कार्यों को तेज़ी और सटीकता से पूरा करता है। छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी देता है, रोगों की पहचान करने में भी मदद करता है। साथ ही में वॉइस असिस्टेंट्स, नेविगेशन ऐप्स जो हैं वो हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देते हैं। ऐसे कार्य जो मनुष्य के लिए जोखिमपूर्ण हैं उन्हें एआई आधारित मशीनें आराम से ईजीली कर सकती हैं। लेकिन उसी तरफ यहाँ इनका जो है बहुत सारे बुरे प्रभाव भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो कई दोहराए जाने वाले जो कार्य हैं मशीनों द्वारा किए जाने लगेंगे, तो जिससे क्या होगा, कुछ क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं। एआई को बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है, जिससे व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग का खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ में एआई की सहायता से नकली वीडियो, तस्वीरें और आवाज़ें बनाई जा सकती हैं जो समाज में भ्रम फैला सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों में भी एआई का जो है गलत उपयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जब आप एआई का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल सटीक सा से और अच्छे तरीके से करेंगे, खुद का जो है बेनिफिट कराते हुए करेंगे और साथ ही साथ में समाज का भी भला हो उसी तरीके से आप एआई का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ जो आज का ये प्रोग्राम था आपके लिए, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स या इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा हुई होगी। तो इसी उम्मीद के साथ ही जल्द होगी हमारी अगली मुलाकात। हमारा समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। तो मुझे यानी अपनी रेडियो होस्ट सरिश्दीप कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

तो सुनाते हैं कार्यक्रम युवा तरंग। मीडियम वेव टीआरएम ते एफएम ऊपर अस आकाशवाणी दे जम्मू केंद्र थमा बुलारनिया। तीन बजार दिन साड़ी ए सभा इत्थे गै समाप्त हुंदी है। अपनी विशेष सभा च चार बजे थोड़ी सेवा च फिर हाजिर होगे। आकाशवाणी दिल्ली थमा हुन तो सुनी सकते हो एफएम गोल्ड दे कार्यक्रम। तो सुनो ये कार्यक्रम, असीं दियो इजाजत, नमस्कार।

0: 50 मुंबई 400091।
1: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आपसे भी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है।
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप कर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ।

फिल्म बॉबी का दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली।

0: दिन में 3 बजे।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए
1: हैं। मनचाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एमजी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा।
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डिजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूं दो हफ्ते की छुट्टी ले लूं। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो नो नो नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना।
2: प्यारा प्यारा सा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना।
1: देसी।
2: छोड़ दीजिए ना।
1: अरे अरे सुनो तो।
2: नहीं सुनती।
1: ओफो, अरे बात तो सुनो
2: बेनी। देखो देखो, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
1: ओ डेजी, डेजी माय लव। डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
1: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
1: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: डेजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत है।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी
0: डेजी, व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की
0: साड़ी। ओह डेजी, माय गॉड।

से मैं मांग गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत

0: भाई उसे दवा दी जा रही है,
1: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
2: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
1: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में नहीं।
0: तेजी,
1: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
0: तो क्या करूँ मैं, आराम इंजेक्ट किया जाए?
1: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
0: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
1: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
0: इच्छा नहीं है
1: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
0: कुछ भी मतलब निकाल लो।
1: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
0: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
1: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
0: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने कुरूप बच्चे का पिता होने का भार नहीं उठा सकता।
1: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूं। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
0: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
1: लेकिन मैं मां हूं, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
0: अब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
3: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
0: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों जी?
1: जी
3: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
1: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
3: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
0: अरे भाई वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
3: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा, लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा। ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
1: एक साथ घूमने लगेंगे? आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
3: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है?
1: वो
3: सो रहा है।
1: वो तो बहुत बीमार है, दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
0: अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
3: चलिए एक बार मैं भी देख लूँ। ओ लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है?
0: Well, but that doesn't matter, doctor. Slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे।
3: अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे को जरूरी काम है। चलो डेजी।
0: ओके
1: अच्छा
0: बाय डॉक्टर, बाय।
1: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
0: जब तक जरूरी होगा।
1: मुझसे अब और नहीं सहा जाता, कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
0: अपने लिए।
1: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
0: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
1: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
0: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
1: आपसे कहा था जरा बच्चे की जांच कर लो।
0: जांच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
1: ये क्यों नहीं कहते कि आप जांच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
0: डेजी, तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
1: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
0: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
1: बंद भी करो ये सब, बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
0: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
1: बेनी को यहां क्यों घसीट लाया?
0: मैं घसीट लाया? ये कहो बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है, और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
1: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
0: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी के साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
1: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
0: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
1: तुम्हें क्या हो गया है?
0: तुम उससे ज्यादा बेनी के फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब याद नहीं रहेगी।

0: मिल गया संतोष। बेनी मुझे क्षमा करना, बेनी मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
1: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
0: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर, आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
1: कैसी शंका?
0: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
1: ओह डेजी, तुम्हारे सवाल बड़ा विचित्र है।
0: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
1: नहीं,
0: मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
1: लॉरेंस को? नो नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
0: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
1: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
0: आपकी ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
1: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो क्या हुआ?
0: बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
1: क्या?
0: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
1: क्या?
0: लेकिन वास्तव में बात डॉक्टर, डॉक्टर आप मेरे पर एक कृपा कीजिए।
1: बोलो।
0: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
1: मैं?
0: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
1: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है। मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी।
0: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
1: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
0: प्लीज डॉक्टर।
1: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
0: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बेनी का प्रेत है।
2: बेनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
1: डॉक्टर लॉरेंस,
2: डॉक्टर रामदास,
1: उस दिन तूने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था, उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
3: बैठ जाइए
1: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
3: जी,
1: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा ना ले, आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
2: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
1: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
2: समझा नहीं?
1: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
2: What do you mean, डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
1: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
2: डॉक्टर।
1: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
2: नहीं नहीं पता नहीं, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं
1: डॉक्टर लॉरेंस। काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
2: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
1: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
2: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
1: नहीं, नहीं, नहीं। तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझकर ही किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
2: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
1: नो, इट वाज नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
2: डॉक्टर, नो, नो डॉक्टर।
1: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
2: नो नो नो, क्यों डॉक्टर?
1: सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाथ क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस? ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
2: डॉक्टर, डॉक्टर
1: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
2: सच है, सच है डॉक्टर। लेकिन उससे उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
1: बेचारा बेनी। मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
2: डॉक्टर, मुझसे गलती हो गई डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
1: नहीं कहूंगा।
2: थैंक यू।
1: नहीं कहूंगा।
2: थैंक यू डॉक्टर।
1: क्योंकि न कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर रॉबिन्स, मैं अब चलता हूं।
2: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
0: तुम्हारी आवाज ने मेरे

0: रोक दी, इसलिए जा नहीं सकी।
1: डेज़ी, डेज़ी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
1: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेज़ी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेज़ी।
0: लॉरेंस, तुम अचानक,
1: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
0: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
1: हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, कोई कष्ट नहीं दूंगा डेज़ी।
0: मैं भी तुम्हें,
1: डेज़ी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ, डेज़ी सब भूल जाओ।
0: भुला दूंगी, हमेशा के लिए भुला दूंगी।
1: हाँ, वो डेज़ी, मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
0: हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
1: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेज़ी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के हम यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेज़ी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेज़ी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
0: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
1: डेज़ी,
0: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
1: ये क्या कह रही हो तुम डेज़ी?
0: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
1: नहीं, डेज़ी,
0: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ली।
1: नहीं नहीं नहीं, डेज़ी सुनो तो।
0: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह सकते।
1: नहीं नहीं, डेज़ी ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डेज़ी,
0: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
1: ओह माय गॉड,
0: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
1: नो, ओ नो।
0: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
1: विदा?
0: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ।
1: नहीं नहीं, डेज़ी, डेज़ी,
0: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना। आपको क्या हो रहा है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
1: डेज़ी, ये मेरी नसें टूट रही है। डेज़ी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। डेज़ी,
0: नहीं लॉरेंस, नहीं नहीं लॉरेंस, विश्वास करो, मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? डरो, डरो, डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई। डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही।

0: मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।

0: तो कभी छान।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है। आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी,
3: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
2: जी।
3: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
2: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्रकवि प्रदीप जी के बारे में
3: जी।
2: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
3: मैं तो अच्छी हूँ
2: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
2: अच्छा।
3: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
2: जी,
3: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
2: अच्छा जी।
3: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
2: ही हैं।
3: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
2: अच्छा।
3: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे और

0: तब तो मुंबई नहीं बंबई थी,
1: जी बिल्कुल।
0: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए। ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था,
1: जी
0: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे,
1: अच्छा जी
0: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे। उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा, तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे,
1: जी
0: रावल जी,
1: अच्छा
0: और उन्होंने उनको सुना। उन्होंने जाकर के हिमांशु राय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में।
1: जी
0: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूं भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इंप्रेस हो गए। और वो इंप्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
1: अच्छा
0: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए। हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूं, मैं तो कवि हूं, और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार बन
1: गीतकार
0: गए।
1: बन गए थे। कौन
0: तो
1: से
0: अब
1: सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें दिया गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूं मैं
1: जी
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप,
1: प्रदीप
0: तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए, उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार,
1: जी
0: एक्टर।
1: एक्टर
0: तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो, तो कवि प्रदीप अलग हो गए,
1: और
0: प्रदीप
1: प्रदीप
0: कुमार
1: कुमार
0: अलग हो गए। तो ये
1: अलग
0: आपके सवाल का जवाब है।
1: हो गए। तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना,
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार की
1: हेमंत
0: आवाज में।
1: कुमार की आवाज
0: ये
1: में।
0: भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ
1: एक
0: में।
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी
0: है ना।
1: बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं ये
0: हाँ
1: प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कभी प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था?
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में। तो मैं छोटी और दीदी ज़्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफ़ी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
0: जाना
1: थी।
0: हुआ जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफ़ी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे।
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति,
0: और सिद्धांतवादी।
1: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया। हाँ, तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती,
0: जी।
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
0: अच्छा जी।
1: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
0: इतनी फ्रीडम थी
1: फ्रीडम। हाँ,
0: जी।
1: तो वो फ्रीडम

0: भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई, और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
1: नहीं थी जी।
0: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने सात फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
1: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी
0: बहुत बहुत बहुत सारी
1: जी।
0: बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने, ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे, और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं। तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ,
1: जी।
0: आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा।
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: जी वो गर्म
0: मैं
1: है।
0: गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी, दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो
1: हाँ।
0: बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा,
1: अच्छा।
0: हाँ मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं
1: अच्छा
0: कुछ लेना नहीं चाहता हूँ,
1: जी।
0: जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स दो तीन साड़ियाँ तो दी
1: हाँ
0: होगी,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू।
1: पिता जी।
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या, उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब।
1: अच्छा।
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
1: अरे
0: तो
1: हाँ।
0: उन्होंने बोल दिया माँ पर, मैं शादी कर रहा हूं, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
1: जी
0: लेके।
1: जी
0: तो वहां से कोई नहीं आया, वहां मेरी दादी मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
1: जी
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था, अरे नारायण जी आप आए हैं आइए। बोलते माफ कीजिए, लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी जी
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए, और वैसे मतलब ये जो
1: विवाह,
0: यूनियन था
1: हाँ वो संपन्न
0: विवाह
1: हुआ
0: का, तो वो खुशी
1: जी
0: खुशी उसकी समापन हुआ,
1: जी जी तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही उस
0: पानी बन के
1: दाम्पत्य
0: रही।
1: जीवन में।
0: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी ये सबसे बड़ी बात है जी।
0: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी और आप कहीं

0: कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी,
1: वाह, उनकी
0: मतलब
1: शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल
0: ऐसी
1: में की
0: थी।
1: गई
0: हाँ
1: नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
1: जी
2: गा रही है जिंदगी।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं। लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मीतुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पढ़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की
1: आम
0: तरह
1: पिता
0: वो रहे
1: की तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो

0: सीखने की शक्ति
1: जी, बिल्कुल
0: वो और बढ़ी मेरी माँ के कारण।
1: बहुत बड़ी बात, और तभी वो राष्ट्र कवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया।
0: जी, जी।
1: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
0: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम, इंदौर वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद, मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफ़ी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई
1: जी,
0: वो उन्होंने वहाँ बहुत नज़दीक से देखा, और इलाहाबाद में ही काफ़ी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि जहाँ पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है, तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है,
1: मतलब
0: कोई जानबूझ के
1: प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था।
0: हाँ।
1: तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है
0: हाँ।
1: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
0: हाँ। और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
1: जी,
0: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
1: अच्छा।
0: हाँ। तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
1: हाँ,
0: और
1: तब
0: फिर
1: तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में।
0: नहीं नहीं नहीं वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे
1: जी
0: मुंबई।
1: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
0: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया था उस
1: रूप में।
0: वक्त।
1: हाँ जी,
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
1: जी। क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो, जिस कविता ने?
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
1: जी
0: थी,
1: जी
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये
1: जी
0: कविता
1: जी
0: लिखी
1: बिल्कुल।
0: है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था,
1: बहुत खूब।
0: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है, लेकिन
1: जी, जी,
0: ये यही कविता है जो उन्होंने
1: लिखी
0: उसी वक्त लिखी,
1: उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ,
0: अंकुर
1: और
0: पैदा
1: वहां
0: हुआ।
1: से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
0: हाँ
1: जी, तो मितुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है,
1: जी
0: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा।
1: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं, और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी
1: लेकिन जो बातें सुनी, और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी।
0: जी
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको
0: बिल्कुल
1: गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान,
0: जी
1: माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे।

0: कि निकलो यहां से। नहीं नहीं देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
1: बिल्कुल
0: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो वो बात
1: जी
0: सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
1: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ी गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
0: शब्दों
1: क्योंकि
0: की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे, और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
1: बिल्कुल। और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो है हिलोरे लेने लग जाता
0: और
1: है।
0: दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
0: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो
1: जी
0: उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती
1: कश्ती
0: निकाल
1: निकाल
0: के,
1: के,
0: तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी। सबसे बड़ी बात
0: सही
1: ये
0: बात है।
1: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
0: बहुत ज़्यादा गांधी जी उनके हीरो थे, तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में, आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज़ जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई, और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है, ये इस गाने के
1: कोई
0: सिवाय वो पूरी नहीं
1: गाना
0: होती।
1: जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ।
0: जी
1: तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही गीत
1: साबरमती के संत।
0: साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

0: मितुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना? लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश, बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहां क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर

0: अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गांव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे। तो
1: जी
0: ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे, उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
1: जी
0: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
1: नहीं है,
0: सारे गामा नहीं है,
1: कॉपी की भी नहीं है।
0: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है। ठीक है, तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया,
1: जी
0: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
1: बिल्कुल।
0: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछी रे, आज भी पिंजरे के पंछी रे सुन के भी लोग रोते हैं
1: बिल्कुल, वो
0: कि
1: दर्शन
0: एक
1: जो
0: छोटे
1: उन्होंने
0: पिंजरे
1: दिया
0: में
1: है।
0: पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत और भी कई, देख तेरे
1: अध्यात्म के
0: संसार
1: गीत
0: की
1: हुए।
0: हालत क्या हो गई,
1: हाँ
0: भगवान
1: हाँ
0: कितना बदल गया
1: बहुत
0: इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूं कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर
1: देखी
0: देखी, हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको
1: मुखड़ा
0: क्या
1: देख ले
0: बताऊं,
1: दर्पण में।
0: मुखड़ा देख ले दर्पण में। तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं, और आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक है,
1: सीरीज है उनके पास, और आज
0: हाँ,
1: भी उनके
0: सुनते हैं लोग,
1: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद
0: सुनते
1: करते
0: हैं।
1: हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
0: पिंजरे के पंछी सुनिए।
1: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था। शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे, तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं हैं जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे।
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था, जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं? हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्व लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं,
0: हाँ।
1: और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी, सब लोग तुम क्यों रो रही हो,
0: हाँ।
1: मैंने बोला फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहाँ हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे
1: मिटे
0: ना रे
1: नारे
0: भाई,
1: भाई।
0: जरा समझो इसकी सच्चाई रे। गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है, कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या हैं।
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता
0: जीवन
1: है और
0: दर्शन
1: अपने मन को हम समझा लेते हैं
0: समझा
1: कि
0: लेते
1: अच्छा
0: हैं।
1: इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, तो
0: हाँ
1: हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में ये
0: कर्मों
1: सब
0: में कुछ
1: लिखा
0: कई।
1: है तो
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले
1: वाले
0: तेरे दुख दूर करेंगे राम,
1: राम।
0: तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान

ले लेंगे तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है। उजाले उन

0: FM 101 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बद्रवा से आपसे मुखातिब हैं। समय शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं भारतीय सेना की खिदमत में पेश किया गाना कैलाश खेर की आवाज़ में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ਤਾਂ ਸਵਯਮ ਹੀ ਘਟ ਪੜੇ।
1: ਭਾਰਤੀਯ ਸੈਨਾ।
2: सवाइन आप सुनते हैं दीवानी फिल्म का नगमा सुखिंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में।

0: जो कि संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

8:30 पर आप समाप्त करेंगे पंजाबी गीत। आठ बजकर 45 मिनट पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर उर्दू में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी।

नमस्कार। 30 मिनट पर आप समाप्त करेंगे पुराने फिल्मी नगमे। समाइन ये था आपसे लेकर रात 10 बजे तक रिले व नश्र किए जाने वाले प्रोग्रामों का खुलासा।

हम आकाशवाणी बदरवा से आपसे मुखातिब हैं FM 101 MHz पर। समय 6:15 होने वाले हैं। अब डोगरी में खबरें व तबसरा आकाशवाणी जम्मू से रिले किया जाएगा। समय रिले का इंतज़ार कीजिए।

0: का और शहर और खूबसूरत लगेगा।
1: समझ गया, नए भारत की नई तस्वीर, स्वच्छ शहर। डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज जम्मू की तरफ से जनहित में जारी।
2: ए आकाशवाणी जम्मू है, सन्या खबरें च तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्ने में प्रोमिला जम्वाल। अपने माहवार कार्यक्रम मन की बात च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखिया जे सरकार देसै दियें विरासती थारें गी बचाने दे पूरे जतन करार दी है। उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी होरें जम्मू दे ग्रेटर कैलाश च नमें बनाए गेदे दौं लेने आले पुलै दा उद्घाटन कीता। सेना ने पुंछ च कब्जा रेखा दे द्वारें पर आधार पर आधारित आओ जाई आले सरिस्ते ते अति आधुनिक स्कैनिंग मशीनां लाईयां तां जे टकोदी बाड़ दे पार रौहने आले लोकें गी आने जाने च सखाल होई सकै। कठुआ माधोपुर बश्कार रेलवे पुल दा मरम्मती कम मुकम्मल होने परैंत कैंसल कीती गेदियां सब्बै रेल गड्डियां अज्जे थमां ब्हाल होई गईयां। 2027 बरे आली मर्दमशुमारी दे पहले गेड़ तहत प्रदेश च आपूं ऑनलाइन अपना ब्यौरा दर्ज कराने सरबंधी सेल्फ इन्यूमरेशन दी प्रक्रिया अज्ज संभरदी है। घर घर जाइए हाउस लिस्टिंग आला अभियान कल्लै थमां आरंभ होग। उन खबरें दी तफसील कन्नै पंकज कोहली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखेआ ऐ जे सरकार देसै दियें अनमोल धरोहरें दे संरक्षण राखी हिफाजत लई लगातार कोशिशां करा करदी ऐ। अज्ज आकाशवाणी थमां अपने माहवार रेडियो कार्यक्रम मन की बात च लोकें कन्नै अपने विचार सांझे करदे होई प्रधानमंत्री होरें छत्तीसगढ़ दे मल्हार च ज्ञान भारतम अभियान तैह्त होई दी इक महत्वै आह्ली खोज बारै दस्सेआ। उनें आखेआ

0: वन भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री होरें हाल च गै नीदरलैंड्स दे अपने दौरे दा भी जिक्र कीता, जित्थे उनेंगी इक टकोदे समारोह च चोलकाल दियां परानियां तांबे दियां प्लेटां, प्राचीन ताम्र पट्टिकां भारत गी परताईयां गईयां। प्रधानमंत्री होरें आख्या,
0: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापिस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
1: अपने माहवार रेडियो कार्यक्रम दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें देशै दे लोकें अग्गे अपील कीती जे ओ चलारदे गर्मियें दे रुतै च पूरी सावधानी बरतन ते इस सरबंधै च बक्ख बक्ख सरकारी महकमें पासेया जारी दिशा निर्देशें दी पालमा करन।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री होरें लोकें गी गर्मी थमां बचाने लई आम पन्ना, मट्ठा, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, सांबरम, सोलकड़ी ते कोकम शरबत जने बक्ख बक्ख तरल पदार्थ पीने दा सुझाव दिता, जेड़े देशै दे बक्खरे बक्खरे हिस्सें च रिवायती ढंगे कन्नै बनाए जांदे न। प्रधानमंत्री होरें देश भरे च अंब दियें किस्में बारे गल कीती ते अंबें दी भारती पैदावार गी वैश्विक बाजार तगर लेई जाने आस्ते करसाने दी तारीफ कीती। श्री मोदी होरें आख्या,
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी होरें आज जम्मू दे ग्रेटर कलास च एक नाले पर बनाए गए दौन लेने आले पुल का उद्घाटन किया। यह पुल शिड़क राबते की बेहतर करने ते मकामी बसनीकें की सहूलत देने लिए बनाया गया है। इस मौके बोलते हुए उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी होरें गलाया जे यह परियोजना मुंडले ढांचे की बेहतर बनाने ते लोकें की बद शा बद सहूलत पहुंचाने वाली सरकार की वचनबद्धता की दसदी है। उन्हें गलाया जे दौन लेने वाले इस पुल कने आने जाने च सखाल होग, लोकें दियां मुश्किलां घट होंगन ते इलाके दे पूरे पराते विकास च मदद होग। श्री चौधरी होरें आख्या,
2: मैं यहाँ रोज बात करने आता था और सुबह और जब मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना तो ये काम रुका हुआ था। उससे पहले किसी ने नहीं बनाया और फिर मैंने अपने ऑफिसरों को बुलाया यहाँ पे। मैंने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाइटल ब्रिज है, क्योंकि मैं यहाँ से वॉक करके निकलता था तो मुझे वापस मुड़ना पड़ता था। ऐसे हम सीधा जाते थे और मैंने कई बार देखता था लोग बेचारे पैदल यहाँ से यहाँ नाले के बीच में से क्रॉस करते थे। तो लिहाजा जब मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना उसके बाद मैंने स्ट्रेस दिया और इस पुल को मैंने काम शुरू कराया। और
1: बन्ने पार बनाई गई बादशाह अग्गे बसने आले बसनीकें दी आओ जाएगी सखला करने आस्ते एक महत्वै आली गैं तहत सेना ने पुंछ जिले च कब्जा रेखा द्वारें पर एक अति आधुनिक स्कैनिंग मशीन लाने दे कनोकनी आधार पर आधारित आओ जाई आले सरिस्ते की स्थापित किया गया है। साढ़े जिला संवाददाता की रिपोर्ट मुजब इस डिजिटल सरिस्ते राएं फौरी सुरक्षित तरीके ने शिनाख्त की जा सकग, जिदे ने लोगों की मता इंतजार नहीं करना पोग। गैर कानूनी तरीके कने चीजें बस्तें ते हथियारें की तस्करी रोकने लई भलियां अजे कले आले स्कैनिंग उपकरण भी लाए गए। साढ़े संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: सीमा बाड़ के पार रहने वाले निवासी की आवाजाही को सुगम बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के फाटकों पर आधार अधिकृत प्रवेश और निकास प्रणाली के साथ साथ अत्याधुनिक स्कैनिंग उपकरण स्थापित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य सीमा बाड़ के पार नियंत्रण रेखा के बीच रहने वाले ग्रामीणों को दैनिक आवाजाही को सुगम बनाने के लिए वह दैनिक आवाजाही को सुगम बनाना है। आकाशवाणी के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट।
4: एक खबर साड़ी वेबसाइट

0: newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। इदे अलावा तुसे खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते DTH पर भी सुनी सकदे हो।
1: ए खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू पर सुना करदे हो ते हुण बाकी दियां खबरें कन्ने प्रोमिला जमवाल।
2: पिछले बरे हाड़ें करी कठुआ माधोपुर बश्कार बुरी चाली प्रभावित होए दे रेलवे पुल नंबर 17 पर चला दा मरम्मती आला काम मुकम्मल होई गया। उन औने ते जाने आले दमे रस्ते भलियां ठीक होई गए ते 1 जून थमां जियां के तय कीता जाई चुके दा है रेल सेवा पूरी चाली बहाल करी दित्ती जाग। कई मुख रेल गड्डियां फी इस रस्तियां आना जाना शुरू करी देंगन। गर्मी दियें छुट्टियें दे रश दे प्रबंधन लई चोनवीं रेल गड्डियें च वाधू डब्बे लाए गए। इस रेल पुलै दे बहाल होने मगरा लोकें गी आओजाई च सखालते हो गए। माल समयान दी ढोआई वाणिज्य गतिविधियें ते सेना दे माल समयान दी आओजाई च भी मदद थोक। 227 बरे आली मर्दमशुमारी दे पहले गेट तहत प्रदेश च नागरिकें आसिया आपू ऑनलाइन अपना ब्यौरा दर्ज कराने सरबंधी सैल्फ इन्यूमरेशन दी प्रक्रिया अज संभरदी है ते घर घर जाइए लोकें थमां औंकड़े कठेरने सरबंधी हाउस लिस्टिंग आला अभियान कल संगारें थमां रंभ होई जाग। अधिकारियें दस्या जे 3 जून तकर एन्यूमरेटर ते सुपरवाइजर घर घर जाइए घरें ते आबादी मुतलक सटीक औंकड़े दर्ज करगन। बसनीकें गी अपील कीती गई है जो सरबंधित अमले दा सहयोग करदे होई सटीक जानकारी दर्ज करवान। इस सरबंधे च और जानकारी देआरदे जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन आयुक्त डॉक्टर देवांश यादव।
3: सेंसस हाउस टू हाउस सर्वे की शुरुआत 1 जून से होगी। 31 मई जो लास्ट डे है उस पर मैं सभी जम्मू वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना सेल्फ एन्यूमरेशन अपने मोबाइल फोन में जरूर करें। sc.census.gov.in इस वेबसाइट पर जाके कुछ बेसिक जानकारियाँ भरनी है। अभी भी लाखों लोगों ने अपना सेल्फ एन्यूमरेशन नहीं करवाया। इसकी वजह से जब हमारी टीमें पूरे जून के महीने आपके घरों में आएंगी वो जानकारी जो बड़ी बेसिक होती है उसको लेने में उनको काफी समय लगेगा।
2: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें औंदी 3 जून गी जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस दे विधायकें दी इक बैठक सद्दी ऐ तां जे संगठनात्मक ते विकास कन्नै जुड़े दे बक्ख-बक्ख मामलें दी समीक्षा कीती जाई सकै। उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी होरें आखेआ जे बैठक दौरान बक्ख-बक्ख चुनावी हलकें च सरकारी पहलकदमिएं ते तरक्याती कम्में दे अलावा आम लोकें कन्नै जुड़े दे मुद्दें पर चर्चा करने दा मौका थोग। उनें आखेआ जे मीटिंग च रोजगार पार्टी दे घोषणा पत्र च दस्से गेदे वायदें गी पूरा करने ते भविक्ख दियें प्राथमिकताएं पर भी गल होने की उम्मीद है। श्री चौधरी होरें बैठक की एक नियमित संगठनात्मक कार्रवाई दस्या जिदा मुख मकसद तरक्की की समीक्षा करना है। पत्रकारें कने गल करदे होई उपमुख्यमंत्री होरें आख्या
4: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और पार्टी के प्रेसिडेंट कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंगें पार्टी की होती रहती हैं। एक तो मिनिस्टरों से भी पूछा जाएगा आपने क्या किया 1.5 साल में सरकार ने क्या, एमएलए को भी पूछा जाएगा कि आपने अपनी कंस्टिट्यूंसी में क्या किया गया। इसलिए ये मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर डिस्कशन होगा और बच्चे जो बेरोजगार हैं उन बेरोजगार बच्चों के लिए भी और जो हमने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उसमें से भी कितने हो गए कितने नहीं हो गए इन सारी चीजों पर रिव्यू होगा।
2: उधमपुर दी नौजवान पीढ़ी डिजिटल क्रांति की अपनाइए देश भर दे लोकें गी अपनी प्रतिभा रचनात्मकता ते संस्कृति दी झलक दसने लई सोशल मीडिया प्लेटफार्म दा इस्तेमाल करा करदी है। साढ़े जिला संवाददाता दी रिपोर्ट है जे कदे मुख तौर पर सरकारी नौकरी दे उम्मीदवार बनने आले नौजवान हुण कंटेंट क्रिएटर गायक ते इन्फ्लुएंसर दे तौर पर उभरा करदे न। आकाशवाणी समाचार कन्ने गल करदे होई उंदे चा किश ने आख्या
5: मेरा नाम प्रिया है मैं रियासी की रहने वाली हूँ उधमपुर में सेटल हूँ और मैं पहले रील्स देखती थी ऐसे मतलब कि एंटरटेन के लिए अब मेरा ये पैशन बन गया है कि अब मुझे करना और मेरे को इससे अर्निंग भी आना शुरू हो गई है।
2: सेहतमंद जीवन शैली ते सैलसफे दे बाद दे विकास लई पत्नी टॉप च अज एक दिन दे मैराथन दा आयोजन किया गया।
1: ते खीरे च खास खास खबरां एक बारी परतिए। अपने माहवार कार्यक्रम मन की बात च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें गलाया जे सरकार देशे दियें विरासती ठारें गी बचाने दे पूरे जतन करा करदी है। उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी होरें जम्मू दे ग्रेटर कैलाश च नमें बनाए गेदे दौं लेने आले पुले दा अज उद्घाटन कीता। सेना ने पुंछ च कब्जा रेखा दे द्वारें पर आधार पर आधारित आओजाई आले सरिस्ते दे अति आधुनिक स्कैनिंग मशीनां लाईयां। कठुआ माधोपुर बश्कार रेलवे पुल दा मरम्मती कम्म मुकम्मल होने परैंत कैंसल कीती गेदियां सब्बे रेल गड्डियां अज थमां बहाल। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै।
0: आओ हुण करने आं गल गुआंढियें दी। पाकिस्तान दे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हुंदा हालिया बयान दक्खन एशिया दे इतिहास ते पंछान गी लेइयै इक नमी बहस गी जन्म दिया करदा है। उनें स्वीकार कीता जे उंदे पूर्वज हिंदू हे ते इब्बी आखिया जे पाकिस्तान दे बच्चें गी बरें थमां ऐसा इतिहास पढ़ाया गया जेड़ा असलियत कन्नै पूरी चाली मेल नहीं खंदा। उंदे मताबक पाकिस्तान दे नेकां लोकें गी एह विश्वास दोआया गया जे उंदे पूर्वज अरब, तुर्की या फी ईरान थमां आए दे हे, जिसलै के मते सारे पाकिस्तानी इस्सै उपमहाद्वीप दी प्राचीन हिंदू, सिख ते बौद्ध सभ्यताएं दे वंशज न। एह बयान छड़ा इक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, सगुआं पाकिस्तान च लम्मे समें थमां चला करदे पंछान संकट दा प्रतिबिंब मन्निया जांदा है। हाल च गै पाकिस्तान दी पंजाब सरकार ने लाहौर दे कई इलाकें दे पुराने नां ब्हाल करने दी दिशा च गैं पुट्टियां न। कृष्णानगर, धर्मपुरा, जैन मंदर चौक ते राम गली जने इतिहासिक नां भी चर्चा च न। इसी छड़ा नाएं च बदलाव दे रूपै च नहीं दिखाया जाता, सगुआं अपनी सांस्कृतिक जड़ें आली बक्खी परतोने दी इक कोशिश भी मन्निया जाता है। 1947 दी बंड दे बाद पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय पंछान की मुख तौर उपर इस्लामी आधार पर गढ़ने की कोशिश की। इतिहास दी किताबें च 1947 शा पहले आले समें की भुलाई दिता गया ते विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों की प्रमुख थार दिती गई, पर तकरीबन 8 दहाकें परैंत पाकिस्तान दे अंदर अपनी इतिहासिक ते सांस्कृतिक जड़ें गी लेइए भी नमें सवाल उठन लगी पेदे न। जेकर ख्वाजा आसिफ जने वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप कन्नै इस विशे पर चर्चा करा करदे न, तां इह सारत है जे समाज दे इक बड्डे हिस्से च अतीत गी नमें नजरिए कन्नै दिक्खने दी इच्छा पैदा होआ करदी है। मॉरिशियस, गुयाना, त्रिनिदाद ते सूरीनाम जने देशें च बसे दे भारती मूल दे लोक अज भी अपने पूर्वजें दी धरती कन्नै जुड़ाव महसूस करदे न। लाहौर, सिंध, पंजाब ते बलूचिस्तान च नेकां प्राचीन मंदरें, धार्मिक थारें ते पुरातत्व अवशेषें दी मौजूदगी इस सांझी विरासत दा चेता दुआंदी है। पाकिस्तान च सोशल मीडिया पर युवा अपनी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट शेयर करा करदे न, जिहदे च हिंदुस्तानी जीनोम दी पुष्टि होआरदी है। इह उऐ पाकिस्तान है जिथे कदे हिंदू संस्कृति गी काफी राखिए नकारिया जांदा रिहा, पर हुण उत्थे भाईचारे आलियां गल्लां होआ करदियां न। इस बदलाव दे पिछे कई वजह न। पहली, आर्थिक ते समाजी नाकामी। पाकिस्तान दी स्थापना इस्लामी राष्ट्र दे सुखने दे कन्नी होई ही, पर अरबी तुर्की मॉडल ना ते विकास आनी सकिया ते ना गै स्थिरता। आतंकवाद, आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता ते अफगानिस्तान कन्नै तनोतनी ने लोकें गी सोचने उपर मजबूर कीता जे असल समस्या दऊं राष्ट्र आले सिद्धांत दी नकली कंध है। दूआ, वैश्वीकरण ते सोशल मीडिया दा भी बड़ा बड्डा रोल है। युवा पीढ़ी हुण किताबी इतिहास नहीं सगुआं डीएनए, पुरातत्व ते असलियत गी समझण लगी पेदी है। त्री बड्डी वजह यह है जे भारत दी बददी ताकत ते सांस्कृतिक प्रभाव ने पाकिस्तान गी अपनी जड़ें बक्खी दिखने आस्ते मजबूर करी दित्ता है। पर इब्बी कड़वी सच्चाई है जे इह बदलाव आसान नहीं होग। पाकिस्तान च कट्टरपंथी ताकतां अजें भी मजबूत न। ओह इस चाली दियां गल्लें गी धर्म विरोधी जां भी भारती एजेंडा दस्सियै इहदा विरोध पक्क गै करङन। स्कूलें दियें किताबें च बदलाव, मंदरें दा संरक्षण, अल्पसंख्यकें दे अधिकार वगैरा ऐसी चुनौतियां न जिंदे कन्नै निबड़ना पाकिस्तान आस्ते सौखा नहीं होग। फ्ही भी ख्वाजा आसिफ जने बयान कन्नै मेद जगदी है जे पाकिस्तान अपनी सच्ची विरासत गी स्वीकार करियै होई सकदा जे भविक्ख च इक खरी बत्तै उप्पर टुरना शुरू करी दी है। गल गुआंढियें दी च अज बस इन्ना गै। कल कुसी होर विशे पर फ्ही अपने गुआंढियें दी गल करगे। नमस्कार।
6: समाइन, शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में एक प्यारी सी गजल।

FM 101 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं। सवाइन, आइए अब गज़ल सुनते हैं अनु दुबे की आवाज़ में।

0: शर्बीन के समय को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं खेलकूद और तालीम का तज़किरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात में। उमर अब्दुल्ला किसी भी सूरत में कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी लीडर सुनील कुमार शर्मा। तंबाकू नोशी के इंसदाद का आलमी दिन। और सरहदी सियात बतदरीज फरोग पा रही है। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 9018 07 4 3 3 9018 07 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5: دستیاب فورٹیفائڈ وسائل ہیں جانکاری خطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ
6: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے
7: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ
8: رکنا پڑے گا میں مدد کر کے آتا ہوں
9: رہنے دے بیٹا اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے
8: نہیں ماں اب ایسا نہیں ہوتا گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے ایک گولڈن آر ہے ماں ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی
9: پر بیٹا ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے
8: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا
9: اور وہ پولیس وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا کہاں سے لایا
8: ماں اب 7 رولز ہیں نو ہراسمنٹ مدد کرنے والے کو راہویر مانا جاتا ہے مجرم نہیں پولیس پریشان نہیں کر سکتی
9: سچ میں پھر تو بیٹا دیری مت کر جلدی جا
8: ہاں ماں آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے
9: شکر ہے اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی
8: وہی تو ماں پی ایم راحت علاج پہلے پیسے بعد میں 112 ڈائل کریں زندگی بچائیں
6: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائے آفس آف دا ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر
0: شربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. آج وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ماہانہ نشریہ من کی بات میں زندگی کے مختلف شعبوں سے جڑے امور پر بات کی جن میں کھیل کود، تعلیم، روایت، آم کی برآمد اور دیگر کئی امور شامل ہیں. موصوف نے جھارکھنڈ میں حال ہی میں مکمل ہوئے ایتھلیٹکس مقابلوں کے تعلق سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2 جون 2 دن کے اندر 100 میٹر کی دوڑ میں قومی ریکارڈ کا 3 بار ٹوٹنا کھلاڑیوں کی ہمت اور ان کے ہنر کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. وزیر اعظم نے گرمیوں کے موسم میں آم کی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے بین الاقوامی منڈی میں بھارتی آم کی مانگ کا حوالہ بھی دیا.
10: میرے پیارے دیش واسیوں، کچھ دن پہلے ہی جھارکھنڈ کے رانچی میں نیشنل سینئر ایتھلیٹکس فیڈریشن کمپٹیشن ہوا. اس میں قریب 800 ایتھلیٹس نے حصہ لیا، دیش بھر سے آئے تھے. اس دوران 4 الگ الگ ایونٹ میں 4 نیشنل ریکارڈ ٹوٹے. گریندر ویر سنگھ، وشال ٹیکے، تیجسوینی شنکر، देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। साथियों, गर्मी आते ही एक चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात। इधर जम्मू कश्मीर असेंबली में कायदे हिज्ब इख्तिलाफ सुनील कुमार शर्मा ने आज अपने एक बयान में कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला किसी भी सूरत में अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से भी निचला दर्जा दिया जाए और उमर अब्दुल्ला को सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बना दिया जाए तब भी वो ओहदा नहीं छोड़ेंगे। सुनील कुमार शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर खानदानी सियासत और इकतदार से चिमटे रहने के इल्जाम भी आयद किए। दरअसल जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम अराकीन असेंबली का अहम इजलास 3 जून बुधवार को अपनी गुपकार रिहायशगाह पर तलब किया है। जराए के मुताबिक इजलास में अवामी फलाह व बहबूद और इज्तमाई अहमियत के मामलात पर गौर किया जाएगा। सियासी हलकों में कयास आ रही है कि इजलास में जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली समेत अहम सियासी उमूर पर बहस हो सकती है। समय आज पहलगाम में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब श्रीनगर का एक 42 साल बाशिंदा मोहम्मद अशरफ मीर दरियाए लिदर में डूब गया। इत्तिलात के मुताबिक मोहम्मद अशरफ मीर का बेटा फहद दरिया में फिसल कर गिर गया था कि जिसे बचाने के लिए मोहम्मद अशरफ मीर ने दरिया में छलांग लगाई मगर तेज बहाव ने उसकी जान ली। मकामी लोगों ने बच्चे को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। इधर टंगमर्ग के छनपुरा इलाके में अबू बकर नामी 3 साल बच्चा नहर में डूबकर जान बहक हुआ। बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल में मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे वहां मुर्दा करार दिया। इसी दौरान आज आरिहल पुलवामा में एक तेज रफ्तार टाटा मोबाइल गाड़ी ने एक बाप बेटे को टक्कर दे मारी जिसके नतीजे में 5 साल बच्चा मौके पर ही जान बहक हुआ जबकि उसका वालिद अल्ताफ अहमद वगे जख्मी हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। शोपियां से फैयाज वानी की इतला है कि जिले के रेशनगरी, जमनगरी, अमशीपुरा, टुकरू, जाऊरा, मोशवारा, करेवा शादाब, टेंगवनी, सैदोबाला, छानपुरा, सिंधव शिरमाल, मीमंदर, गागरन, कसपुरा और दीगर कई इलाकों में कल शाम हुई जालाबारी के नतीजे में मेवा बागात को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि जालाबारी से सेब और नाशपाती के बागात को खासतौर पर नुकसान पहुंचा जबकि धान की पनीरी और सब्जियों की फसल को भी खासा नुकसान पहुंचा। इसी दौरान चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर शुपिया ने आज मुतासर इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली और जिलाई सदर शुपिया शौकत हुसैन गनाई और पार्टी के जिलाई सेक्रेटरी शुपिया निसार अहमद निसार ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि शुपिया जिले के लगभग 1 दर्जन देहात में कल की जालाबारी से हुए नुकसान का तखमीना लगाकर मुतासरीन को फिलफौर मुआवजा अदा किया जाए। शौकत हुसैन गनाई और निसार अहमद निसार ने अपने बयान में कहा कि नुकसान का जायजा लेना तब तक बेसूद है जब तक इसका पूरा पूरा तखमीना न लगाया जाए ताकि मुतासरीन को माकूल मुआवजा अदा किया जा सके। इधर गांधी किंग फाउंडेशन के सदर बराए जम्मू कश्मीर डॉ मोहम्मद अयूब मत्तू ने शुपियां के मुख्तलिफ देहात में कल की जालाबारी से होने वाले नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मुतासरीन को मुआवजा अदा किए जाने का मुतालबा किया है। समय आज 31 मई है। यह दिन पूरी दुनिया में तंबाकू और सिगरेट नोशी के इंसदाद के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ मुल्क के मुतादिद इलाकों में तकारीब और सेमिनारों का एहतमाम किया गया जिनमें मुकर्रीन ने तंबाकू नोशी के मुजर असरात का हवाला देते हुए इससे हर हाल में दूरी बनाए रखने की जरूरत उजागर की। वाजिर है कि तंबाकू नोशी और सिगरेट नोशी के नतीजे में हर साल लाखों जानें तल्फ होती हैं। माहरीन के मुताबिक मनशियात के इस्तेमाल में तंबाकू नोशी या सिगरेट नोशी को पहले कदम की हैसियत हासिल है। हमने अभी कुछ वक्त पहले शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सौरा के इंटरनल एंड पल्मोनरी मेडिसिन शोबे के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मुदस्सिर कादरी से बात की और पूछा कि नशा मुक्त मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तंबाकू नोशी पर काबू पाया जाना किस कदर अहम है।
11: आपकी बात बिल्कुल सही है। जो स्मोकिंग है ये काफी लोगों को ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करती है, तो वैसे ही जो इस साल का वर्ल्ड नो टोबैको डे है इसका जो थीम है वो है अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। सो इसमें भी बेसिक जो ये रखा गया है जोर वो एडिक्शन जो है टोबैको प्लस अदर एडिक्शन इसको हटाने का है। सो ये जो कैंपेन है इंटरनेशनली इसमें WHO बड़ा काम कर रहा है, लीड कर रहा है, और इंडिया में इसमें NTCP नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम इसमें फाइट कर रही है। और जो आपने सवाल पूछा कि इस फाइट में ये जो हमारे आजकल यहाँ पे हम देखते हैं कश्मीर में ड्रग एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है, इसमें कितना कारामद हो सकता है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो हमने देखा एज अ डॉक्टर भी हमने देखा है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो यूजुअली टीन एज में स्कूल एज में ही एक्सपोज होते हैं, और पहली चीज़ जो होती है वो ड्रग्स नहीं होती, वो स्मोकिंग होती है। तो स्मोकिंग को जब वो इंट्रोड्यूस होते हैं उसके बाद ड्रग्स की एंट्री होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम निप द एविल इन द बड जो कहा जाता है कि हम स्मोकिंग हैबिट को ही रोकें ताकि वो जो बाद में जाके ड्रग्स बन जाए वैसा ना हो।
0: आपके पास तो चूंकि रोजाना इस तरह के केस आते होंगे जहां पर के तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से चाहे वो सिगरेट पी रहे होंगे लोग या तंबाकू ले रहे होंगे या पान मसाला खा रहे होंगे उसकी वजह से लोग ऐसी हालत में आ चुके होते हैं कि फिर उनके मुख्तलिफ ऑर्गन्स अफेक्ट हुए होते हैं। किस किस तरह के अमराज पैदा हो सकते हैं तंबाकू के इस्तेमाल से और कितना जरूरी है लोगों को इससे दूर रखना खुद को?
11: देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है ये है कि जो स्मोकिंग है या इवन च्यूइंग टोबैको जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये कॉज है बहुत सारे कैंसर्स का। बहुत सारे कैंसर जैसे कि CA लंग आजकल लीडिंग कॉज बन गया है, सबसे लीडिंग कैंसर बन गया है कश्मीर में भी और पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। वैसे ही CA ब्लैडर है, ओरल कैंसर है, पैंक्रेटिक कैंसर है, हमारे इसोफेगस, स्टमक कैंसर, GI कैंसर, इन सब में जो है लिंक पाया गया है स्मोकिंग का। सो कैंसर्स को अगर कम करना है तो स्मोकिंग को रोकना है। अभी एक रिसेंटली एक ICMR सर्वे हुआ था उसमें देखा गया कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है इसमें अराउंड 26.6% पॉपुलेशन जो है वो टोबैको कंज्यूम कर रही है और जो कि ज्यादातर स्मोकिंग से कंज्यूम कर रही है। तो और साथ में बिकॉज ऑफ दिस पिछले 5 साल में 26,000 लोग जो है 26,000 कैंसर पेशेंट्स का लोड हमने देखा है और मुझे लगता है इससे ज्यादा होगा। ये वो पेशेंट्स है जो रिपोर्ट होते हैं हॉस्पिटल में। ये रही बात कैंसर, जो आपने बोला क्या क्या अमराज होते हैं, मेनली कैंसर जो दूसरे अमराज इससे होते हैं क्योंकि स्मोकिंग में मेन जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। स्मोक करता है इंसान, सांस की नाली से अंदर जाता है स्मोक, लंग्स को इफेक्ट करता है। तो जो भी कई ऐसी तकलीफें हैं लंग्स की जो स्मोकिंग इसकी वजह है जैसे COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसके बगैर कई और अमराज हैं जिनमें जो ऑलरेडी लंग के अमराज हैं जिनको स्मोकिंग से बहुत असर पड़ता है और बड़ी बार पेशेंट को एक्सेसरबेशंस होती हैं, बार बार एडमिट होना पड़ता है, बार बार दवाई खानी पड़ती है। जैसे कि ब्रोंकियल एस्मा है, अगर कोई एस्मा पेशेंट ऑलरेडी है वो स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग पैसिव स्मोकिंग और एक्टिव स्मोकिंग, उसको एस्मा एक्सेसरबेशन के चांसेस हैं, उसको ब्रोंकिक डिजीज के चांसेस हैं, मतलब ब्रोंकाइटिस पेशेंट को भी एक्सेसरबेशन के चांसेस हैं। तो बहुत जरूरी है कि स्मोकिंग को रोका जाए और वो लोग जो ऑलरेडी स्मोकिंग कर रहे हैं उनको एजुकेट किया जाए थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स कि वो ये स्मोकिंग जो ये हैबिट है इससे दूर हो जाए।
0: उन लोगों से क्या कहेंगे आप कि जो अक्सर सहलंगारी का सबूत देके ये कहते फिरते हैं कि भाई इससे कुछ नहीं होता है, हमने देखा है कई सारे लोग 80-90 साल की उम्र तक जी गए, स्मोकिंग करते रहे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, हमें भी क्या होगा, उन्हें क्या कहेंगे आप डॉक्टर के हिसाब से?
11: देखिए पहली बात तो मैं एक डॉक्टर की हैसियत से कहूंगा कि ये जो कहते हैं ऐसा होता नहीं है, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब अगर कोई ऐसा है भी जिसको नहीं हो रही, दैट्स एन एक्सेप्शन, दैट्स नॉट द रूल। और हमें ये देखना है व्हाट इज द रूल, ज्यादातर क्या हो रहा है। ज्यादातर ये पेशेंट जो हैं, जो ये लोग स्मोकिंग करते हैं, इनको प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं अपने मरीजों को बोलता हूँ, कोई पेशेंट जिसको मुझे ये बताना होता है कि स्मोकिंग मत करिए, इससे प्रॉब्लम होगी, मैं उसको कहता हूँ एक दिन मेरे ओपीडी में मेरे साथ बैठिए, एक घंटा बैठिए, और आप देखिए जो जो मरीज आएंगे वो देखिए उनमें स्मोकिंग कितनी मरीजों में वजह है उस तकलीफ की जिसकी वजह से वो जूझ रहे हैं। तो अगर आप एक घंटा बैठेंगे आप स्मोकिंग छोड़ देंगे। सो ये कहना बहुत आसान है कि कुछ नहीं होता है। मेजॉरिटी लोगों में स्मोकिंग से प्रॉब्लम होती है, छाती की तकलीफें, सांस की तकलीफें, कैंसर्स। तो लेकिन जब वो रियलाइज करें कि हाँ यार तकलीफ हो गई, देन उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी होती है। भलाई इसमें ही है कि वक्त पे इस पे अमल किया जाए, इस एडवाइस पे स्मोकिंग की तरफ ना जाया जाए, और अगर स्मोकिंग कर रहे हैं वक्त रहते इसको छोड़ दिया जाए और सही रास्ते पे आ जाए।
0: ये थे मेडिकल इंस्टीट्यूट सौरा के इंटरनल एंड पल्मोनरी मेडिसिन शोबे के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मुदस्सिर कादरी, जो आज तंबाकू नोशी के आलमी दिन के मौके पर बात कर रहे थे। इधर आज अजीम सूफी बुजुर्ग, मौर्रिख, मुसन्निफ और नातगो शायर हजरत मीर सैयद अजीजुल्ला हक्कानी के यौम विसाल के मौके पर कई तकारीब का एहतमाम किया गया। आज सुबह उनके मरकज वाके नरपरिस्तान में एक मजलिस मुनक्किद हुई, जिसमें खतमात मौजमात और जिक्र अजगार के साथ साथ ईसाले स्वाब की इज्तमाई दुआ का एहतमाम किया गया। बाद में सोबिक बड़गाम में एक और तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तिलावत कलाम पाक, खतमात मौजमात, जिक्र अजगार और दुरूद सलाम का एहतमाम हुआ। हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के सरपरस्त आला और सज्जादा नशीन खानकाह हक्कानिया सैयद हमीदुल्ला हक्कानी और जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद डार ने हजरत मीर सैयद अजीजुल्ला हक्कानी को उनके यौम विसाल के मौके पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए कहा है कि उनकी हमजहत शख्सियत की मिसल तारीख में मिलना मुश्किल है। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
12: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
0: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। वादी में गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सयाहों की तादाद में धीरे धीरे इजाफा होने लगा है। आने वाले महीनों में सयाहों की तादाद में हौसला बख्श इजाफा होने की कवी उम्मीद है। उधर कुपवाड़ा के करना इलाके से हमारे नुमाइंदे इशफाक सईद का कहना है कि सरहदी सयाहत को बढ़ावा देने की हुकूमत की कोशिशें समरावर साबित हो रही हैं। बताया जाता है कि करना में फौज की तरफ से तैयार किया गया अपनी नौयत का एक मुनफरिद कॉम्प्लेक्स सयाहों को तेजी से अपनी तरफ रागिब कर रहा है। तफसीलात के साथ करना से इशफाक सईद।
13: शुमाली कश्मीर का सरहदी इलाका करना इन दिनों सियाहत के मैदान में नई पहचान हासिल कर रहा है। बरसों तक सरहदी कशीदगी और महदूद नकलो हरकत के बाद कुदरती हुसन से मालामाल ये खिता सियाहों की नजरों से ओझल रहा। तहम हालात में बेहतरी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के बाद करना बॉर्डर टूरिज्म, मजहबी सियाहत और कुदरती सियाहत के एक अहम मरकज के तौर पर उभर रहा है। सर सबज व शादाब वादियां, बुलंद व बाला पहाड़, घने जंगलात, शफाफ चश्मे और लाइन ऑफ कंट्रोल के दिलकश मनाजर सयाहों को अपनी तरफ मतवजा कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान लाखों सयाहों, जायरीन और मुसाफरों ने लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतसिल इलाकों का सफर किया, जिसके नतीजे में करना और टीटवाल के सियासी शोबों में नुमाया वसत आई है। हाल ही में डन्ना एस एम हिल पर कायम सोरिया गाता कम्प्लेक्स सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। भारतीय फौज के बहादुर जवानों की कुर्बानियों और सरहदी तारीख को उजागर करने के मकसद से कायम इस कम्प्लेक्स में जंगी यादगारें, तारीखी मालूमात, खूबसूरत व्यू पॉइंट और सरहदी इलाकों की तारीखी व जग्राफिया से मुतालिक मुख्तलिफ हिस्से शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे का मकसद बॉर्डर और बैटल फील्ड टूरिज्म को फरोग देना, मकामी होम स्टे कल्चर को मुस्तहकम करना और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना है। दूसरी जानब लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरियाए किशन गंगा के किनारे वाका टिटवाल भी सियासी सरगर्मियों का अहम हिस्सा बन चुका है। यहाँ कायम होम स्टे, रेस्टोरेंट और मकामी मेहमान नवाजी के मराकज मुल्क भर से आने वाले सियाहों को अपनी जानब मतवजा कर रहे हैं। टिटवाल में वाका तारीखी शारदा मंदिर भी इन दिनों जायरीन और सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अकीदतमंद यहाँ पहुँच रहे हैं, जबकि हालिया बरसों के दौरान शारदा यात्रा में मसलसल इजाफा भी देखने को मिला है। जायरीन का कहना है कि शारदा मंदिर सिर्फ एक मजहबी मकाम ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते की तहजीबी, सकाफती और तारीखी शनाख्त की अलामत भी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी करनाक को एक अहम बॉर्डर टूरिज्म हब के तौर पर तरक्की देने के मंसूबों पर काम कर रही है। हुकाम का कहना है कि ट्रैकिंग, हाइकिंग, मजहबी सियाहत, सकाफती सरगर्मियों और सरहदी सियाहत के वसी इम्कानात इस खित्ते को मुस्तकबल में कश्मीर के नमाया तरीन सियाहती मराकज में शामिल कर सकते हैं। मकामी बाशिंदों के मुताबिक अगर सड़कों, रिहाइश, मुआसलाती सहूलियात और सियाहती इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाया गया तो करनाट, टिटवाल, डन्ना, एसएम हिल आने वाले बरसों में न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क के नमाया सियाहती मकाम में शुमार होंगे। सियाहती माहिरीन का मानना है कि सरहदी इलाकों में सियाहत के फरोग से मकामी मैशियत मजबूत होगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे।
0: इशफाक सईद की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर कुलगाम से फारूक राठौर की इतला है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में कल 1 जून को कुलगाम में मुनाकिद होने वाली मेगा पद यात्रा के पेशेनजर जिले इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने तमाम इंतजाम का आज मुफस्सल जायजा लिया और बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा,
14: हमारी मोस्टली मुकम्मल है, काफी जो है जो जो चीजें प्लान हुई थी वो चार्ज का सारी चीजें हो चुकी हैं और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सबसे ज्यादा और सबसे अब जो अहम बात आती है वो ये है कि कुलगाम के जो लोग हैं वो 1 जून को सुबह 7 बजे जो है यहाँ पर आ जाए, इस मेगा पद यात्रा का पार्ट बने। ये एक्टिविटी जो है इस तरह के जो एक मेगा कैंपेन जो ऑनरेबल एल जी सर ने जो स्टार्ट की है वो जो है वो एक अपने आप में एक जो है एक मिसाल है। इस चीज में हम सभी लोग एक पूरी जोश के साथ पार्टिसिपेट करें और पूरे एक एक एक एक कुलगाम में जो एक एनर्जी है वो उसको हम दिखाएं, तब जाके जो है ये एक हमारा कैंपेन सक्सेसफुल होगा।
0: ये थे जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम जो कल मुनाकिद होने वाली पदयात्रा के ताल्लुक से बात कर रहे थे। सन 2014 के तबाहकुन सैलाब में वादी कश्मीर के जो इलाके शिद्दत से मुतासिर हुए उनमें चंद इलाकों के लोगों की बाजाबादकारी पर माकूल तवज्जो दिया जाना बाकी है। इस सिलसिले में कुलगाम से अकरमुल हसन का कहना है कि कलम कुंड इलाके में जो लोग सैलाब से अपने घरों से महरूम हुए थे वह अभी तक माकूल मुआवजे के मुंतजर हैं और इसीलिए आज भी आर्जी शेड्स में रहने पर मजबूर हैं। एक मुफक्किल रिपोर्ट के साथ कुलगाम से अकरमुल हसन।
15: 2014 में जम्मू कश्मीर में आने वाले तबाहकुन सैलाब ने हजारों खानदानों को बेघर कर दिया था। खास तौर पर जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के कई देहात में लोगों के मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से इमदाद और बाद आबादकारी के ऐलान तो किए गए मगर कई मुतासरीन आज भी मुस्तकिल रिहाइश से महरूम है। गुंड कलम के मुतासर खानदानों का कहना है कि सैलाब को गुजरे 12 साल का अरसा बीत चुका है लेकिन उन्हें न मुकम्मल माली इमदाद मिली और न ही घर दोबारा तामीर करने के लिए खातिर का सहूलियात फराहम की गई। गोंड और जंगलपोरा के कई मुतासरीन आज भी आरजी शडू में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कलम कुलगाम के आरजी शडू में रहने वाले लोगों ने शहरबीन को बताया कि उन्हें 12 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उस वक्त हमें कलम में सरकारी जमीन से 5-5 मरले का प्लाट देने का वादा किया था, ताहम आज तक न उन्हें प्लाट मिले और ना ही उनकी बाजाबाद करके सिलसिले में کچھ اقدامات کیے گئے۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے اور برسوں سے زیر التوا بعض آباد کاری منصوبوں کو جلد مکمل کیا جائے تاکہ سیلاب متاثرین کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ بون ٹینکی پورہ کے مقامی باشندگان پر مشتمل ایک وفد نے شہر بین کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 30 سالوں سے وہ نالے وشو کے کنارے کنکریٹ باندھ لگانے اور گون ٹینکی پورہ کے لیے پختہ سڑک تعمیر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن نہ ہی ابھی کنکریٹ باندھ مکمل کیا گیا اور نہ ہی پختہ سڑک تعمیر ہوئی۔ انہوں نے سرکار سے شہر بین کے ذریعے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ایک تو نالے وشو پر کنکریٹ باندھ تعمیر کیا جائے، دوسرا گونڈ کے لیے پختہ اور کشادہ روڈ بنایا جائے۔
0: اکرم الحسن کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر ٹی ای ٹی یعنی ٹیچرز ایلیجیبلٹی ٹیسٹ معاملے پر سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر جے این کے ٹیچرز فورم کے چیئرمین میراج الدین زرگر کی صدارت میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اساتذہ کے حقوق، ملازمتوں کے تحفظ اور آئندہ لائحہ عمل پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ فورم نے حکومت جموں کشمیر سے مطالبہ کیا کہ وہ سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن کے ساتھ ساتھ دیگر تمام قانونی اور آئینی راستے تلاش کریں۔ اور پروگرام کے آخر میں یہ خبر کہ آج سوندری گنڈ ملنگ پورہ کی معروف شخصیت حاجی محمد امین انتقال کر گئے۔ وہ معروف سماجی کارکن لطیف سیف اللہ کے برادر اکبر تھے۔ اس کے ساتھ ہی شہر بین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
16: شہر بین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ۔ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ۔ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔
17: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار۔ اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ۔ جی ہاں، اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، سری نگر۔ فون نمبر 9419000025۔
18: مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔
19: گھر کا اے سی ہو یا گیزر، وولٹیج کا ہیرو صرف ایک BS وائس سٹیبلائزرز۔ پاور فلکچویشن سارٹڈ، لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ۔ BS وائس، دیٹس بیسٹ سروس۔ کال ناؤ 9419001960۔
1: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
20: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر مجھے وٹامن ای تو وٹامن بی ہچ کمی درامت۔
21: تو کیا شکن فورٹیفائڈ دودھ تو فورٹیفائڈ تیلوں کے استعمال کران؟
20: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو؟
21: فورٹیفائڈ دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس میں تراؤ نہیں ہوا، وٹامن اے چھو سانے امیونٹی بڑھاوان تو وٹامن ڈی چھو ارجی مضبوط کران، دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس میں۔
20: مگر یہ ہے آج سٹھا درو۔
21: ہاں نہ سوئی قیمت مز مشک تے سوئی چھو بہتر پوشن دیوان۔
22: پن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند، پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو۔ بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائل ہن زانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in۔
6: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے این کے۔
23: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں۔
24: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا؟ پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے۔
23: نہیں ماں، ویسا نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے، ایک گولڈن آر ہے ماں، ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی۔
24: پر بیٹا، ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
23: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی، 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا۔
24: اور وہ پولیس، وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا، کہاں سے لایا۔
23: ماں اب تک رولز ہیں، نو ہراسمنٹ، مدد मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
24: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
23: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो। पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
24: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
23: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं। इशू इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।

0: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लोग गर्मी के असरात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम का इजहार ख्याल। मुल्क भर में कल से होगी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के हुजाज किराम की वापसी का सिलसिला 2 जून से होगा शुरू। और तंबाकू नोशी के खिलाफ आलमी दिन आज। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अक्सर हिस्सों में जारी गर्मी की शदीद लहर को मद्देनजर रखते हुए आवाम से कहा है कि उन्हें पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए गर्मी के असरात से बचने की तदबीर करनी चाहिए। आकाशवाणी पर आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूआत पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि गर्म लहर के असरात से महफूज रहने के लिए आवाम को सरकार और मुतलका महकमों की तरफ से जारी किए जाने वाले रहनुमा खतूत और मशवरों पर अमल करना चाहिए।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के तरक्याती सफर का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे आसपास कुछ ऐसी पेशरफ्त हो रही है जो बाज़ औक़ात नजर नहीं आती। अलबत्त उन्होंने कहा कि उन लोगों का साथ दिया जाना चाहिए जो मुल्क की तामीर में तहरीक बख्श काम करते रहते हैं।
1: भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकार मुल्क में विरासत के अनमोल मकामात को महफूज रखने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने आम लोगों से तलकीन की वो इस काम में अपना रोल अदा करें।

0: वज़ीराज़म ने दीगर कई अहम मौज़ूआत के अलावा माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने खास तौर पर नदी नालों, दरियाओं और तालाबों को आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने की ज़रूरत उजागर की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी ने कहा है कि वज़ीराज़म का मन की बात प्रोग्राम लोगों, खासकर नौजवानों को तहरीक दे रहा है। प्रोग्राम के आज के शुमारे का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा,
1: आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे दो खिलाड़ी उनकी जो बात की गुरिंदर जी के साथ, देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जी आम लोगों के साथ बात करके उनको कितना प्यार और किस तरह से जब देश के लिए काम करते हैं किस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, ऐसा आज तक न कोई प्रधानमंत्री हुआ है ना ही आगे ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा।
0: नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज ग्रेटर कैलाश जम्मू में नाले पर तामीर किए गए दो गलियारों वाले पुल का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में राबता सहूलियात को मजीद मुस्तहकम बनाने और जदीदियत से हमकिनार कराने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। मकामी लोगों ने इस सहूलत पर इत्मीनान का इजहार किया। समाजी बहबूद की वजीर सकीना ऐतू ने कहा है कि सरकार क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। कोलगाम से हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पड्रू ने खबर दी है कि वजीर मौसूफा ने जिले के दमहाल हाजीपुरा में अवामी दरबार के दौरान लोगों के मसाइल का जायजा लेने के बाद जालाबारी से मुतासर हुए किसानों को हर मुमकिन मुआवनत का यकीन दिलाया। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: कल भी कई एरियाज में नुकसान हुए बहुत ज़्यादा हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, तो मैंने उसी टाइम बात की है कंसर्न ऑफिसर से, लेकिन जहां तक क्रॉप इंश्योरेंस का ताल्लुक है वो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब ने जो डिपार्टमेंट को हिदायत दी है, जो कंसर्न मिनिस्टर साहब है वो इसको एग्जामिन कर रहे हैं और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराई में जो क्रॉप इंश्योरेंस का इशू है उसको हम इंशाल्लाह सेटल करेंगे ताकि हमारा ज़मींदार भाई जो है वो बच सके, उसके नुकसान जो होते हैं वो ना हो, और जो वो पेस्टिसाइड्स और बाकी चीजों के लिए बैंक लोन का इस्तेमाल करता है को फायदा हो क्रॉप इंश्योरेंस से ताकि वो आगे बढ़े और उसका जो सेव है वो सेफ रहे।
0: जम्मू कश्मीर कानूनसाज असेंबली के स्पीकर अब्दुलरहीम राठौर ने आज राज शरीफ हलके के चलियांग गांव में जदीद तर्ज के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर के हर खित्ते की मुतवाजन तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने की वादाबंद है। मुल्क भर में कल से खेत बचाओ अभियान शुरू किया जा रहा है। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान एक माह तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश से करेंगे। अभियान के दौरान खेतों में खादों के इस्तेमाल और किसानों को साइंसी मशवरे के अलावा मौसमी तब्दीली से मुतालिक बरवक्त जानकारी देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली के एजाज में कल यानी 1 जून को हाईकोर्ट की श्रीनगर शाख में एक अलविदाई तकरीब मुनक्किद हो रही है। इस सिलसिले में कल सुबह 10:30 बजे वहां एक फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। ये बात काबिल जिक्र है कि जस्टिस अरुण पल्ली को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि मुसल्ला अफवाज ने मुल्क के मफादात का तहफ़ करने में हमेशा पेशावराना सलाहियत का मुजाहरा किया है और वो इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहद बस्ता हैं। मुल्क के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणि ने कहा कि अंदाज फिक्र और कार्रवाई में एक तरह से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। इस दौरान एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज बहरिया के 27वीं सरबराह की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभाली। श्रीनगर के लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में एक पासिंग आउट परेड मुनक्किद की गई जिसमें फौजी जवानों की हम आहंगी, हुबुल वतनी और फौजी दुरुस्तगी की एक शानदार नुमाइश देखने को मिली। इस परेड से अग्निवीरों के 7वीं बैच के तहत 540 अग्निवीरों की तरबियत मुकम्मल हो गई है। पासिंग आउट परेड में फौज की व्हाइट नाइट कोर के GOC खास मेहमान थे जिन्होंने फौजी जवानों की मश्क और उनके फौजी मेयारात के लिए उनकी सराहना की। GOC ने उन्हें कौमी खिदमत में पेश रहने की ताकीद की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। फरीज़ हज अदा करने के बाद जम्मू कश्मीर के हुज्जाज किराम की वापसी का सिलसिला 2 जून मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में किए गए इंतजाम के बारे में जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
3: वापस आने का सिलसिला इंशाल्लाह 2 जून से शुरू होगा। पहले कुछ दिन एक एक फ्लाइट रहेगी, 6 दिन, उसके बाद 2 फ्लाइटें या 3 फ्लाइटें होंगी और ये सिलसिला 17 जून तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। जो हमारे जज कराम 18 अप्रैल को गए थे 3 फ्लाइटों के जरिए, उनमें से एक फ्लाइट पहले जो है 2 तारीख को आएगी, दूसरी 3 तारीख को आएगी, एक फ्लाइट 4 तारीख को आएगी। तकरीबन 145 के करीब जज कराम हर फ्लाइट में

0: होंगे, तो हजाज किराम को जो उनके रिलेटिव्स होंगे वो एयरपोर्ट पे ही रिसीव करेंगे। एयरपोर्ट के दाखिले के लिए उन्हें ऑनलाइन हज कमेटी की वेबसाइट से पास डाउनलोड करना है गाड़ी के लिए, और उस पास से वो एयरपोर्ट में दाखिल हो सकेंगे। जो हजाज किराम यहाँ से गए थे, एक को छोड़ के सबों ने हज किया। अरफे के दिन ही उनकी सर्जरी थी तो वो उनका वकूफ अरफात ना हो पाया। बाकी सब आजमीन इंशाल्लाह हज करके अब वापसी उनकी है।
1: SKCC श्रीनगर में कल से शुरू हुआ दो रोज़ा कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा शुमारा आज भी जारी रहा। फेस्टिवल का इफ्तिताह कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया था। अपने खिताब में उन्होंने अदीबों और कलमकारों से ताकीद की कि वो अपनी तख्लीकात के जरिए मुस्बत सोच और रवादारी को फ़रोग दें। फेस्टिवल के दूसरे दिन आज भी कई सरगर्मियाँ और प्रोग्राम मुनक्किद हुए। अब पेश है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान और इस ताल्लुक से पुलिस कार्रवाई पर मुश्तमिल खबरें। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं और मनुष्यात के ढांचे को खत्म करने निजी इसलत में फंसे नौजवानों की बाजाबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। LG मनोज सिन्हा का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर में इस समाजी बुराई से बचने के इकदाम के बारे में एक शहरी बुरहान जावेद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
3: पहले मैं लोगों से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि वो इस खतरनाक बीमारी से दूर रहे, क्योंकि इससे हमारे वालिदैन भी मुतासिर होते हैं और हमारी जिंदगी भी इससे मुतासिर होती है। कश्मीर में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, इसी के साथ प्राइवेट बिजनेस है हमारा या कलमकारी वगैरह है, वो इनके साथ राबिता करे और इनके साथ वो अपना टाइम वक्फ करे और इस बीमारी से दूर रहे। साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी अपील करते हैं कि वो ये देखे कि ये मंशियात किस जगह से उभर रहा है और उसको जड़ से खत्म कर दे।
1: इस दौरान जनूबी कश्मीर के जिले कोलगाम में कल यानी 1 जून को एक नशा मुखालिफ पदयात्रा का इनेकाद हो रहा है। ये पदयात्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में निकाली जाएगी। आज तंबाकूनोशी के खिलाफ आलमी दिन है। आज के दिन दुनिया भर में तंबाकूनोशी के मुजर असरात के बारे में अवाम में बेदारी पैदा की जाती है। इस सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ महकमों और तंजीमों की तरफ से कई जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ। तंबाकूनोशी हर एक फर्द के लिए मुजर सेहत है। ये ना सिर्फ इसका इस्तेमाल करने वालों को मुतासिर करती है बल्कि आसपास के लोगों, खासकर बुजुर्ग अफराद पर इसके मुजर असरात पड़ते हैं। इस हवाले से बुजुर्गों के अमराज के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
4: सिगरेट और हुक्का सब लोगों, खासकर बुजुर्गों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, COPD, चेस्ट इन्फेक्शन और बहुत सारे कैंसरों का सबब बन सकता है। रिसर्च के मुताबिक रोजाना स्मोकिंग सालों की सेहतमंद जिंदगी छीन लेता है। स्मोकिंग सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि हजारों रुपए का माली नुकसान भी पहुंचाता है। स्मोकिंग का धुआं, जिसे सेकेंड हैंड स्मोक कहा जाता है, घर के दूसरे अफराद, खासकर बच्चों और बुजुर्गों और दिल या फेफड़ों के मरीजों के लिए भी खतरनाक है। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो एक तारीख मुकर्रर करें, सिगरेट और हुक्का घर से हटा दें, पानी ज्यादा पिएं, क्रेविंग के वक्त वॉक करें या किसी से बात करें या इबादत करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मशवरा लें।
1: जम्मू कश्मीर बैंक UT के मुख्तलिफ सेक्टरों को फरोग देने और लोगों को आला मयार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। बैंक की तरफ से कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत भी कई सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस बारे में इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा।
5: अभी हमारा जो प्रॉफिट है उसका तो 2% हम यूज करते हैं CSR में, वो मैंडेटेड है कंपनीज एक्ट के तहत। हर साल हम 50-55 करोड़ रुपया हम CSR के तहत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इनके लिए हम खर्च करते हैं और करीब एंटायर अमाउंट जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही होता है और हम आगे भी करते रहेंगे। जितना प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा उतना ज्यादा हम स्पेंड कर पाएंगे।
1: नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर किरण रिजिजू से अपील की है कि वो मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में मौजूद हुजाज किराम की बहफाजत वतन वापसी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। उन्होंने अपने एक प्रेस बयान में हुजाज किराम, जिनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हुजाज किराम भी शामिल हैं, के साजो सामान को भी महफूज तरीके से जाए मकाम तक पहुंचाने की वजीर से अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदोस ने गलवानपुरा बडगाम में मासूम बच्ची के कातिल को करार वाकई सजा दिए जाने की

FM 101 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं। समय इन थोड़ी ही देर में यानी ठीक 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर उर्दू में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। समय रिले का इंतज़ार कीजिए।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा।

0: अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Nam Kham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
5: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
4: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Aiyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the lair of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
5: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
4: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
5: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
4: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinder Veer Singh and Animesh Kujur, who broke national records in the 100-meter race. Mr. Modi also reflected on the government's continuous efforts to preserve the country's priceless cultural heritage. He also referred to his recent visit to the Netherlands, where during a special ceremony, ancient copper plates from the Chol period were returned to India. The Prime Minister praised conservation efforts under the Namami Gange initiative, citing the successful rescue of a Gangetic dolphin trapped in a canal in Uttar Pradesh with the help of India's first Ganga Dolphin Rescue Ambulance. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged consumption of traditional summer beverages. Referring to mangoes, a favorite summer fruit, Prime Minister Narendra Modi praised the efforts of farmers, saying Indian mangoes are now reaching global markets from villages across the country. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar president arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power Manohar Lal today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the union minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, union minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. On the occasion, the union minister distributed loan checks and QR-coded credit cards to street vendors to promote digital transactions and economic self-reliance. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of Class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained, and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. Chief of Defence Staff CDS General N.S. Rajasubramani today said the armed forces have consistently demonstrated professionalism and operational decisiveness in safeguarding the nation's interest. He said they remain committed to protecting India's sovereignty and territorial integrity. General Subramani was addressing the media after assuming charge as the country's new CDS.
6: We pay homage to our brave hearts whose valor, sacrifice and dedication to the nation continue to inspire us. We are committed to the welfare of our veterans and Veer Naris, I assure the citizens of India that the armed forces will continue to serve the nation with dedication, courage, honor, and professionalism.
4: Admiral Krishna Swaminathan today assumed charge as the 27th Chief of the Naval Staff. He succeeds Admiral Dinesh K. Tripathi. Addressing the media on the occasion, Admiral Swaminathan said the Indian Navy remains vigilant in safeguarding the nation's interests and is actively deployed in a regional security environment that continues to be challenging, complex, unpredictable and uncertain. West Bengal Governor R.N. Ravi today expressed concern over security vulnerabilities along the India-Bangladesh border, saying that unfenced stretches of the border pose a threat to national security. The governor was speaking to the media at Baghdogra before attending an event in Siliguri. He also stressed the need to strengthen security along the strategically important Chicken Neck Corridor that connects the northeast with the rest of the country. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. More from our correspondent.
7: The Bharatiya Janata Party has secured a major victory in Himachal Pradesh municipal corporation elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur municipal corporation. In Dharamshala, the BJP won 11 of 17 wards, while Congress secured 5. In Solan, BJP won 10 wards and Congress 6. In Mandi, BJP dominated with 12 of 14 wards, while Congress won 1. In Palampur, Congress secured a clear majority with 11 of 15 wards, while BJP won 4. Counting of votes for Jila Parishad and Panchayat Samiti elections has also been completed. Though held without party symbols, both BJP and Congress have claimed victorious of their supported candidates. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
4: Vice President C.P. Radhakrishnan today said that political leadership is one of the most demanding fields of public life and stressed that constructive criticism must remain fair and balanced. The Vice President made these remarks while inaugurating the 140th Foundation Day celebrations of the Deepika Malayalam Daily and presenting the Deepika Excellence Awards at Kottayam in Keralam. He emphasized that journalism should highlight stories of hope, innovation, compassion and scientific progress, noting that such constructive reporting strengthens public confidence and inspires the youth towards nation-building. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India has transformed from a technology follower to a technology leader over the past 12 years. Speaking in a podcast with Doordarshan News, Dr. Singh said the country is playing an increasingly important role in the development of frontier technologies and helping shape the future of global innovation. On artificial intelligence, the minister said India is adopting a balanced approach by combining human expertise with AI-driven systems to enhance efficiency and innovation. In Himachal Pradesh, 8 people lost their lives after their vehicle fell into a deep gorge in the Chamba district. The accident occurred on the Bairagarh-Sach Pass-Killard Road in the remote Chura subdivision. The deceased include 7 tourists from Chhattisgarh and the driver of the vehicle. In Myanmar, more than 45 people were killed in a blast at a building in the northeastern part of the country that was reportedly storing explosives used for mining. According to local media reports, around 70 others were injured in the explosion, which occurred around noon in the village of Kongtup in Namkham Township. Rescue operation is underway. The area, located about 3 kilometers south of the Chinese border, is controlled by the Ta Ang National Liberation Army, an ethnic armed group engaged in conflict with Myanmar's central government. In France, a total of 219 people have been injured and over 780 people have been arrested due to clashes between football fans and police across the country following the victory of Paris Saint-Germain against Arsenal in the Champions League final held at Budapest in Hungary. The Interior Minister said security forces are responding firmly to control the situation. In badminton, India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched the men's doubles title in Singapore Open today. The duo defeated Indonesian combination of Muhammad Shohib al-Fikri and Fajar al-Fiyan, 18-21, 21-17, 21-16 in the final to win their first title in 2 years. The Indian pair had won the Thailand Open in May 2024. Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia has congratulated the Indian men's doubles pair on winning the Singapore Open title. In IPL cricket, the high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru is underway at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Put into bat, Gujarat Titans were 143 for 7 in 18.4 overs when reports last came in. Earlier, Royal Challengers Bengaluru won the toss and opted to field. Both teams are aiming for their second IPL title. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Gujarat, Keralam, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Odisha, South Interior, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and West Madhya Pradesh tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar during the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 people killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty clinch men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. That is all in the news at 9. Good night.
8: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासिद के तहीं अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेल कूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शहरियों की समाजी मकासद के तहीं उनके गैर मामूली तआवुन पर तारीफ की है। उन्होंने इन शहरियों के तहरीक देने वाले इकदामात और हुसूलियाबियों को उजागर किया। आकाशवाणी पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने केरलम के साजी वालशेरिल के बारे में इजहार ख्याल किया, जो एक मुफ्त स्विमिंग क्लब चलाते हैं जिससे 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में मदद मिली है। वज़ीर आज़म ने उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के आकाश गुप्ता की कोशिशों का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनोरमा दरिया की सफाई की मुहिम शुरू की थी, जिससे इस दरिया को दोबारा साफ सुथरा बनाने और समाज में माहौलियाती बेदारी को फरोग देने में मदद मिली। जनाब मोदी ने बाल कृष्णैया की दास्तान भी बयान की, जो गोवा के एक रिटायर टीचर हैं जिन्होंने पानी की पाइपलाइन डालने में मदद देकर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए काम किया। उन्होंने तमिलनाडु की एक टीचर गिरिजा अम्मा की सिपाहियों की बहबूद के तहीं उनके तआवुन को भी सराहा।
5: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन एक रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
8: खेल कूद के मैदान में भारत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने एथलीट्स गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को झारखंड के शहर रांची में सीनियर एथलेटिक्स की फेडरेशन के कौमी मुकाबलों में नए कौमी रिकॉर्ड्स बनाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एथलीट गुरिंदर वीर सिंह और उन्मेष गुजर के 100 मीटर दौड़ के रिकॉर्ड्स तोड़ने के बारे में उनसे बातचीत भी की। जनाब मोदी ने मुल्क के बेशबहा सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ की हुकूमत की लगातार कोशिशों के बारे में भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में मल्हार के मकाम पर पौनबंशी संतलत के मक्के महर्षि बलार्जुन से मुतल्लिक 6वीं और 7वीं सदी की 3 नायाब तांबा प्लेटों की हालिया दरियाफ्त का भी जिक्र किया।
5: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
8: वजीर आजम ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी जिक्र किया, जिसके दौरान चोल अहद की कदीम तांबा प्लेटों को वापस भारत के सुपुर्द करने की एक खसूसी तकरीब मुनक़िद की गई। उन्होंने कहा कि इन बेशबहा फनपारों को वापस किए जाने से लोगों में, खासतौर पर दुनिया भर में, तमिल बिरादरी को फख्र महसूस हुआ है और उनमें जोश जज्बा पैदा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि इन तांबा प्लेटों से चोल सल्तनत की हुसूलियाबियों और समंदरी ताकत के बारे में काबिल कदर गहरी मालूमात फराहम होती हैं। वज़ीर आज़म ने नमामि गंगे पहल के तहत तहफ़ुज़ाती कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नहर में फंसी हुई गंगा की डॉल्फिन को कामयाबी के साथ बचाए जाने का जिक्र किया, जिसमें गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली भारत की पहली एम्बुलेंस की मदद हासिल की गई।
5: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
8: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने आज कहा है कि ख्याल और कार्रवाई में इख्तिरा से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। मुल्क के नए CDS की जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणि ने मुसल्लह फौजों, सनात, तालीमी इदारों, स्टार्टअप्स और तहकीक के इको निज़ाम के माबैन मजीद इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया, जो जदीदकारी के लिए बुनियादी हैसियत का हामिल हैं। साबिका फौजियों और वीर नारियों के बहबूद के तई मुसल्लह फौजों के पाबंद रहने की बात दोहराते हुए उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुसल्लह फौजें खुद को वक्फ करते हुए हिम्मत, इज्जत और पेशेवराना महारत के साथ मुल्क की खिदमात अंजाम देती रहेंगी। आज सुबह सवेरे लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के सब्जार में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने नेशनल वार मेमोरियल पर गुलदायरा भी नजर किया। DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने आज हरियाणा के जिले पंचकुला में वाकई रामगढ़ में अपनी तनसीब पर एक ताकतवर बम का कामयाब तजुर्बा किया है। ये जामे हिफाजती इंतजामात के दौरान भारतीय फजाइया के सीनियर अफसरान की निगरानी में अंजाम दिया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में भारत टेक्नोलॉजी फॉलोअर से एक टेक्नोलॉजी लीडर बन गया है। दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुल्क जदीद तकनीकों की तरक्की में मुसलसल अहम रोल अदा कर रहा है और आलमी सतह पर इख्तिराआत को नई जहत देने में मदद कर रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और टेक्नोलॉजी के भारतीय इदारों की साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की एक टीम को ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, जिसे 12वीं जमात के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने के लिए इसके ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम निज़ाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि इस निज़ाम की खामियों की निशानदेही कर ली गई है और इनका किस तरह कोई गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 इदारों पर जीत हासिल की है। इन इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती आज की गई वोटिंग 17 मई को कराई गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
9: भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शानदार जीत हासिल की है। उसने धर्मशाला, सोलन और मंडी सीट जीत ली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ पालमपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीट जीती है। धर्मशाला में बीजेपी ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 वार्ड में जीत हासिल की है। सोलन में बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड हासिल किए हैं। मंडी में बीजेपी ने 14 में से 12 जबकि कांग्रेस ने 1 वार्ड में जीत हासिल की है। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 वार्ड में से 11 वार्ड में वाजे अक्सरियत हासिल की है, जबकि बीजेपी ने 4 वार्ड जीते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती भी मुकम्मल हो चुकी है, अगरचे ये इंतखाबात पार्टी निशान के बगैर मुनक़द हुए थे। ताहम बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी हामी उम्मीदवारों की कामयाबियों का जिक्र किया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
8: इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के तीसरे मरहले के तहत नंबर शुमारी का काम शुरू हो गया है। कमीशन ने बताया कि उन सभी अहल वोटरों को जिनके नंबर शुमारी फॉर्म इंतखाबी रजिस्ट्रेशन दफ्तर को 28 जून को या इससे पहले मौसूल हो गए, चुनाव फहरिस्तों के मुसवदे में शामिल किया जाएगा। SIR का मकसद यह है कि कोई अहल शहरी चुनाव फहरिस्त से न रह जाए और कोई नाअहल शख्स चुनाव फहरिस्त में शामिल न रहे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर नेज बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने आज अगरतला में एक बड़ी तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब रेड़ी पटरी वालों से मुतालिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि PM स्वानिधि स्कीम के 6 साल पूरे होने के मौके पर मनाई गई। इस मौके पर मरकजी वजीर ने रेड़ी पटरी वालों को रुपए पैसे के डिजिटल वसीले से किए जाने वाले लेन देन को फरोग देने और माली तौर पर खुद किफालत के लिए कर्जों के चेक और QR कोड वाले क्रेडिट कार्ड तकसीम किए। मगरबी बंगाल के गवर्नर RN रवि ने आज भारत बांग्लादेश सरहद पर हिफाजती खामियों पर तश्वीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सरहद पर जिन जगहों पर बाढ़ नहीं लगी है उनसे कौमी सलामती को खतरा लाहक है। गवर्नर मौसूफ सिलीगुड़ी में मुनक़िद एक तकरीब में शिरकत से पहले बागडोगरा में मीडिया से खिताब कर रहे थे। गवर्नर ने कहा कि मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद से तकरीबन 300 किलोमीटर इलाके में कई साल से बाढ़ नहीं लगी हुई है, क्योंकि रियासत में साबिका TMC सरकार ने सरहद पर बाढ़ के लिए जमीन BSF के हवाले नहीं की थी, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया जैसे हसास जिले मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने दफाई एतबार से अहम चिकन नेक राहदारी पर भी हिफाजती इंतजाम मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। ये राहदारी शुमाल मशरकी खित्ते को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाती है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर को उनके 301वीं यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मुंबई में लोक भवन में गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने अहिल्या देवी होलकर की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत नजर किए। इस दौरान वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर जिले में चौंडी के मकाम पर अहिल्या देवी होलकर यादगार का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। म्यांमार के शुमाल मशरकी हिस्से में एक इमारत में हुए धमाके में 45 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलाआत के मुताबिक इमारत में कानकनी में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मादे रखे हुए थे। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नामखम टाउनशिप के काउंगटुब गांव में दोपहर में हुए धमाके में तकरीबन 70 अफराद जख्मी हो गए। ये इलाका चीनी सरहद से करीब 3 किलोमीटर जनूब में वाक़ है, जहां तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल है। ये एक मुसल्लह ग्रुप है जो म्यांमार की मरकजी हुकूमत के साथ महाजारा है। जय हादसा पर पहुंचे राहत और बचाव काम पर मामूर एक अहलकार ने बताया कि 6 बच्चों समेत 46 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और उन्हें आखिरी रसूमात के लिए ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और मगरबी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और ज्वालाबारी का इम्कान है। महकमे ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी राजस्थान में अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ छींटे और बिजली चमकने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने आज सिंगापुर ओपन में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजर अल्फियान को 18-21, 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। इस तरह उन्होंने 2 साल में अपना पहला खिताब जीत लिया। आईपीएल क्रिकेट के अहमदाबाद में जारी फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 156 रन का निशाना रखा है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़्फ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासद के तई अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेलकूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। BJP ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। और IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
10: This is Delhi.
11: FM 101 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी भदरवाह से आपसे मुखातिब हैं। समय रात के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं दीवाने फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

हम FM 101 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बदवा से आपसे मुखातिब हैं। रात के ठीक 10 बजे हैं। अब हमारी आज की मजलिस यहीं पर अपने इख्तिताम पर पहुंचती है। कल सुबह ठीक 7:51 पर आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब खैर। जय हिंद।